0: मिल गया है बम्बई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की तीसरी तिथि। तदनुसार 25 सितंबर सन 2026 सुबह के 5:54 और ठीक 10 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपको रेनबो चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। प्रातः 6 बजे का जो कार्यक्रम है सुप्रभात, उसे आपके लिए लेकर आएंगे सृजन राजपूत।

बजे आप सुन पाएंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने, साथ में रहेंगे मनीष आजाद। दस बजे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आपके लिए लेकर आएंगी देवाशी रावत। और बॉलीवुड ट्रायल्स आप सुन पाएंगे 11 बजे वीर दमन सिंह के साथ।

श्रोताओं, एफएम रेनबो इंडिया पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की यह थी संक्षिप्त जानकारी। कुछ ही पलों में प्रातः के 6 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इटली सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाने को मंजूरी दे दी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले और वुशु में रजत पदक जीता। वहीं सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके अलावा डबल स्कल रॉड रोइंग और मिक्स्ड स्किप निशानेबाजी में भी कांस्य पदक भारत के नाम रहा। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। भारत पहली बार UCI रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया एकेडमी।
2: दोस्तों अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम पतरस था वो प्रभु यीशु के स्वर्ग उठाए जाने के बाद लोगों को प्रभु के संग प्राप्त हुए अपने अनुभव के बारे में जा जाकर लोगों को बताता था कि कैसे प्रभु यीशु ने 4 दिन के मरे लाजर को जिंदा किया, कैसे प्रभु ने जन्म से ना देख पाने वाले व्यक्ति की आंखों में रोशनी डाल दी, कैसे प्रभु ने बीमारियों से लोगों को शिफा दी। ऐसे ही न जाने कितने अद्भुत कार्यों के बारे में सुनकर लोगों को ये यकीन होने लगा कि हाँ ये वही प्रभु है जिसके बारे में हजारों साल पहले ये कहा गया था कि यही प्रभु है जिसके अलावा स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जब हम विनम्रता के साथ अपने प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि नम्रता के साथ जीवन जीने वाले और भलाई के कार्यों में सदा तत्पर रहने वाले व्यक्तियों पर ही परमेश्वर की अनुकंपा सबसे ज्यादा बनी रहती है।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हर इंसान को अलग अलग वरदान प्राप्त हुए हैं, जिसका इस्तेमाल करके हर इंसान परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। लेकिन दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर ना तो दौलत से और ना ही बनावटी बातों से प्रसन्न होता है, बल्कि वो सच्चे मन से की गई आराधना और उसके वचनों पर अमल करने वालों से अति प्रसन्न रहता है।

जी हाँ, आराधना और प्रार्थना भरा जीवन ही हमको परमेश्वर के करीब ले जाता है। इसीलिए निरंतर आराधना और प्रार्थना में बने रहें। दोस्तों, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इन नंबरों पर मैसेज या फोन के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा

दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, सुप्रभात। सुबह की पहली किरण के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम सुप्रभात में। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूं मैं सृजन राजपूत। कहते हैं हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, हमारे पास खुद को फिर से शुरू करने का एक मौका भी आता है। कई बार इतना समय नहीं होता कि हम स्वयं कोई गलती करें और फिर उस गलती से अनुभव लें। कई बार दूसरों के द्वारा हमारे सामने जो गलतियां की जा रही हैं उनसे भी अनुभव लेकर सीखा जा सकता है और बदलाव किए जा सकते हैं। रवि, जो कि रोज ऑफिस के लिए देर से निकलता था, हर सुबह उसका एक ही बहाना होता था, बस 5 मिनट और सो लेता हूँ। एक दिन उसने फैसला किया कि वे सिर्फ 5 मिनट पहले उठेगा। पहले दिन 5 मिनट, फिर अगले दिन 10 मिनट, कुछ दिनों बाद वे स्वयं समय पर उठने लगा। 3 महीने बाद उसके बॉस ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी। रवि को समझ आया उसकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदली, वे तो रोज के उन छोटे छोटे 5 मिनट से बदली है। श्रोताओं, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ा कदम जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ 5 मिनट पहले उठना भी नई शुरुआत हो सकती है। तो आज खुद से पूछिए, मैं आज कौन सा छोटा बदलाव कर सकता हूँ जो कि एक बड़े बदलाव की नींव होगा। तो चाय की पहली चुस्की हो जाए, मुस्कान चेहरे पर आ जाए और शुरू करते हैं आज की सुबह एक नई सोच के साथ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम

0: में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे हैं आप सुजन के साथ। देखिए, कई बार हम निराशा से इस तरह अपने आप को घेर लेते हैं कि समझ नहीं आता कि इस निराशा के उस पार भी कोई दुनिया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज सुबह पार्क के बेंच पर आकर बैठ जाता था और एक दिन एक युवा वहां आकर उसके पास बैठ गया। युवक परेशान था, क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही थी। बुजुर्ग ने उसकी पूरी बात सुनी और बस इतना कहा, बेटा आज तुम मेरे पास इस सीट पर आकर बैठे हो, लेकिन जब तुम इस सीट पर आकर नहीं बैठे थे तो ये सीट खाली थी और आज तुम आ गए। युवक चुप था। बुजुर्ग बोले, मौका भी ऐसा ही होता है। आज नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नहीं मिलेगा, हमेशा खाली रहेगा। तुम बस कोशिश करते रहो और जब मौका आए तब तुम वहां पर मौजूद रहना। युवक ने अगले दिन से नौकरी ढूंढने में और जी जान लगा दिया और कुछ सप्ताह बाद उसे काम मिल गया। श्रोताओं, असफलता का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कोई जगह नहीं है। कभी कभी बस इतना जरूरी होता है, जब आपकी बारी आए, आप हार कर घर ना बैठे हों, आप तैयार हों उस अवसर के लिए। तैयार हो जाइए उन सभी नए अवसरों के लिए, एक नए दिन के लिए, और जिस निराशा ने आपको घेर रखा था उसे दरकिनार कर दीजिए। मुस्कुराइए, आगे बढ़िए।

श्रोताओं, प्यार और रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी है। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सुप्रभात आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज से सृजन के साथ। और ये यथार्थ है कि परिवार एक दूसरे का साथ अपने आप में अमूल्य है। एक लड़का रोज नई साइकिल की जिद

करता था। अपने पिता से कहता, पापा नई साइकिल कब आएगी? पिता हर बार कहते, थोड़ा इंतजार करो। अब एक दिन तो ये लड़का नाराज होकर बोला, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, मेरी कोई बात पूरी नहीं होती है। पिता कुछ नहीं बोले। अगली सुबह लड़के ने देखा कि उसकी पुरानी साइकिल को पापा ने साफ करके बिल्कुल नया सा कर दिया है और ठीक करके चुपचाप बाहर खड़ा कर दिया। तो पिता ने कहा, बेटा मैं नई साइकिल तो अभी नहीं ला पाया हूँ, लेकिन ज़रा इसे देखो, इसे तुम्हारे लायक फिर से बना दिया है। लड़के की आंखें भर आई और वो समझ गया कि हमेशा नई चीज़ खरीद कर ही प्यार नहीं जताया जा सकता। कई बार जो आपके लिए कुछ छोटा भी करता है तो आपके लिए उसकी अहमियत कई गुना हो जाती है। कभी कभी कोई चुपचाप कुछ इस तरह का कर दे तो आपके पास भी शब्द नहीं होते। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज सुबह घर से निकलने से पहले अपने माता पिता, साथी, परिवार या वो जो आपके लिए कुछ करता है, आपकी सहूलियत के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है, उसे धन्यवाद ज़रूर कहिए। और ये भी कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कुछ रिश्तों को बड़ी चीज़ों की नहीं, बस कद्र की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, उसे प्यार से सींचिए। सुनते रहिए कार्यक्रम सुप्रभात।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ ऐसे दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपको बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे।

0: मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर, इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे हैं आप रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। मैं हूं आपके साथ सृजन। देखिए, तो दोस्त एक दिन बात कर रहे थे तो आपस में शिकायत करते हुए वे एक दूसरे से कहते हैं, उनमें से एक कहता है कि मेरा मोबाइल जो है ना हमेशा जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, जब देखो फ़ोन की बैटरी चार्ज करता हूँ लेकिन फिर भी। तो दोस्त उसे कहता है, खुद को कभी रिचार्ज किया है, ये क्या है? तो उसने कहा, रोज़ सुबह फ़ोन से दूर रहकर थोड़ी सैर कर लो, कुछ किताब के पन्ने पलट लो, परिवार के साथ नाश्ता कर लो, रात में समय पर नींद आ जाएगी और तुम्हें महसूस होगा कि फ़ोन नहीं जिंदगी चार्ज हो गई है। हम सब बैटरी तो 100% चाहते हैं लेकिन मन को 100% नहीं कर रहे हैं। अगर आज मन थका हुआ है तो खुद को थोड़ा समय दीजिए। हर वक्त ऑनलाइन रहना ज़रूरी नहीं है, खुद से कनेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है।

कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। एक लेखक रोज अपनी डायरी में सिर्फ एक पन्ना लिखता था। एक दिन उसका दोस्त आया, उसने कहा इतना बड़ा सपना है तुम्हारा लेखक बनने का और फिर रोज सिर्फ एक पन्ना क्यों? लेखक ने कहा क्योंकि मैं पूरी किताब एक दिन में नहीं लिख सकता, लेकिन आज का ये एक पन्ना जरूर लिख सकता हूं। साल बीत गया, उसके पास एक पूरी किताब थी। दोस्त ने पूछा इतनी बड़ी किताब कैसे लिख दी? लेखक मुस्कुराया, मैंने किताब नहीं लिखी, मैंने सिर्फ हर दिन एक पन्ना लिखा। श्रोताओं, यही जिंदगी का भी सच है। हमें पूरी जिंदगी एक साथ तो नहीं जीनी है, हमें बस आज का दिन अच्छे से जीना है। कल की चिंता कल करेंगे। आज के दिन यदि आप ऐसा कहते हैं तो ये दिन को भी सकारात्मकता देता है। आज का पन्ना अपने हाथ में है, इसे खूबसूरती से लिख डालिए और तैयारी कीजिए एक सुनहरे भविष्य की। सुनते रहिए कार्यक्रम सुप्रभात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज से। मैं हूं सृजन आपके साथ। छोटे कदमों की ताकत, अच्छे व्यवहार की कीमत, मौके का इंतजार, अपनी कमियों को स्वीकार करना, रिश्तों की कद्र करना, हार के बाद फिर कोशिश करना, खुद को समय देना और हर दिन अपना एक नया पन्ना लिखना। तो इस सुबह एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूँगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूँगी, मैं दूसरों के लिए अच्छी बनूँगी और सबसे ज़रूरी, मैं खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ूंगी। आज का ये दिन आप सभी के लिए शानदार हो। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, नई सुबह सिर्फ सूरज नहीं लाती है, नई संभावना, नए अवसर भी लेकर आती है, जिनका दिल खोल कर आपको स्वागत करना है, उन्हें आलिंगन में भर लेना है। अगला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुनिए आपके और मेरे फेवरेट मनीष आज़ाद के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी पर पेश हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वाडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडियो एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू होगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। कल छठे दिन भारत ने 5 पदक जीते थे। भारत पहली बार साइकिलिंग की यूसीआई रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। पुणे को मेजबान शहर चुना गया और पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। ये थे AIR FM रेनबो इंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार।

मेरी वाणी आकाशवाणी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, याद है ना? तो फिर दिन के ऊपर दिन आ गया शुक्रवार, मनाने वाला डे, यानी कि शुक्र है कि शुक्रवार है। अब शुक्रिया बप्पा का इन 12 दिनों के लिए हमारे बीच में रहने के लिए, हमारे साथ, हमें सबको आशीर्वाद देने के लिए और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। पर आप बेबी तो चुना, अरे मनीष भाई आज तो वैसे भी छुट्टी है ना, विसर्जन तो है, विसर्जन के साथ साथ में वीकेंड

है एक साथ कई सारे, मतलब आपके पास ऐसे मौके हैं जब आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी आज तो थोड़ा सा रेस्ट भी है, और फिर कहते हैं कि इतने 12 दिनों तक जो आपने पूजा अर्चना की, जो आपने गणेश जी महाराज के सामने जो आपने जितना भी उत्सव मनाया आपने, उन सब के लिए आज धन्यवाद करने का दिन है। तो इसका मतलब दिन है आज बहुत खास। ये खास और भी क्या क्या कुछ रहेगा वो सब आपको बताएंगे, लेकिन सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR आपके साथ 7 बजे से 8 बजे तक। मैं रहूंगा मनीष आजाद, रेडियो वाला, आकाशवाणी रेनबो पर। तो शुरू किया जाए।

ऐसे ही मतलब मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लास्ट वाली लाइन अगर मुझे भी गाने को दी जाती मैं भी गा लेता इतना धीरे धीरे, तो जिसका मैं म्यूजिक नहीं कहीं उसमें कहीं मीटर के हिसाब से कहीं बैठना नहीं है, तो हो सकता था ना, धीरे धीरे मैं भी गा लेता फिर मैं आपके सामने आ जाता। अरे वाह वाह, तो भैया कमाल हो गया ना। अब ये कमाल आपके साथ भी है क्योंकि इस कमाल के साथ साथ में आपको बधाई भी है, क्योंकि आज की तारीख बड़ी खास है साहब। आज वैसे भी देखा जाए तो गणेश विसर्जन तो है ही, है ना। आपने जितनी मेहनत की है, जितना आपने श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी पूजा की है, तो इसके बारे में भी बात तो करेंगे ना, तो फिर जानेंगे आगे। चलते चलते थोड़ा सा हमारे साथ रहिए, ठीक है, और नजर आएगी भी आज के इतिहास पर, कौन से वो ऐसे गेंदबाज थे जो आज ही की तारीख में नंबर वन बन गए थे, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो चांद पर गए दुनिया के पहले व्यक्ति, पर वो आज की तारीख को ही अलविदा कह के चले गए इस धरती को, उनके बारे में भी जानेंगे। खास व्यक्ति के बारे में चर्चा होगी जिन्होंने देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ में हम आपको बताएंगे आप किसके साथ अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फिर आज की तारीख अपने आप में बड़ी साहब ऐतिहासिक तारीख तो है ही, लेकिन आज आपका जिनके साथ हैप्पी वाला बर्थडे, तो आप भी कह सकते हो भाई मनीष भाई हमारा भी इसमें अब नाम जुड़ गया। बिल्कुल नाम जुड़ गया साहब, तो इसलिए आप लगातार बने रहिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर जो है आपके साथ चलता रहेगा। मेरा नाम है मनीष आजाद, रेडियो वाला, इस रेडियो पर आवाज़ आ रही है ना, ये इस बंदे की है, आकाशवाणी रेनबो पर। जहाँ कोई नहीं साहब वहाँ पर आकाशवाणी आपको जरूर जरूर जरूर मिलेगा।

इस वाली बात के अंदर कोई भी दो राय नहीं है कि आप जब नए हैं तो आपका अंदाज भी नया ही होना चाहिए, और अगर जब आपका अंदाज भी नया होगा जिस तरह से आप हैं, यानी कि आप जिसको आजकल जिन जी कहा जा रहा है, तो यानी कि आपके कांधों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। अब भाई देखो, जिम्मेदारी लेने के लिए पीछे मत भागना। जिस तरह से आप कहते हैं अंदाज आपका नया है, तो इसलिए धीरे धीरे आपको आगे भी बढ़ना है और इस देश को भी आगे लेके जाना। चलिए फिलहाल हम आपको आगे लेके चलते हैं आज के इतिहास की तरफ, यानी कि 25 अगस्त जो सितंबर है साहब, इसका जो इतिहास है वो क्या कह रहा है, यानी कि 25/9/26, आगे 25 पीछे देखा जाए तो भाई 26 लग चुका है। हम आपको बता दें कि आज ही की वो तारीख थी जब 1917 में पहली बार किंग्स कमीशन मिला। किसको? ब्रिटिश इंडिया आर्मी में सेवाएं दे रहे 7 भारतीयों को 1917 में आज ही के दिन किंग्स कमीशन मिला। 1940 की वो ऐतिहासिक तारीख थी जब लिथुआना, लातविया और एस्तोनिया सोवियत संघ में शामिल हो गए, ये तीनों के तीनों देश। 1957 की वो तारीख, यानी कि 25 सितंबर की वो तारीख, जब आप देखेंगे कि जब भारत पोलो विश्व विजेता बना था। 77 की हम बात करते हैं, यानी कि 25 सितंबर की 1977 की वो तारीख थी जब सर एडमंड हिलेरी का सागर से हिमालय अभियान जो था वो हल्दिया बंदरगाह से शुरू हुआ था। 1977 की बात है। 77 धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, इतिहास अपने आप में कुछ ना कुछ बनता ही चला जाता है।

मासूमा इब्तेगार यानी कि ईरान की पहली महिला उपराष्ट्रपति 1997 25 सितंबर की तारीख को वो नियुक्त की गई। हमने आपसे एक क्रिकेटर के बारे में कहा था, तो लंदन में ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर, आप सबको उनका नाम पता होगा, शेन वॉन की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के अंदर 2001 की वो तारीख थी 25 सितंबर की, जब 400 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले स्पिन गेंदबाज बने थे। और 2012 के अंदर 25 सितंबर की वो तारीख बनी जब वॉयजर 1 सौर मंडल से बाहर अंतरिक्ष में दाखिल होने वाला पहला मानव निर्मित यान बना था। साहब ये तो रहा इतिहास, इतिहास के पन्नों में हमने आपको बता दिया क्या कुछ खास था, लेकिन अब इसके बाद, इस गीत के बाद में जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे आज ही के दिन कुछ खास व्यक्तियों के बारे में, और सबसे बड़ी खास बात, आप किनके साथ अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

कोरस कोरस था वो पीछे पीछे जो ओ चल रहा था ना, वो उनकी भी जरूरत होती है, ऐसी बात नहीं है। अब आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे किन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं किन के साथ में? जिनका आज जन्मदिन है। जन्मदिन किनका है? दिव्य दत्ता जी का। तो भाई बहुत बहुत दिव्य दत्ता जी अगर हमें सुन रही हैं तो उनको हैप्पी वाला बर्थडे, और उनके फैंस अगर सुन रहे हैं तो आपको भी बधाई, आप उनको बधाई वहां तक पहुंचा दीजिएगा। अब साहब आज जिन अभिनेता की जयंती है, आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है फिरोज खान साहब। फिरोज खान साहब कहते हैं कि अपनी एक बिल्कुल उनकी खास जो उनकी शैली थी, अलग अंदाज और अलग अलग किरदारों के अंदर डूब जाने वाला, जो कहते हैं चाहे आप उनको बिल्कुल देखिए, वो सुंदर तो बहुत थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुंदर हीरो की भूमिका रही हो उसमें भी ठीक रहे, या अगर उन्होंने एक विलेन का कोई करेक्टर किया तो साहब उसमें भी उन्होंने अपना 101% दिया। आप अभिनेता उन्हें कहें, आप फिल्म निर्माता कहें, निर्देशक कहें, बहुत सारा मतलब कमाल अगर देखा जाए तो किया। 1960 की जो फिल्म आई थी दीदी, वहाँ से उन्होंने शुरुआत करी, और शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे धीरे करके वो गुंडों के रोल में आना उन्होंने शुरू किया। और फिरोज जब कहते हैं, फिरोज साहब ने एक अंग्रेजी भाषा की एक फिल्म थी टार्जन गोज टू इंडिया में काम किया, और इसकी जो उनकी हीरोइन थी उस समय की बात करें सिमी ग्रेवाल, उसके बाद उनकी हिट फिल्म आई ना वो आई ऊंचे लोग, उसके बाद तो साहब बड़ा कमाल किया। कहा जाता है कि फिरोज साहब हॉलीवुड अभिनेता क्लिंट ईस्टवुड से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि 70 के दशक में उन्होंने उसी अंदाज को अपनी अभिनय की शैली में शामिल कर लिया था। कई सारी फिल्में वैसे आपको बताई हैं, लेकिन कई सारी फिल्मों के अंदर काम तो किया ही, लेकिन अगर हम निर्देशक की बात करें जो उन्होंने फिल्में बनाई तो उसके अंदर आप सभी लोगों को याद रहेगा। आप चाहे धर्मात्मा की बात कर लें, चाहे कुर्बानी की बात कर लें, दयावान की बात कर लें, यलगार की बात कर लें, ये सब फिल्में उन्होंने बतौर निर्देशक उन्होंने वो किया है। लेकिन मुझे तो गीता मेरा नाम अगर आप देखें जिसके अंदर इन्होंने काम किया था, और नागिन वाली जो फिल्म थी वो देख मेरे को जो बड़ी मतलब अपने आप में कमाल लगती है साहब, ये वाली फिल्में जो थी ना बहुत ही लगभग अपने आप में, जितनी मैं इनकी तारीफ करूँ वो अलग, खोटे सिक्के भी बात कर लो आप, चाहे वो कमाल की फिल्में करी है ना अपने आप में, और खूबसूरत सा चेहरा तो उनका था ही बिल्कुल। आप देख सोच के देखिए ना, मतलब एक

तो छवि किस तरह से बनती है कि बूट पहन रखे बड़े बड़े और हैट लगा रखी है, हाथ में रिवॉल्वर, गले में लॉकेट, कमीज के बटन खुले हुए, और वो जिस तरह से वो पर्दे पर आते थे, तो कहते हैं कि उस समय का मतलब संवाद बोलते बिल्कुल उनका खास, वो काउबॉय होते थे ना उस तरह के जो हॉलीवुड के अंदर देखते हैं वो ऐसे देखते हैं। तो इसे कहते हैं कि ईस्ट क्लिंट ईस्टवुड की जो छवि थी उसका देशी जो कहते हैं रूपांतरण वो फिरोज खान साहब थे। तो आज अभिनेता साहब की जयंती है, हम आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से इनको शत शत नमन करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने फिल्में दी हैं ऐसी ही वो याद रहेंगे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।

कहते कि जब जब आप धरती पर आते हैं तो कुछ ना कुछ ईश्वर जब आपको इस धरती पर भेजते हैं बहुत ये सोच के कि आप बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, लेकिन जब आप काम करते हैं ये सोचकर कि मैं समाज के लिए कर रहा हूं, इस देश के लिए कर रहा हूं, क्योंकि देश सर्वोपरि है, जब आप देश के लिए जब आप सोचने लग जाते हैं ना, तो फिर आप सबसे अलग हट जाते हैं और आप फिर एक ऊंचे विचार आपके बनने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं विचारों को देखते देखते आप आगे बढ़ जाते हैं। आप सोचिए कि अगर इनके शब्दों के अंदर यह था कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, केवल भारत ही नहीं, माता शब्द हटा दीजिए तो भारत केवल एक मात्र जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्द हैं, आज जिनकी जयंती है। आप इन्हें कहें कि एक महान और प्रखर विचारक रहे, उत्कृष्ट संगठन करता रहे, एक ऐसे व्यक्ति रहे, एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी के लिए और सत्य निष्ठा को ही हमेशा उन्होंने महत्व दिया। जब जब भी सोचा उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ही सोचा। बचपन से ही बहुत ही ज्यादा होनहार रहने के कारण हमेशा अव्वल आना, हमेशा ये उनके अंदर है। मतलब जो भी उनको काम करना, उनको लगा कि मुझे आगे आना है। कई सारे ऐसे हुए काम कि जब जब इनको इनके काम की वजह से कई सारा ऐसा हुआ कि उनको परीक्षा के अंदर जब वो अव्वल आए तो उन्हों को एक उस समय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।

कहा गया कि आप हमारी संस्था में नौकरी कभी भी कर सकते हैं। ये किसने कहा? उस समय घनश्याम दास बिल्लर जी ने कहा। इतने सहज भाव से उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि नहीं, मैं अभी आगे और पढ़ना चाहता हूं। अब जब सामने वाला व्यक्ति अगर इस तरह की बातें सुनता है तो उनको सुनकर ही प्रसन्नता होती है। ऐसा ही बिल्ला जी के साथ भी हुआ कि उनको भी बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे यहां पर आपके लिए नौकरी हमेशा खाली रहेगी, जब चाहो आप आ सकते हो। इन सब बातों के बावजूद भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उन्हें धन्यवाद कहा और वहां से उनको वो जो स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति मिलती थी वो ली उन्होंने। कहते हैं कि जब आप देश के लिए सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो इसीलिए 21 सितंबर 1951 को उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया, नई पार्टी के राज्य इकाई भारतीय जनसंघ की नींव तब उन्होंने डाली और उसके बाद लगातार लगातार आप चलते रहे। और फिर डॉक्टर मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को आयोजित पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। वहां पर उनका सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जाता है। लोगों के बीच में कहते हैं कि जनमानस के प्रिय नेता रहे हमेशा, क्योंकि उन्होंने अपनी गृहस्थी से भी ज्यादा अगर किसी को कुछ माना है तो उन्होंने कहा कि वो देश की सेवा मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है, मैं इसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा। ऐसे थे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। आज पूरा देश आपकी इस जयंती पर आपको नमन करता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: केले का छिलका सड़क पे ना भाई ना, चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर ना भाई ना। चलिए अपने शहर गली मोहल्ले घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

और ये मैंने कितने जाना, मैं इधर ही हूँ मैं। लेकिन जब देखिए, मैं ना वैसे शुरू से मेरी बहुत अच्छे से आदत रही, मैं शुरू से ही ना अखबार बहुत पढ़ता था। अखबार पढ़ने के साथ साथ बुक्स पढ़ने की बहुत अच्छी आदत रही, मतलब बहुत सारी अच्छी लाइब्रेरी। मैं तो लोगों के बारे में बहुत पढ़ता हूँ, जब पढ़ता हूँ तो और इनके बारे में जब जानता हूँ तो बड़ा मतलब खुशी सी होती है। क्योंकि कभी कभी जब आपकी फील्ड कुछ कुछ मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि कमाल हो गया साहब। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है, अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, उनका नाम SP बालासुब्रमण्यम, श्रीपति पंडित रादुल्य बालासुब्रमण्यम उनका पूरा नाम। आज ही के दिन उन्होंने इस धरती को 2020 में अलविदा कहा। और बड़े ही प्रसिद्ध सिंगर्स के अंदर वो एक सिंगर्स रहे, इसके साथ साथ वो अभिनेता भी रहे, संगीत म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे, गायक भी रहे, और इन सब के साथ साथ वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी रहे। मैं ये देखता हूँ कि जब वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहे तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बन गए, मैंने ये सोचा। तो

साथ साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, तो कहा उन्होंने कमल हासन, रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड और अर्जुन सरजा जैसे अभिनेताओं के लिए वॉइस ओवर किया है। फिल्म आई थी दशावतरम, अगर आपको सबको याद होगा, तेलुगु उसकी वो फिल्म थी, उसमें कमल हासन के 7 किरदारों की आवाज़ का वॉइस ओवर किया था उन्होंने। बूढ़ी औरत वाले किरदार की आवाज़ भी इन्होंने ही दी थी, है ना कमाल साहब। इसीलिए कहते हैं कि जब आपके पास अगर प्रतिभा है ना और फिर वो वर्सेटाइल है यानी कि बहुमुखी है, तो फिर दुनिया उसको सलाम करती है। 5 दशक में आपने लगभग 16 भाषाओं के अंदर आपने 40,000 से ज़्यादा आपने गाने गाए हैं, है ना। येसुदास के बाद बेस्ट मेल सिंगर का नेशनल अवार्ड पाने वाले आप दूसरे सिंगर हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने आपको 2001 के अंदर पद्मश्री और 2011 के अंदर आपको पद्म भूषण से नवाजा है। खास व्यक्ति देखिए कहते हैं ना कि मैंने कहा ना कभी कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम याद करते हैं, कितनी सारी ऐसी उस समय की चीज़ें होती हैं, हम उनको देखते हैं तो कभी कभी जो चीज़ें होती हैं ना वो कमाल हो जाती है साहब अपने आप के अंदर ही। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतनी सारी अगर आपके पास अगर प्रतिभा है तो फिर तो साहब अपने आप में बड़ा कमाल हो जाता है। तो इसलिए अपने आप में आप कमाल यूं ही लगातार करते रहिए और धीरे धीरे धीरे धीरे जब आपको लगे तो बस ऐसे ही आप सोचिए कि जब हम कभी कुछ आते हैं तो क्या करेंगे और उसके बाद कहां तक आप सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए पूरे इंडिया की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से शत शत नमन।

कुमार सानू, एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज थी, है ना। बहुत सारे ऐसे गीत हैं, बहुत सारे जिसमें आप सभी के चाहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम। अब लेकिन बड़े काम की बात, जिस तरह से मैंने सभी काम की बातें बताई ना अभी आपको, आपको लग रहा है वाह कमाल हो गया, ये आपके मैसेज आ रहे हैं। हाँ जी, काम की बात यह है कि साहब देखिए, महान लोग महान काम करते हैं। ये जो ठग होते हैं ना साहब, ये भी महान काम कर रहे हैं। कैसे ठगी कर रहे हैं? आप जैसे भोले भाले लोगों को फंसा रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत मासूम हैं, आप तो बहुत पता ही नहीं होता कि डिजिटल क्या होता है साहब, ये कैसे हम लोगों को फंसा लेते हैं, है ना। आप कहते सर पता ही नहीं चला कैसे होते हैं, तो सर पता नहीं चला ना, इसी के लिए बता रहा हूं आपको। आप इतने मासूम हो, इतने भोले भाले हो, इनकी बातों में आ जाते हो आप, फिर आप क्लिक कर देते हो, पैसे गायब हो जाते हैं, है ना कमाल साहब। इन सब बातों से बचने के लिए ही किसी भी अनजान क्लिक पर आजकल .apk फाइलें बहुत आ रही हैं साहब। कभी वो शादी के कार्ड के रूप में आ जाती हैं, कोई सामने वाला बोलता अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा तो उसके रूप में आ जाती हैं, कोई चालान के रूप में आ जाती हैं, मतलब अलग अलग तरीके हैं। कोई जिप फाइल आकर बनकर आ रही है, .zip फाइल, आप उस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, हम लोगों को क्या देखते हैं, जो भी मोबाइल में आगा ये बटन दबाने की आदत है। अरे भाई साहब छोड़ दो ना, जिस बंदे को आप जानते नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, तो फिर क्यों उसको ऐसा कुछ करना, ठीक है, मत करना, उड़ जाएंगे सारे पैसे। ध्यान रखो, बहुत मेहनत से कमाते हो पैसे, सुबह से शाम तक बाहर घूमते हो, सुबह से शाम तक काम करते हो, फिर कहीं जाकर आपको एक महीने के बाद तनख्वाह मिलती है, और अगर कहीं उड़ा दे तो गलत हो जाएगा ना। ये आपके पैसे हैं, इसलिए आपको संभाल के रखिए, क्योंकि आपके बच्चों को भविष्य बनाने में ये बहुत कारगर साबित होगी आपकी कमाई। आप कमाई भी तो इसलिए कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिए।

सुबह के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू होगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे पी नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी। जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। भारत पहली बार यूसीआई रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये हैं अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल से दिल तक और एक बार फिर हूँ मैं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुड़ी सृजन लेकर आई हूँ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। सुनते रहिए रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ से।

प्रोग्राम सुन रही हैं आप, गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर दिल्ली की चाशनी कुड़ी सृजन के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज से। देखिए, दिल तो धड़क रहा है और इस धड़कते दिल ने तैयारी कर ली होगी कि चलो ऑफिस को चला जाए, लेकिन इसके साथ तैयार रहिए वेदर को देखते हुए। जी हाँ, ट्रैफिक के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मौसम सुन लीजिए। आज 32 डिग्री रहने वाला है और कुछ कुछ ठंडी हवाएं जो सुबह और शाम तो आप फील कर पा रहे हैं, तो उनसे आपको, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है तासीर बदलती है, तो हमें भी अपने हेल्थ का अकॉर्डिंगली ध्यान रखना चाहिए। 32 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम 23, और बिल्कुल जो अभी अभी सनी सनी सा आप फील कर रहे हैं ये है 27 डिग्री राइट नाउ। और बारिश का तो आज कोई आसार नहीं है, लेकिन बादलों से जो धूप छाव है पलछिन हो सकती है, तो तैयारी कीजिए अपने घरों से इस मौसम के साथ, इस बदलते सुहावने मौसम के साथ, जिसे हम कहते हैं ना गुलाबी ठंड की दस्तक। जी हाँ, वो हो चुकी है। बप्पा के आगमन और विसर्जन के साथ त्योहारों का आगमन हो चुका है और पूरे भारतवर्ष में ये जो समय है, यहाँ जोरों शोरों से त्योहारों की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, तो इसमें नाच गाना बनता है ना। सुनते रहिए रेनबो दिल से दिल तक।

अगर सूरज की तरह आप चमकना चाहते हैं तो रोज सुबह जो है सूरज की तरह उगना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए परिश्रम ही मानिए वो कुंजी है जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी, और ये सफलता, ये सनशाइन आपको निखार देगी सुनहरा, यकीन मानिए। सुनते रहिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मैं हूँ आपके साथ सृजन।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
7: इस शुक्रवार 25 सितंबर को सुबह 9:15 से 9:30 तक,
6: और जानिए SOL के स्किल और लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में।
8: हिमालय की गोद से लेकर
9: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
8: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
9: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
8: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
9: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
8: तो सुनना ना भूलें
9: रेनबो डेस्टिनेशंस
8: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
10: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुरी सृजन और प्रोग्राम वही आपका पसंदीदा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। अब इस समय जब सड़कों पर उतरे हैं तो ट्रैफिक जो है हमें मिलता है, लेकिन ऐसे में ज़रूरी है कि हम थोड़ा समय से पहले निकल जाएं और तैयारी की जा रही है दो बड़े जाम पॉइंट्स को ख़त्म करने की भी। बात करें तो 5.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर जो है 12 चौराहों का ट्रैफिक होगा बाईपास जिसके ज़रिए, इस पर बात करते हैं तो आउटर रिंग रोड पर माँ आनंदमयी मार्ग और मुकरबा चौक पर जो ट्रैफिक है वो इतना हेवी रहता है जिसके चलते दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं अब तैयार किए गए हैं जिनमें कि आउटर रिंग रोड से रोली बदरपुर रोड तक जो ये 5.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर है उसको तैयार किया जाए। ये करीब 12 चौराहों के ट्रैफिक को ऊपर से निकाल देगा। वहीं मुकरबा चौक पर मौजूद जो 6 लेन के ROB का को 10 लेन किया जाएगा, उससे भी जो है काफ़ी जाम में आवाजाही में सुगमता होगी। जहांगीरपुरी औद्योगिक क्षेत्र से संजय गांधी परिवहन नगर के बीच 4 लेन का नया ROB भी बनाया जाएगा। इन दोनों जगहों पर सड़क पर जैसे हम देखते हैं रोड पर रोजाना का इतना ट्रैफिक होता है, इतनी आवाजाही होती है, तो ये जो एक स्टेप है, ये जो एक चरण है, इसके माध्यम से ट्रैफिक को कम करने के लिए मुझे लगता है बहुत ही शानदार प्रयास ये किया जा रहा है और आप सभी को इसकी जो सुगम्यता है, जो लाभ है, वो जरूर आने वाले भविष्य में मिलेगा। सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

प्रोग्राम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में हूँ आपके साथ सृजन रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो चलिए ट्रैफिक की बात करें तो शालीमार बाग चौक जी हाँ अशोक विहार में जो है काम चल रहा है जिसके कारण काफ़ी वहाँ पर स्लो ट्रैफिक है, तो आप उस रूट को अवॉइड कर सकते हैं, कोई अल्टरनेटिव रूट चूज कर लीजिए। DND फ्लाईओवर नोएडा से आश्रम जाते टाइम देखेंगे तो वहाँ पर एक ट्रक जो है खराब हो गया जिसकी वजह से वहाँ भी ट्रैफिक स्लो है। और नई एलिवेटेड रूट्स की भी हमने बात की तो वो भी आप ध्यान रखिए। और एक और जो सराय कालेखा रोड है आश्रम चौक टू सराय कालेखा अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी दिल्ली जल बोर्ड के कुछ कार्य चल रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक वहाँ पर अफेक्टेड है। और ऐसे में अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से एग्जिट टुवर्ड्स सराय कालेखा लेने वाले हैं तो वहाँ एक डाइवर्जन है टुवर्ड्स कालिंदी कुंज फ्रॉम मदनपुर खादर, तो आप बारापुला फेस 3 नो ग्रेशन जो रोड है वहाँ से लेट लेते हुए निकल सकते हैं। तो ये रहेंगे कुछ अल्टरनेटिव रूट और डेली ट्रैफिक अपडेट, सुनते रहिए रेनबो।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: रहा है बब्बल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और अब बात करते हैं सेवा संकल्प अभियान की। और ये अभियान एक अल्पकालिक अभियान नहीं है बल्कि भारत का एक नया और स्थायी दृश्य तैयार करने की तैयारी है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जन सेवा में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलाया जा रहा ये एक व्यापक राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क और कल्याणकारी अभियान है। इस अभियान का एक मुख्य स्तंभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जी हाँ ये स्कीम भी है, जिसका सीधा लाभ और क्विक बहुत तेजी से लाभ जनता तक पहुंचे, यानी प्रणाली के माध्यम से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे, क्विकली पहुंचे, इसकी तैयारी की गई है। और यदि इस अभियान के अंतर्गत बात करें तो उद्देश्य है सरकार का कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सब्सिडी सहायता राशि बिना किसी मीडिएटर के सीधे लाभार्थी तक पहुंचे, चाहे वो उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होना ही क्यों ना हो। जी हाँ, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें कि मध्यस्थता को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी जो कदम हैं वो उठाए गए हैं। इसके तहत सरकारी सब्सिडी, वित्तीय सहायता या अनुदान जो कि सीधे लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जयमति नीति की बात करें तो ये व्यवस्था जनधन खाते, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के त्रिपक्षीय जुड़ाव पर काम कर रही है। और महत्वपूर्ण बचत के तौर पर देखिए तो डीबीटी प्रणाली के कुशल कार्यान्वयन से भारत में कई मीडिएटर्स को हटाकर सीधा लाभ जनता तक पहुंचाने की एक मुख्य पहल भी की गई है। और इसी योजना के अंतर्गत कवर किया जा रहा है कि वर्तमान में जो भी कृषि संबंधित उर्वरक है या उनसे जुड़ी सब्सिडी है, चाहे वो एलपीजी सब्सिडी हो, पीएम किसान संबंधित सब्सिडीज हो, छात्रवृत्तियां हो और मनरेगा भुगतान जैसी जो स्कीम्स है उसका लाभ भी सीधा सीधा जनता तक पहुंचे। और अभियान के अंतर्गत कई क्षेत्रों पर जो है काम किया जा रहा है, वहीं महिला सशक्तिकरण यानी नारी शक्ति को भी सीधा सीधा लाभ जो है इस अभियान के अंतर्गत, सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मिले, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, वित्तीय सहायता की किस्त जो है सीधा सीधा महिलाओं के खाते तक पहुंचे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है कि सीधा सीधा लाभ जो है वो छात्रों तक पहुंचे, वो चाहे किसी छात्रवृत्ति को प्राप्त करना ही क्यों ना हो। तो सेवा संकल्प अभियान अपने आप में एक ऐसी योजना है और इसके अंतर्गत भी हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब देखते हैं तो इसके साथ ही प्रयास किए जा रहे हैं भारत को नई दिशा में लेकर जाने के लिए सकारात्मक प्रयास हैं जो कि अपने आप में बेहद सराहनीय है। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
3: ठीक है।
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और

0: ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आप सुन रहे हैं FM रेनबो और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरेश रजन। तो देखिए, आज से क्या शुरू हो रहा है? आज से शुरू हो रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। जी हां, आगाज हो चुका है ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में। ये इसका 4वां संस्करण है। 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसके लिए जगह, जी हाँ, इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट, ग्रेटर नोएडा, यूपी, उत्तर प्रदेश। और सुबह समय रहेगा सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक का। और इस आयोजन की विशेषताएं देखिए कि 2400 से अधिक प्रदर्शक और विभिन्न जो देश हैं उनमें सैकड़ों विदेशी खरीदार और उद्यमी भी शामिल होने जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यहाँ हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी रीजनल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक वैश्विक बाजार इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से मिलेगा। और ये मेला जो है उत्तर प्रदेश के कारीगरों, निर्माताओं और उद्यमियों के लिए मुझे लगता है एक बड़ा अवसर है, जहां पर कि उन्हें इंटरनेशनल ऑर्डर्स और वैश्विक पहचान भी मिल सकते हैं। और इस बार की ट्रेड शो की बात करें तो ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस, वियतनाम जैसे जो देश हैं वो साझेदार देश के तौर पर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। इन देशों की भागीदारी से व्यापार साझेदारी, तकनीकी सहयोग, सोर्सिंग, इन्वेस्टमेंट और देखिए नए बाजार के कितने अवसर उद्यमियों को मिल सकते हैं, अपने आप में एक बहुत सुंदर पहल, एक सुंदर लक्ष्य लेकर आ गया है यूपी इंटरनेशनल फेयर 2026।

थोड़ा थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए और फिर बदल दीजिए इस मुस्कुराहट को जोरदार हंसी में। अदिति को तो इतना कहना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपको इतना नहीं कहना पड़ेगा। आपका और हमारा साथ अपने आप में आपके चेहरे पर मुस्कान ले आता होगा, ऐसा मैं भी मानती हूँ। सुन रहे हैं आप रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ से, मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुड़ी सृजन। अगली बात करें कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में, तो कुछ ऐसे कदम जो हम सभी की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस, सरकार और व्यवस्था द्वारा उठाए जाते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पिंक फोर्स बनाने की तैयारी कर ली है। ये फोर्स स्कूल, कॉलेजेस, मेट्रो स्टेशन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट हब जैसे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सेंसिटाइज पॉइंट हैं उनको पहले तो टारगेट करेगी और वहाँ पर तैनाती इनकी की जाएगी, निगरानी रखी जाएगी, और जिससे कि ध्यान रहे कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह की कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो जो कि आने वाले समय में सबको दुख दे। तो ऐसे में ये एक अच्छा कदम है पिंक फोर्स का, जिसमें कि सभी महिला कर्मियों को शामिल किया जा रहा है और तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सुनते रहिए रेनबो और इसी तरह रंगों से सजे कलरफुल प्रोग्राम्स आपके लिए पूरा दिन यहाँ पर प्ले होने वाले हैं। वो कौन कौन से होंगे बात करती हूँ इस गाने के बाद।

छड़िया, बिल्कुल यही बोलूंगी मैंने तो, तेरे उत्ते छड़िया, ये बात मैं कहने वाली हूँ मनीष आजाद से। अगला प्रोग्राम लेकर आएंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10 बजे वेस्टर्न म्यूजिक आर होगा, मैचलेस म्यूजिक लेकर देवश्री रावत आएंगे, और 11 बजे वीर दमन सिंह होंगे आपके साथ लेकर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। वेस्टर्न म्यूजिक आर होगा 12:02 से नेक्स्ट प्लेट कूल देवश्री के साथ। मेरा वाला सॉन्ग लेकर वीर दमन सिंह आपके साथ होंगे एक बार फिर 1:02 पर। आशियाना सुनिए रेशमा के साथ 2 बजे, और रेडियो डॉक्टर आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। एक्सपर्ट डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जो कि ब्रेस्ट सर्जन है रहेंगे प्रोग्राम में। इसके बाद 4:02 पर रेशमा आपके लिए अल्फा जेन लेकर आएंगी। सिटी लाइट सुषमा शर्मा के साथ समय वही 5:02। जी हाँ, हर रात आप न्यूज भी सुनेंगे तो आप बिल्कुल करंट न्यूज़ के साथ भी अपडेट रह सकते हैं। मैसेज मसाला में सुनीता शाहबादी लेकर आएंगी, समय होगा 6:02 का। लिपिका लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक आर फ्राइडे फिएस्टा 7:02 पर। म्यूजिक मस्ती सुनीता के साथ बनी रहेगी, और आपकी याद आती रही रंगे महफिल सजाएंगे विकास कौशिक। तो बस अब अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी गुरु सृजन को दीजिए इजाजत, मैं छट चल रही हूँ स्टूडियो नू। मनीष दे हवाले, मनीष आपको दिल के तराने सुनाने वाले हैं, और यहाँ रहेगा आपके लिए 3 ओल्ड हिट्स का तड़का। अपना और अपनों का रखिए ख्याल। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: पेश है आकाशवाणी रेनबो पर इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हुए। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेल को मूल्य सीमा शुल्क घटा दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देशभर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू होगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंच चुकी है और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फीडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस वक्त के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: नमस्ते जी, नमस्ते। मैंने कहा ना, कितने प्यार से दीदी ने बोला कि जब लाइफ को अगर आप ट्यून करते हैं ना, जब आप रेनबो को ट्यून करते हैं, तो फिर आपको लगता होगा सतरंगी कुछ कुछ रंग आपकी जिंदगी के अंदर भी जुड़ने वाले हैं। हर रंग की अलग कहानी है, आप सभी लोगों को बेहतर पता है। जिस तरह से आपके घर के अंदर जो बच्चे हैं ना, सभी एक समान, एक जैसे, एक वाली आदत के नहीं होते हैं, क्योंकि ईश्वर ने सबकी संरचना जो की है ना, की तो मानव ही बनाया ना, स्त्री और पुरुष ही बनाए, लेकिन दिमाग सबके अंदर अलग दिए हैं। तभी कहते हैं भैया अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि कुछ लोगों को अपना होता है कि भाई हम बहुत ऊंचे हैं, कुछ लोग ला रहे भाई साहब हम तो बहुत छोटे हैं। तो ऊंचा होने का गुमान और छोटा होने का मलाल, ये सब मिथ्या है, मैं आपको सही बता रहा हूं। क्योंकि खेल खत्म होने के बाद शतरंज के जितने भी मोहरे हैं ना साहब, वो एक ही डब्बे के अंदर रखे जाते हैं। इसलिए जीवन जब ईश्वर ने दिया है, बहुत अच्छे कामों के लिए दिया है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, उनको सहयोग करने के लिए दिया है। लोगों को आगे बढ़ाते रहिए, उनका सहयोग देते रहिए, फिर देखिए आपको भी खुशी महसूस होगी। किस बात की? कि हाँ, कुछ अच्छा किया। ये जिस तरह से जब आप अपने बालकनी में, अपनी छत पर थोड़ा सा पानी रखते थे ना, चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए, जब वो आके वो पीते हैं, तब आपको खुद भी लगता है कि हाँ, आपने कुछ अच्छा किया। अच्छे अच्छे काम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे?
3: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
4: इस शुक्रवार 25 सितंबर को सुबह 9:15 बजे से 9:30 बजे तक,
3: और जानिए SOL के स्किल और लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में।

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

देखो जब मुझे बहुत कुछ कहना है, मतलब इतने काम की बात है, अगर आपने अब ये 10 बजे तक अगर आपने इधर उधर ट्यून किया, गाने तो सुनते ही हो, लेकिन जब गाने के साथ साथ अगर आप काम की बातें सुनते हो ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। सुनिए, बच्चों के लिए बड़े काम की बात है आपके।

0: नमस्कार, मैं हूँ विद्या
1: और मैं हूँ कुशाग्र और हम स्वागत करते हैं आप सभी का दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के आज के इस कार्यक्रम में,
0: जिसमें होगी युवाओं की एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा। बात जब शिक्षा की होती है तो शिक्षा के साथ साथ स्किल का होना भी बहुत जरूरी होता है।
1: आप अगर बात नए भारत के युवा की करते हैं तो नए भारत का युवा स्किल्स में पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
0: और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए भारत सरकार भी निरंतर प्रयासरत है। अगर हम बात करें कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक ऐसा डिवीजन है जो युवाओं को स्किल की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
1: और आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हम आए हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में। आज कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग कई सारे युवाओं को कई स्किल्स में ट्रेनिंग दे रहा है
0: और उसी से जुड़े हुए कई सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मिस्टर दीक्षांत अवस्थी।
1: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: सर। अगर हम बात करें अलग अलग लैंग्वेज और स्किल कोर्सेज के बारे में, तो सर इन सबको ओपन लर्निंग फॉर्मेट में लाने का क्या उद्देश्य है?
2: इसमें हमारा बहुत ही एक ऑनेस्ट प्रयास है। एक हम सारे जो स्टूडेंट्स जो कि बाहर विदेशों में जाकर अपनी जॉब नौकरी की तलाश में जाते हैं और वहां पर अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, तो उस भाषा जो उस स्थान की है उसमें कम्युनिकेट करने पर उनको आसानी से अपने आप को एक्लेमेटाइज करने का एक मौका मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने सारी विदेशी भाषाओं को यहाँ पर धीरे धीरे लाने की कोशिश की है, एक प्रयास किया है। और ओपन लर्निंग में सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि कहीं भी आप हैं, कहीं से भी इस उन भाषाओं को आप सीख सकते हैं। हमारे सेंटर के माध्यम से ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर पर आप पोर्टल पर जाकर उन भाषाओं के लिए रजिस्टर करते हैं और उसके बाद हमारे ये जो भाषा शैक्षणिक कार्यक्रम है ये फेस टू फेस और ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है।
1: सर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी भाषाओं को लेकर यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, और दीक्षांत सर आपने हमें ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों के बारे में समझाया। हमें लगता है कि ऑफलाइन मोड जो है वो ज्यादा पॉपुलर है ऑनलाइन की बजाय, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन कोर्सेज को ऑनलाइन मोड पर लाने के पीछे आपकी क्या मंशा रही और आपने इसके पीछे क्या क्या तैयारियां की जिससे कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके।
2: इसमें जहां से आपने शुरुआत की थी उस बात से मैं लिंक करना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई भी अछूता ना रह जाए, कहीं से भी किसी को अपॉर्चुनिटी की कमी ना रह जाए। तो भारत सरकार का जो विजन है कि हर युवा तक पहुंचना है, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से कहीं भी पहुंचा जा सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी स्टूडेंट्स को दिल्ली विश्वविद्यालय से दूर होने का कोई भी एहसास ना हो, इसको ध्यान में रख के हमने ऑनलाइन को लॉन्च किया है। हमने वो सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स से अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपने टीचिंग पेडागॉजी को ट्यून किया है जिससे किसी भी लर्नर को कहीं से भी कम का एहसास नहीं होगा। हम उसमें वही एक्सपीरियंस और स्टैंडर्डाइजेशन जो किसी ग्लोबल लैंग्वेज में होना चाहिए या ग्लोबल टीचिंग पेडागॉजी में होना चाहिए, तो वो हम उसको कहीं ना कहीं कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो शिक्षक हैं, भाषा शिक्षक हैं, वो बहुत ही वेल ट्रेन्ड और प्रोफेशनल हैं और उन्होंने उन सॉफ्टवेयर्स के साथ काम किया है। इसी के साथ साथ जैसे फेस टू फेस लर्निंग में हम लैंग्वेज लैब की बात करते हैं, भाषा प्रयोगशाला की बात करते हैं, तो हम इसे क्लाउड बेस्ड एक भाषा प्रयोगशाला भी आगे शुरू करने की कोशिश करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स अपना फ्रीली रिकॉर्ड कर पाएंगे, दोज हु आर गोइंग टू बी अवर स्टूडेंट, जो हमारे विद्यार्थी होंगे, और वो वहां से अपनी भाषा की परिष्कृतता को भी चेक कर पाएंगे। उस पर भी हम काम कर रहे हैं।
0: सर, कौन कौन सी लैंग्वेजेस सिखाई जाती है कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में?
2: यहाँ पर हमने अपने जो रेगुलर मोड के डिपार्टमेंट्स हैं, भाषा जो संकाय है हमारे, जिनको डिपार्टमेंट्स हम बोल रहे हैं, और उनके साथ एसोसिएट होके जर्मन, स्पेनिश, पोर्टुगीज एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस हमने यहाँ पर शुरू किए हुए हैं। उनमें बहुत अच्छा छात्रों का रुझान है और पूरे नेशनल लेवल पर हमने पोर्टल को ऑन किया है जिससे कि छात्र उसमें रजिस्ट्रेशन करा के हमारे साथ जुड़ पाएंगे। वो अभी नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग OLDC के तहत चाइनीज, जापानीज, कोरियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोर्चुगीज, अरबिक, पर्शियन, रशियन, इनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बोर्ड्स में सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए जाते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की। अगर आप लैंग्वेजेस में डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो चाइनीज, जापानीज, कोरियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और पोर्चुगीज में कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्स आप सिर्फ ऑफलाइन कर सकते हैं।
3: इस घर में तो किसी को किसी चीज की चिंता ही नहीं है।
1: अरे क्यों बड़बड़ा रही हो इतना?
3: गप्पू की 12वीं हो चुकी है और वो पूरा दिन बैठकर सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ही तैयारी करता रहता है। रेगुलर कॉलेज करना ही नहीं चाहता है। जमाना AI

0: का है और वो साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई के बाद भी ग्रेजुएशन छोड़कर बैठा है।
1: अरे वो तो बच्चा है, अपना भला बुरा नहीं समझता।
0: तभी तो बड़बड़ा रही हूँ, आप तो कुछ सोचो।
1: सोच चुका हूँ, तभी तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के BSc कंप्यूटर साइंस कोर्स में उसका एडमिशन करवा दिया है, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ AI की दुनिया को भी जीत सके।
2: स्टूडेंट्स का भरोसा, पेरेंट्स का विश्वास।
3: सर वैसे आजकल बहुत सारी बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस लैंग्वेज कोर्सेज करवा रहे हैं, ऐसे में अगर हम बात करें कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में, तो स्टूडेंट कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के कोर्सेज में एडमिशन क्यों ले, ये चीज हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे।
4: ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर ने जो ये भाषा पाठ्यक्रम को हम ऑनलाइन मोड में जो लेकर आए हैं, ये हमारा कम शुल्क में हर एक स्टूडेंट को विदेशी भाषाओं की पूरा शिक्षा देने की एक अनूठा हमारा प्रयास है और इसके साथ ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें किसी भी स्टूडेंट को वही स्टैंडर्ड मिलेंगे जो कि किसी फेस टू फेस लर्निंग स्टूडेंट को मिलते हैं। दूसरा ये रहेगा कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो क्वालिटी पर रहेगा। सभी विद्यार्थियों को मैं ये बताना चाहूंगा, ये हमारे जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं जिसमें कि फॉरेन लैंग्वेजेस हम कैटर कर रहे हैं, ये सारे जो पाठ्यक्रम हमने बनाए हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं और इसमें जो सर्टिफिकेशन होगा वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर होगा। और आपको ये सुविधा देने के लिए हमने जो उसका शुल्क तय किया है, जो फीसेस है वो बहुत ही कम रखी है, ऐसा किसी भी इंस्टीट्यूशन से हमने कम रखने की कोशिश की है। ये हमारा अनूठा एक प्रयास है। यह प्रयास हमारा फेस टू फेस एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। मेरा स्टूडेंट से रहेगा जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं किसी कारण से, तो वो ऑनलाइन मोड को ऑप्ट करें और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। कहीं से भी आप उन्हीं स्टैंडर्ड पर सीख सकते हैं जिस पर कि कोई फेस टू फेस लर्नर यहाँ पर सीख रहा है। हम आपके साथ खड़े हैं और अपनी सारी टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस के साथ आपको कैटर करने के लिए वी आर रेडी।
2: बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने। अगर स्टूडेंट्स को ये एश्योरेंस मिल रहा है कि ऑनलाइन मोड पर भी उन्हें ऐसी ही पढ़ाई करवाई जाएगी जैसी कि उन्हें ऑफलाइन मोड पर करवाई जाती है, तो ये तो उन सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वो अपनी कन्वीनियंस पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, अपने टाइम का सदुपयोग कर पाएंगे और ये स्टूडेंट्स के लिए वाकई एक विन विन सिचुएशन होगी।
0: क्या हुआ अश्विनी, इतने उदास कैसे लग रहे हो?
1: बच्चों की पढ़ाई के खर्चे और जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, मगर इस जॉब में फाइनेंशियल ग्रोथ ही रुक गई है। कहते हैं MBA किया होता तो ग्रोथ मिलती, काम बढ़ रहा है लेकिन सैलरी नहीं।
0: तो MBA की डिग्री ले लो।
1: किस यूनिवर्सिटी से करूं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भारी भरकम फीस कहां से लाऊंगा और जॉब के बिना खाऊंगा क्या?
0: प्राइवेट यूनिवर्सिटी से क्यों? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉम्पिटिटिव फी में जॉब के साथ साथ MBA की डिग्री ले लो।
1: जी हाँ, स्टूडेंट्स का भरोसा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जहां हर साल MBA में तकरीबन 3,500 स्टूडेंट्स एडमिशन लेकर अपने करियर को देते हैं एक नई दिशा। वेलकम बैक टू द शो। और अब हम दीक्षांत सर से जानना चाहेंगे कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के तहत आने वाले स्किल कोर्सेज के बारे में। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि OLDC में कौन कौन से स्किल कोर्सेज करवाए जाते हैं।
4: जो हमारे स्किल कोर्सेज हैं अंडर ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर वो मोर देन 25 हैं। कुछ कोर्सेज को मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, सर्टिफिकेट कोर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक टू एडवांस, सर्टिफिकेट कोर्स इन फोटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन ग्राफिक डिजाइन एंड DTP, सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक रोबोटिक्स एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन मीडिया स्टडीज एंड जर्नलिज्म, सर्टिफिकेट कोर्स इन लैब टेक्नोलॉजी एंड लैब मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी, सर्टिफिकेट कोर्स इन ब्यूटी एंड हेयर लैब, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफलाइन, बोथ द मोड्स आर अवेलेबल फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन नेल आर्ट्स ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन AC रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन काउंसलिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन मोटर ड्राइविंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन RO रिपेयरिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड GST, सर्टिफिकेट कोर्स इन एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। इनका ड्यूरेशन एज पर देयर सिलेबस हमने तय किया है और किस तरीके का सर्टिफिकेट मार्केट में रिक्वायर्ड है, इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है उनको रोजगार देने के लिए, उससे हम उनका ड्यूरेशन तय करते हैं।
1: सर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। दीक्षांत सर, अगर स्टूडेंट

0: इन कोर्सेज के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में जानने के लिए और क्या तरीके हैं?
1: हमारे डेडिकेटेड कॉल सेंटर्स एक्टिव जोन में हैं, वहाँ हमारा फोन नंबर रहेगा 011-6521-3030। दूसरा नंबर है 011-3566-3474।
0: सर, स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए आप एक बार नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए।
1: 011-6521-3030। दूसरा नंबर है 011-3566-3474।
2: दीक्षांत सर, प्लीज हमें बताइए कि सबसे सटीक जानकारी अगर स्टूडेंट्स और भी लेना चाहते हैं उसके लिए क्या माध्यम है?
1: मैं सभी छात्रों को बताना चाहूंगा, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड ओएलडीसी दोनों ने संयुक्त प्रयासों में हमने ये पाया कि जो हमारे छात्र हैं डिस्टेंस एजुकेशन में ओडीएल सिस्टम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, जिसमें की लर्निंग वाइल अर्निंग इज ऑल्सो पॉसिबल, लोग जॉब में है फिर भी अपनी डिग्रीज कम्प्लीट कर पा रहे हैं और जिसमें की जो आपको हम सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं या डिग्रीज आप अर्न कर रहे हैं वो कहीं भी फेस टू फेस लर्निंग से कम नहीं है, वो सेम स्टैंडर्ड्स पे है, बिकॉज़ आपका इवैल्यूएशन सेम मेथोडोलॉजी से हो रहा है, सेम एग्जामिनेशन ब्रांच आपको इवैल्यूएट करता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार ये जो कोर्सेज हमारे बच्चे कर रहे थे उसमें मैंने पाया कि कुछ बच्चों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। एंड किस तरीके से, क्योंकि छात्र शिक्षक संवाद किसी भी लर्निंग प्रोसेस की एक कड़ी की तरह काम करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक ऐसा माध्यम जिसमें एक व्यक्ति एक रिसोर्स कईयों से जुड़ते, MIT के चौक रेडियो से भी हमारा मोटिवेशन था और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स को सभी तक पहुंचाना था, तो हमने एक यूट्यूब चैनल से शुरुआत की जो कि आज के डेट में अपना पूरा एक वेल डेवलप्ड पोर्टल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये पोर्टल हमारा कोल रेडियो पोर्टल है, आप सर्च बटन में जाके टाइप करके इसको देख सकते हैं, कोल रेडियो DU। एंड यहाँ पर कोल रेडियो के माध्यम से हम आपसे इस तरीके का संवाद स्थापित करते हैं, जैसे आप वहां पर OER मटेरियल्स कोर्स के अनुसार आप अपना OER में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कैसे कौन कौन से वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो वहां पर लिस्टिंग में देख सकते हैं। कोल बुलेटिन एक हमारा एक अनूठा प्रयास है जिसमें कि आपको सारे नोटिसेज जो स्टूडेंट सेंट्रिक नोटिसेज हैं हम उनको एक अम्ब्रेला में अंडर ए बुलेटिन लाने की कोशिश करते हैं। ये हर साप्ताहिक बुलेटिन है, हर सप्ताह में ही इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ये बुलेटिन अवेलेबल है सारे बच्चों को। ये बहुत ही लाभकारी रहेगा अगर वो इसे सुने और इसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सारे स्किल कोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमारे कोल बुलेटिन में और साथ में स्पेशल बुलेटिन में आती रहती है। तो मैं मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा, अच्छा इस ये कोल रेडियो केवल केवल शैक्षणिक पार्ट को या भाग को कवर नहीं करता है, इसमें कहीं ना कहीं मनोरंजन का भी कुछ हो सकता है, क्योंकि युवा हमारे कहीं ना कहीं हर डायमेंशन से लिंक होना चाहते हैं। तो स्टूडेंट से रिलेटेड, कई स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनके मनोरंजन से रिलेटेड, उनके व्यक्तिगत लर्निंग, उनके मन स्थिति को ठीक रखने के लिए जो भी चीजें हो सकती हैं, उन सारे प्रोग्राम्स को हम लेकर आते हैं। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा वो कोल रेडियो को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लें। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि हमारे रेडियो कोल से जुड़ने के लिए आप हमारे जो URL है उसमें radio.oldcdu.ac.in टाइप करें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, radio.oldcdu.ac.in। आप इसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा यूट्यूब प्रेजेंस भी है, पोर्टल के थ्रू वेबसाइट के थ्रू आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आ सकते हैं।
2: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
0: अपने अगले एपिसोड में हम आपका परिचय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के उन अचीवर से करवाएंगे जिन्होंने अपने एकेडमिक एक्सीलेंस से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करके आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल कायम की।
3: मैंने आपसे कहा था ना बहुत काम की बातें, तो काम की बातें आपके लिए लगातार यहां पर बनी हुई हैं। इसी सिलसिले में एक आगे हम अपने काम की बात जोड़ देते हैं, क्योंकि अब जो समय है वो है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
4: आईची नगोया स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। एशियन गेम्स के मैदान से भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन, पदकों की खबरें, हर बड़े मुकाबले का ताजा अपडेट हम पहुंचा रहे हैं सीधे आप तक। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी अपडेट के साथ। एशियन गेम्स में भारत के लिए कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एशियन गेम्स 2026 में भारत का

0: दूसरा स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। उनका अंतिम स्कोर 484.6 रहा, जो दूसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया से 6.6 अंक अधिक रहा था। ईरान ने यहां पर कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: जी, थैंक यू सो मच शाहिद। एंड द अदर गुड न्यूज दैट कम्स दिस मॉर्निंग इज वंस अगेन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग। दोस्तों, इंडियन मेन इन द 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस हैव आल्सो सिक्योर्ड द सिल्वर फॉर इंडिया। जी हाँ, दे डिलीवर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विद ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर फिनिशिंग थर्ड विद 589, नीरज कुमार स्टूड फोर्थ विद 588 और रुद्रांश बालासाहेब पाटिल फिनिश नाइन्थ विद 585। भारत का टोटल स्कोर इसके साथ बन गया था 1762 यानी 1762, विच अर्नड देम the silver medal. China took away the gold with 1766 points led by Zhang Chenggong's 593, जो अपने आप में एक नया क्वालिफिकेशन गेम्स रिकॉर्ड है। और इसके साथ आपको यह भी बता दें कि अब ऐश्वर्य प्रताप सिंह और नीरज कुमार वापस से आज सुबह हमें 10:30 बजे मैदान में दिखेंगे प्लेइंग द इंडिविजुअल फाइनल्स इन द इंडियन मेन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस।
0: साक्षी, एक और पदक के बारे में अपने श्रोताओं को बता दें, टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स इवेंट में मनुषा और दिया चितले ने भारत का कांस्य पदक पक्का कर दिया है। भारतीय जोड़ी ने हांगकांग के वोंग चुंग तिंग और हु डुई केम को हराकर जो सेमीफाइनल मुकाबले में जगह बना ली है। वहीं एक अन्य मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े को चीन के लिन थिंगडोंग और कुमेन से हार मिली है।
1: जी, स्क्वाश की दुनिया में भी आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आज हम आ रहे हैं, बिकॉज स्क्वाश में भी भारत को एक मेडल यानी ब्रॉन्ज मेडल तो कम से कम अश्योर हो ही चुका है। जोशना चिनप्पा विल बी हैविंग अनदर एशियन गेम्स मेडल 16 इयर्स आफ्टर विनिंग हर फर्स्ट। द 40 ईयर ओल्ड पार्टनरिंग विद वी सेंथिल कुमार स्टॉर्म्ड इनटू द मिक्स डबल स्क्वाश सेमीफाइनल्स विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर देयर फिलिपिनो ओपोनेंट्स 11-3, 11-5। जोशना एंड वी सेंथिल कुमार विल नाउ बी फेसिंग हांगकांग्स ली का यी एंड टैंग मिंग होंग इन द सेमीफाइनल्स टुमारो, thereby assuring India of at least a bronze medal in the match.
0: साक्षी, अब चलते हैं हॉकी के मैदान पे। भारत ने जापान को 3-1 से करारी शिकस्त दे दी और एशियाई खेलों में अपनी जीत का जो सिलसिला था उसे जारी रखा है। लालरिन श्यामी ने पहला गोल किया, जिसके बाद इश्का ने भारत की जो बढ़त थी उसको दोगुना कर दिया। इसके बाद नवनीत कौर ने तीसरा गोल दाग दिया। कोबायाकावा शिको ने अंतिम क्वार्टर में जापान के लिए एक गोल दागा, लेकिन भारत ने अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए आसानी से जीत हासिल कर ली है।
1: जी शाही, थैंक यू सो मच। एंड द नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, जहां हमारे भारतीय शटलर्स ने हमें फिर से एक बार आज सुबह खुशखबरी ही दी है, बिकॉज इंडियाज इंडिविजुअल बैडमिंटन कैंपेन एट द एशियन गेम्स गॉट अंडरवे विद ध्रुव कपिला एंड तनिषा क्रास्तो टेकिंग ऑन मालदीव्स अमीनात अब्दुल रजाक एंड निबल अहमद इन द मिक्स डबल्स। द इंडियन पेयर मेड अ डोमिनेंट स्टार्ट कंफर्टेबली टेकिंग द ओपनिंग गेम 21-8। इसके बाद जो दूसरा गेम था उसको भी हमारे दोनों ही भारतीय शटलर्स ने अपने नाम कर लिया 21-7 से, thereby winning the match in straight games 2-0 शाहिद।
0: जी हाँ, एक एथलेटिक्स की खबर दे देते हैं। महिला हेप्टाथलॉन में लॉन्ग जंप में अनामिका अनीश 6 स्थान पर है, कोई अच्छी खबर नहीं। पूजा 10 स्थान पर रही। ओवरऑल स्टैंडिंग में अनामिका 7 और पूजा 9 स्थान पर रही थी।
1: जी, और फेंसिंग की दुनिया से आपके लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर लेके आएंगे, बिकॉज इंडिया हैव बीन पुट ऑन द बैक फुट अर्ली इन द मेंस टीम फॉयल राउंड 16 टाई अगेंस्ट हांगकांग एट द एशियन गेम्स। सचिन बिगान विद अ 2-5 लॉस टू चुन चॉय बिफोर हिमश सिंह वेंट डाउन 3-5 इन द सेकेंड रिले, लीविंग इंडिया 5-10 बिहाइंड। वहीं पर आदित्य देन गेव इंडिया सम होप विद अ 6-5 विक्ट्री ओवर का लॉन्ग च्योंग, रिड्यूसिंग द डेफिसिट टू 4 पॉइंट्स एट 11-15। हाउएवर 17 साल के सचिन स्ट्रगल टू फाइंड इनफ टचेस इन द नेक्स्ट रिले विद Hong Kong extending their advantage to 19-12. So ab Bharat ke liye ek uphill aur bahut hi mushkil task hai to fight back into this event, क्योंकि आगे और भी रिलेज दोस्तों आज के दिन में आने वाले हैं।
0: जी, चलते चलते तैराकी की बात कर लेते हैं। पुरुषों की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक हीट में धनुष सुरेश क्वालिफाई नहीं कर पाए। पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल हीट में दक्षिण शशि कुमार और अनिश सुनील भी फाइनल में जगह नहीं बना सके। वहीं पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास और उत्कर्ष पाटिल ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
1: यस इंडीड, ये सारे अपडेट्स हम आपके लिए इस समय सुबह 9:30 बजे लेकर आए थे, लेकिन जाने से पहले आपको एक और खुशखबरी दे दी, छोटी सी है लेकिन है तो खुशखबरी, कि भारत मेडल टेबल में भी इस समय अब 15 स्टैंड से 12th पोजीशन पर आ चुका है। जी हां, 12वें स्थान पर अब भारतीय टीम आपको मेडल टेबल में दिखेगी। कुल मिलाकर भारत के पास इस समय 18 मेडल हो चुके हैं, एक गोल्ड जो और ऐड हो गया है आज सुबह शूटिंग की दुनिया से, उसकी बदौलत अब भारत के पास है 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स, विच पुट्स इंडिया ऑन द टेबल एट द 12th पोजीशन प्रेजेंटली। उम्मीद करते हैं कि ये खुशियों का जो सफर

0: है जारी रहेगा भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। फिलहाल के लिए मोहम्मद शाहिद और मुझे साक्षी को दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे आपसे सुबह के 10:30 बजे एक बार फिर से विद ऑल द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। गुड बाय फॉर नाउ।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज़ एक अंडा।
9: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
10: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
11: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
10: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
11: हैं? इतनी जल्दी?
10: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय काले खान स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
12: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खान से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
13: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने गाने नए पुराने वाले जो सेगमेंट चल रहा है, मैंने कहा था ना बड़े काम काम की बातें हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। तो जितनी काम की बातें कर आप ध्यान से सुनेंगे ना, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जिस जानकारी से आपको फायदा हो सकता है, परिवार को फायदा हो सकता है। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, यानी कि देश भी आगे ऐसे ही बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए धीरे धीरे जिस तरह से हम आ चुके हैं। अब आपको ये बता दें कि अगर आप इस समय ऑफिस के लिए निकल चुके हैं तो भाई साहब देखिए, वैसे तो सुबह सुबह जो होती है ना वो हल्की हल्की सी ठंडक, अब हल्की सी मतलब हल्का सा एहसास है, लेकिन इस समय जो मौसम है भाई साहब वो 32 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम, कम वाले की बात करें 23 डिग्री सेल्सियस है साहब। ये ध्यान रख लीजिए, मैंने आपको मौसम का हाल बता दिया। अगर आप इस समय ITU की तरफ से निकल रहे तो साहब जाम लंबा तो है ही, लेकिन वो चलने वाला है, धीरे धीरे धीरे चलता रहेगा। हाँ, इस समय जो ये सिकंदर लेन की जो साहब मुड़ने के वाली जो है रेड लाइट, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा मुश्किल से 2 से 3 मिनट का जो समय है वो आपको चला, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले जो हाथ से चला रहे हैं, रेड लाइट भी चल रही है, बाकी उन्होंने पूरा का पूरे समय ध्यान दिया हुआ है। अगर मैं इस समय इस गूगल मैप पर नज़र मारता हूँ तो यहाँ से अक्षरधाम से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने की तरफ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप उधर से अगर आ रहे हैं तो जो रोड यहाँ से ये सहारनपुर की तरफ जो रोड मुड़ रहा है, यानी कि अक्षरधाम के सामने, मुश्किल से हल्का सा हॉल्ट है। आपकी स्पीड जो है वो मेरे ख्याल से शायद वो सेकंड गियर के अंदर गाड़ी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ITU की तरफ जाने वाला बिल्कुल चकाचक, ये बिल्कुल बलू बलू बलू दिख रहा है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा मैप को, ओहो भाई साहब थोड़ा सा, अगर आप इस समय गाज़ियाबाद की तरफ से निकल कर आनंद विहार से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से मोहननगर, मोहननगर से जब आप टूवर्ड्स बढ़ रहे होंगे मेरठ की तरफ, तो मोहननगर का जो ये टर्न दिख रहा है ये लाल लाल दिख रहा है भाई साहब। ओहो ये लाल लाल लाल लाल है यहाँ पर, ये एक सेकंड इस पर ये क्लिक किया, ओहो ये कहता है भाई साहब आपको यहाँ पर 6 मिनट का हॉल्ट है। तो अगर आप उस रूट से हैं और आपको लगता है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा सकते हैं तो आप उस यूटर्न की बजाय थोड़ा सा आगे चले जाइए, आपको एक कट मिलेगा राजेंद्र की तरफ से, वहाँ से आप यूटर्न ले लेंगे तो फिर आगे रोड आपको सही मिल जाएगा। मतलब एक ये सफ़र ये भी आपका आसान हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं, इस समय वो रेड लाइट जो दिख रही है ये थोड़ी लंबी वाली है, रजौरी गार्डन के फ्लाईओवर के नीचे टूवर्ड्स प्रीतमपुरा, अच्छा प्रीतमपुरा की तरफ जाने वाला जो रोड है ये वाला, आपको अपने हैवी जाम का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ में मैं थोड़ा इधर करते हैं, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के बाद जो हैदरपुर मेट्रो स्टेशन आता है उसके नीचे वाला जो रोड है, वहाँ से अगर आप सीधा टूवर्ड्स रिंग रोड की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको धीरे धीरे धीरे चलना होगा, यानी कि चल रहा है लेकिन थोड़ा सा लाल लाल है, समझ जाइए। अगर आप भी अगर इस ट्रैफिक में कहीं आपको लगता है कि हैं तो 9868107070 हमारा नंबर है, साथ दीजिए, लोगों को बताइए कि साहब यहाँ से जाइए या वहाँ से मत जाइए, और प्लीज़ आप गाड़ी तेज़ बिल्कुल ना चलाइए। वही वाली बात है कि अगर आप समय से पहले निकल जाते 5 मिनट, लेकिन हमें तो आदत है ना 5-5 मिनट की कैलकुलेशन करने की, कब छोड़ोगे आप ये।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: जय बात दीदी ने बोली है, जय बात हम बोल रहे हैं भैया। हम तो पहले बोले थे हमने भाई 10 बजे तक बहुत धमाके वाली खबरें भी होंगी और गाना भी होगा और भैया उसके साथ साथ में मनोरंजन भी होगा। अब देखो ना, हम जा रहे हैं, अब तुमको अंग्रेजी गाना पसंद है ना, जब अंग्रेजी गाना पसंद है भैया वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम आगा, मैचलेस म्यूजिक आरवा का नाम है और देवशी रावत भैया करेंगे प्रोग्राम को, ठीक है। वाह के बाद में बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर आएंगे हमारे वीर दमन सिंह भाई और उसके बाद में रेशमा फारूकी आपके साथ में होंगी, प्रोग्राम होगा। आशियाना सुषमा शर्मा आपके साथ में होंगी, प्रोग्राम करेंगे वो रेडियो डॉक्टर का, ठीक है जी। सुनीता शाहबादी आपके साथ में आएंगी, प्रोग्राम वो करेंगी मैसेज मसाला।

मिक्स, तीन बार एम एम एम। लिपिका दास आपके साथ में होंगी वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम फ्राइडे। ओ फिएस्टा, वाह वाह क्या बात, बहुत बड़े प्रोग्राम है। आपकी याद आती रहे, विकास कौशिक आपके साथ में होंगे। अब आपको हम बता दें साहब कि हमारा यहां से देखो जाने का बाकी समय, आपको अपना ध्यान रखना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, सबसे बड़ी खास बात है एक दूसरे का साथ देना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आप एक दूसरे का साथ देंगे तब सब कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया ऐसे ही रहेगा। ऐसे रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 6 बजे सुपरभात प्रोग्राम के अंदर। टी आप बनेगा जरूर हमारे साथ में, हम आपको एक और भी गाना सुनाएंगे इसके साथ साथ में। मैंने क्या बोला, जहां कोई नहीं है वहां पे आकाशवाणी है। ठीक है, बाय बाय। जिन्होंने व्हाट्सअप करके मैसेज किए उन सभी लोगों का बहुत बहुत बहुत ही ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सो मच है। राजेश भल्ला जी हमारे साथ कंकड़खेड़ा से, थैंक यू सो मच। डॉली हमारे साथ है, शुक्रिया। ये गाना है, ये खोरवाल परिवार हमारे साथ में है। इसके बाद हमारे साथ विजयनगर से जुड़े हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच है आपका भी। और राजकुमार संतानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच है। फुरकान साहब, फारूक अली खासा हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू।

0: Alrighty, there we go. I hope you guys enjoyed that track over there. That was the best. And yes, it was basically most famously sung by the American singer Tina Turner. And yes, it was first recorded by Welsh singer Bonnie Tyler. There we go. So the song has a pretty impressive history, I must say. And yes, the song actually appears on Tyler's 7th studio album, Bonnie Tyler's studio album, 7th studio album, Hide Your Heart. And yes, Tina Turner released the cover version of this particular track, The Best, for her 7th studio album, Foreign Affair. Wow, interesting indeed. And yes, it was quite a smash hit. Alrighty, there we go. And yes, ladies and gentlemen, it is time for the Asian Games 2026 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल और दोस्तों हम लेकर आ गए आपके लिए आज सुबह की घड़ी के 10:30 बजे एशियन गेम्स के लाइव अपडेट्स। और मेरे साथ इस वक्त यहां स्टूडियो में मौजूद है मेरे मित्र मोहम्मद शाहिद आजमी। सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत हुई द बिग न्यूज के साथ कि भारत को उसका ऑन गोइंग एशियन गेम्स में दूसरा स्वर्ण पदक मिल गया। जी हाँ, दिस वॉज बॉट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग वेयर आर शूटर्स गॉट अस द कोवेटेड गोल्ड मेडल इन द 10 meter air pistol mixed team event. Kamaljeet and Suruchi Singh putting up brilliant performances from the side to reach a tally of 484.6, thereby helping India get that coveted gold. And uske saath hi shooters ne men's 50 meter rifle 3 position mein bhi aaj Bharat ko silver मेडल दिलवा दिया है विद एक्सेलेंट परफॉर्मेंसेस कमिंग इन फ्रॉम ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार एंड रुद्रांश बाला साहेब पाटिल पुटिंग इन अ टोटल ऑफ 762, thereby helping India get the silver. मूविंग ऑन टू द अदर बिग न्यूज ऑफ द डे, दिस वुड बी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश, जहां दोस्तों आपको बता दें कि अभय सिंह मेड क्विक वर्क ऑफ जापान्स रूनोसुके

0: Sukhoi, beating him 3-0 in straight matches, 11-4, 11-3, 11-6, in just 30 minutes to reach the men's singles semi-final. A small correction over there, in straight games to win the match 3-0 in just 30 minutes and thereby reach the semi-final. Abhay could be facing compatriot Veer Chitrani in the last four if Veer gets past Pakistan's Mohammad Irfan in his quarter-final later. An all-Indian semi-final would assure India at least of a silver medal. शाहिद
1: जी, शूटिंग की बात की, शूटिंग से आपने शुरुआत की थी, अच्छी खबर आज सुबह ही आ गई थी। शूटिंग से एक और बड़ी खबर आने वाली है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और नीरज कुमार ने 50 मीटर राइफल स्पर्धा के पुरुष व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 589 जबकि नीरज कुमार ने 588 अंकों के साथ चौथा और पांचवा स्थान हासिल किया। अब ये दोनों जो खिलाड़ी हैं, दोनों शूटर हैं, पदक के लिए प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे यहाँ भी मेडल देखने को मिलेगा।
0: जी, और शायद कनू की दुनिया से अगर बताएं अपने मित्रों को तो कोई भी खास खबर नहीं है कनू स्प्रिंट में आज भारतीय एंगल से, क्योंकि इंडिया फिनिश्ड आउटसाइड द मेडल रेसेस इन टू इवेंट्स इन कनू स्प्रिंट। जी हाँ, भारत का सफर दो इवेंट्स के अंदर मेडल कंटेंशन से बाहर हो गया है। भारत के प्रोहित बरोई और प्रसन्न कुमार चेम्पादिल सत्यप्रकाश फिनिश्ड फिफ्थ इन द मेन्स कयाक डबल्स 500 मीटर सेमीफाइनल क्लॉकिंग 1:40.308 सेकेंड्स। देन दे कम्पीटेड इन फाइनल बी जहां पर उन्होंने तीसरे स्थान पर समाप्त किया फ्रॉम चार पेयर्स के बीच में से, क्लॉकिंग अ टाइम ऑफ 1:40.411 सेकेंड्स। वही वुमेन्स कैनू डबल में 500 मीटर के सेमीफाइनल्स में मेघा प्रदीप और नेहा देवी ने भी चौथे स्थान पर समाप्त किया फ्रॉम 5 पेयर्स विद अ टाइमिंग ऑफ 2:08.306 सेकेंड्स। वेल, इसके साथ ही द इंडियन वुमेन्स कयाक 4/500 मीटर क्वार्टरेट ऑफ देवी क्वारिकप्पम, पूजा सोनिया देवी फायरबम एंड पार्वती गीता फिनिश्ड 8th इन द फाइनल ए विद द टाइमिंग ऑफ 1:45.670 सेकेंड्स। शाहिद,
1: साक्षी टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं। महिला एकल यशस्विनी घोरपड़े ने सीरिया की हैंड जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। यशस्विनी ने मुकाबला 11-5, 11-5, 11-8, 11-8, 11-4 से जीता। अब राउंड ऑफ 16 में उनका सामना जापान के वर्ल्ड नंबर 3 मिवा हरिमोटो से होगा। पुरुष युगल में मानव और मानुष की भारतीय जोड़ी को राउंड ऑफ 32 में जापान के हरिमोटो और शोनोजुका के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व टेबल टेनिस में ही जी साथियान हरमीत देसाई की जो भारतीय जोड़ी, उन्होंने पुरुष युगल में राउंड ऑफ 2 के मुकाबले में जो दूसरा मुकाबला था उसमें इंडोनेशिया के अफान प्रतमा और मोहम्मद नेगारा को हराकर अगले दौर में जगह बना ली है।
0: जी, एंड अ क्विक अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी, जहां भारतीय महिलाओं का सामना हो रहा है नेपाल से इस वक्त, और भारत ने पहले हाफ में बहुत ही स्ट्रांग बढ़त बना ली थी ओवर नेपाल 31-17 की एट द एंड ऑफ हाफ टाइम। और अगर हम बात करें उसमें संजू देवी और सोनाली के सबसे अहम कॉन्ट्रीब्यूशन रहे इन हेल्पिंग इंडिया ग्रैब दोस कोवेटेड पॉइंट्स ऑफ 31 पॉइंट्स, विच thereby helped them also get a lead in a very convincing manner in the first half over Nepal. Second half की भी शुरुआत हो चुकी है शायद, जहां पर इस वक्त अगर बात करें तो भारत लीड में बना हुआ है 17 अंकों के साथ और नेपाल है पीछे 7 अंकों के साथ। भारत का टोटल अभी तक का 48 पॉइंट्स का, जबकि एक्सैक्टली नेपाल उसके आधे पे है 24 पे। मैच ऑन गोइंग है बट लुक्स लाइक इंडिया शुड बी विनिंग द सेमीफाइनल इन दिस।
1: आज इंडिया के लिए खबर अच्छी आ रही है। बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए एशियन गेम्स की महिला एकल स्पर्धा के राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर ली है। उन्नति ने उत्तर कोरिया की यूमी सांग को सीधे गेम में 21-9, 21-10 से शिकस्त दी। अब राउंड ऑफ 32 में उन्नति का सामना मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से खेला जाएगा।
0: राइट, और आपको बता दें टेबल टेनिस की दुनिया में से भी कि टेबल टेनिस के अंदर हम जो अभी देने वाले हैं वो अपडेट आपके लिए यह आ रहा है कि यशस्विनी घोरपड़े डिफीटेड हेंजादा 4-1 टू रीच द राउंड 16 ऑफ एशियन गेम्स। और वहीं पर मिक्स डबल्स के जो हमारा पैर है मानव और मानुष का, दे लॉस्ट टू हरिमोटो एंड शिनोजुका ऑफ जापान 1-3 इन द राउंड ऑफ 32। एंड ऑल्सो गुड न्यूज कमिंग इन फ्रॉम कबड्डी, जहां भारत की महिलाओं ने नेपाल की महिलाओं को दोस्तों हरा दिया है और सेमीफाइनल जीत लिया है, विच मीन्स मोहम्मद शाहिद दैट इंडिया इज अश्योर्ड ऑफ अनदर मेडल एंड दिस टाइम इट वुड ईदर बी अ सिल्वर और अ गोल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी। And our women will be making us proud once again.
1: बिल्कुल, अब मेडल टेबल पर भारत को उछाल मिलने वाला है। आज जब शाम ढलेगी तब देखेंगे हम भारत का जो मेडल टेबल पर उछाल कितनी ऊपर जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतनी, एशियन गेम्स की इस घंटे की अपडेट है फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी ठीक 11:30 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को और साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: There we go. That was a track from the disco era from the 1970s. Yes, that was a 1974 track, Disco and Soul Song by American singer George McRae. And the track was called Rock Your Baby. There we go. Alrighty. And it was a huge success when it came out, selling over 11 million copies worldwide. Alrighty. Time right now is 10:40 and it's time for us to take a quick break over here. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैं

0: मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
1: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: There we go. We guys are back again on the show, the Matchless Music Hour. This is Dave with you guys. And yes, next up is going to be a nice, beautiful number by none other than Wham. That included George Michael and Andrew Ridgeley. And the track is called Careless Whisper. Here we go.

0: There we go. Beautiful track indeed over there. That was a classic by Mohammad Rafi from the movie Chaudhvi Ka Chand, and the track was Chaudhvi Ka Chand Ho. Alrighty, time right now is 10:50 this Friday morning. The show is called the Matchless Music Hour, and yes, we'll be back very shortly after these messages. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: Alright, there we go. Time right now is 10:56 this Friday morning, and it's time for me, Dave, to say tata and bye-bye. See you guys very soon. Well, exactly at 12 p.m. at

पेश है अब तक FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वाडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उच्च खाद्य तेलों का मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देशभर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था करीब $20 ट्रिलियन की है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू होगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार

मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय घटनाक्रम और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघची ने कहा है कि ईरान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बहाल करने के लिए 7 दिन का प्रस्ताव दिया है। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने श्रीनगर स्थित आकाशवाणी केंद्र में उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय चैनल प्रबंधनों के साथ समीक्षा बैठक की। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज और ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ कर समाप्त किया। तो ये तो थे अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए IR FM रेनबो, दिल से दिल तक।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली लिसनर। प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेन लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा तहे दिल से प्यार भरा एक बार फिर नमस्कार।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 पर, प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर धवन। और आज बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं और आपको आज बताऊंगा कि बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि लव एंड वॉर से रणबीर कपूर का खूंखार लुकआउट। जी हाँ, संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म लव एंड वॉर से रणबीर कपूर का पहला लुक सामने आ गया है और रब जुनून लिखा है और वे कार चलाते हुए बेहद आक्रामक रूप में दिख रहे हैं इस पोस्टर में, जिसे देखकर फैंस उनकी तुलना एनिमल फिल्म के किरदार से भी कर रहे हैं। आपका क्या मानना है अगर आपने ये पोस्टर देखा है?

और अगली खबर यह है कि हनुमान अंश, जी हाँ, ये फिल्म हनुमान अंश की ताबड़तोड़ कमाई और ओटीटी डील की सफाई। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर छाई फिल्म हनुमान अंश तक अब तक जो है 371.95 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। हाल ही में फिल्म की जो प्रोड्यूसर है ना, रागनी सोना, ने ये खबर की खारिज भी किया है कि ये खबर उन्होंने जो उनको पता लगी है कि और उन्होंने खारिज किया खबर कि जिसमें दावा किया जा रहा है कि फिल्म को 100 करोड़ का ओटीटी ऑफर मिला है। उन्होंने साफ किया है कि ऑफर आ रहे हैं लेकिन 100 करोड़ का आंकड़ा सही नहीं है। अब ये कितना आंकड़ा है ये तो वही बताएंगी, लेकिन फिलहाल जो हमारे तक ये खबर थी वो हमने आप तक पहुँचाई है। और दोस्तों, कुछ ही देर में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल, जी हाँ, और उस सवाल का अगर आप सही जवाब देंगे तो आप बन जाएंगे बॉलीवुड सरताज। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और अगली खबर आ रही है कि सलमान खान की मॉन्स्टर के एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग शुरू हो चुकी है। जी हां, अभिनेता सलमान खान की आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म मॉन्स्टर के सबसे भयंकर एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जहां वे मेन विलन और उनके गैंग से लोहा लेते हुए दिखेंगे। तो सभी को बेसब्री से इंतजार होगा इस एक्शन सीक्वेंस, जी हाँ, फिल्म मॉन्स्टर का।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स और अब समय है बॉलीवुड सरताज सवाल का, जो मैं आपसे पूछूंगा और आपने अगर सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और सवाल ये है कि संजय लीला भंसाली की जो है नेक्स्ट फिल्म जो रिलीज होने वाली है उसका नाम क्या है, जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में है, तो आपको उसका नाम बताना है और अपने नाम के साथ आंसर लिखकर अपने शहर के नाम के साथ भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। सवाल मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं और सवाल यह है कि संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट फिल्म जो रिलीज हो रही है या होने वाली है उसका नाम क्या है, जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में है, उसका नाम आपको लिखकर भेजना है, हमें व्हाट्सअप करना है और अपने नाम और शहर के नाम के साथ, और नंबर वही है 9868107070। और दोस्तों अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप बन जाएंगे बॉलीवुड सरताज, हम आपको कॉल करेंगे और आपको जी हाँ हमारे साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आपको पूरे देश और विदेश में लोग सुनेंगे। तो आप जल्दी से फ़ोन उठाइए और आंसर दीजिए हमें। नंबर एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपने नहीं नोट किया है 9868107070, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों अब समय होने वाला है जी हाँ एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का, तो आइए अब सुनते हैं अपडेट्स एशियन गेम्स 2026 की, क्या अपडेट्स हैं।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉक्सिंग की खबर के साथ। बॉक्सिंग रिंग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जादे को कड़े मुकाबले में 4-1 से जो निर्णायक मुकाबला था उसमें शिकस्त दी। मुकाबले की शुरुआत से ही सचिन ने अपनी रफ्तार और सटीक पंचों से दबाव बनाए रखा। अबू जादे ने अंतिम दौर में जोरदार वापसी की कोशिश की लेकिन रिंग में उनकी थकान साफ नजर आ रही थी। दूसरी ओर सचिन लगातार चुस्त दिखाई दिए और उन्होंने कई सटीक मुक्के लगाए भी और इस जीत के साथ ही सचिन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनके सामने जापान के शुंसुके कितामोतो की चुनौती होगी जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं।
3: राइट, थैंक यू सो मच शाहिद जी। मूविंग ऑन, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द अपडेट आल्सो ओवर हियर, बट अनाज सिंह इन द वुमेन सेमीफाइनल। हम स्क्वाश की पहले बात कर लेते हैं। अनाज सिंह मेड शॉर्ट वर्क ऑफ कंपैट्रिट तन्वी खन्ना, डिफीटिंग 3-0 11-2 11-5 11-3 इन जस्ट 15 मिनट्स टू रीच द वुमेन सिंगल सेमीफाइनल्स। द 18-year-old डोमिनेटेड द कॉन्टेस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, कंफर्टेबली गेटिंग पास्ट 30-year-old अपोनेंट। अनाज विल फेस जापान सतोमी वनटोबे इन द सेमीफाइनल। द जापानीज प्लेयर इज वर्ल्ड नंबर 6 एंड वन ब्रॉन्ज एट द 2022 ह्वांगजू एशियन गेम्स। और आपको यह भी बता दें कि लेटेस्ट अपडेट में भारत के वीर चौधरानी मोहम्मद इरफान से मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स में 3-1 से हार गए हैं। वेल इट वाज ही वाज ऑलरेडी हैविंग अ वेरी टफ टाइम, द स्कोर लाइन रीडिंग 11-6 8-11 और आगे भी अगर बात करें तो सिर्फ पहला ही वो सेट जीत पाए थे, उसके बाद के वो तीनों हार गए। इट वाज लुकिंग दैट ही वुड बी लूजिंग द गेम एंड प्रीटी मच दैट सम्स अप द मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स इन स्क्वॉश। शुरुआती दिन में आज हमने ये भी देखा कैसे स्क्वॉश में जोशा चिनप्पा ने भी एशियन गेम्स

0: एक मेडल भारत के लिए अशोर करवा दिया है। 16 साल के बाद जब उन्होंने अपना यहाँ पे उम्मीद रखेंगे वैश्य बी विनिंग द 40-year-old पार्टनरिंग बी सेंथिल कुमार स्टॉर्म्ड इनटू द मिक्स्ड डबल स्क्वैश सेमीफाइनल्स विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर द फिलिपिनो ओपोनेंट्स 11-3, 11-5। द विक्ट्री अशोर्स इंडिया ऑफ एटलीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट। आपको यह भी बता दें कि अभय सिंह मेड क्विक वर्क ऑफ जापान्स रियोनसुके त्सुकिकी बीटिंग हिम 3-0 इन जस्ट 30 मिनट्स रीच द मेन्स सिंगल्स सेमीफाइनल। अभय कुड फेस कंपैट्रियट वीर चौटरानी इन द लास्ट फोर और वीर गेट्स पास पाकिस्तान मोहम्मद इरफान, जो कि अब दोस्तों आपको बता दे होने वाला नहीं है क्योंकि वीर चौटरानी मेन सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल मोहम्मद इरफान से हार चुके हैं। लेकिन उम्मीद यहां पर करेंगे कि अभय आगे अपने नेक्स्ट राउंड में भी प्रवेश करके भारत को भी अभय सिंह मेडल दिलवा सके शायद।
1: साक्षी, शूटिंग से जैसा कि सुबह दो अच्छी खबर आई थी, लेकिन यहां पर एक और फाइनल मुकाबला खेला गया जहां अच्छी खबर नहीं है। शूटिंग 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में जो फाइनल मुकाबला था, वहां भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के फाइनल में 327.6 अंकों के साथ पांचवां स्थान हासिल किया। वहीं नीरज कुमार 299 के अंक के साथ आठवें स्थान पर है। इस वर्ग में चीन के नाम गोल्ड और सिल्वर यानी दोनों पहले दो पदक रहे, जबकि ब्रॉन्ज मेडल कजाकिस्तान के निशानेबाज ने अपने नाम किया।
0: राइट, एंड गिवन बाय हाउ गुड मोहम्मद इरफान लुक्ड इन द मेंस क्वार्टर फाइनल राउंड, मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स एंड स्क्वाश, वील हैव टू वेट एंड वॉच एज टू हाउ इट टर्न्स आउट इन द सेमीफाइनल्स फॉर अभय सिंह इन स्क्वाश अप अगेंस्ट मोहम्मद इरफान। लेकिन अब मूव करेंगे बैडमिंटन की तरफ भी, जहां उन्नति हुडा बिगान एशियन गेम्स कैंपेन ऑन अ विनिंग नोट डिफीटिंग नॉर्थ कोरियाज जी मी सॉन्ग 21-9, 21-10 इन स्ट्रेट गेम्स। उन्नति विल नाउ बी फेसिंग मलेशियाज वॉन्ग लिंचिंग इन द नेक्स्ट राउंड। हमने आज दिन की शुरुआत में एशियन गेम्स में देखा किस तरह से भारत के इंडिविजुअल बैडमिंटन कैंपेन जो किसकी जो शुरुआत हुई एशियन गेम्स में, उसमें ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्तो ने मालदीव के अमिनात अब्दुल रजाक और निबल अहमद को मिक्स डबल्स में किस तरह से उन्होंने प्रवेश करके हरा दिया। दे वेंट ऑन टू डिफीट देयर मालदीव्स ओपोनेंट्स इन स्ट्रेट गेम्स विनिंग द एंटायर मैच 2-0 वेरी कन्विंसिंगली एंड कमांडिंगली, द स्कोर लाइन बीइंग 21-8, 21-7।
1: अब एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं। एथलेटिक्स में महिला एथलॉन में भाला फेंक इवेंट में अनामिका अनीश ने 10वां जबकि पूजा ने 6ठा स्थान हासिल किया। कुल स्कोर के आधार पर अनामिका 8वें और पूजा 9वें स्थान पर रही। अब दोनों के सामने एक स्पर्धा बाकी है। दोस्तों को बता दें हेप्टथलॉन होता क्या है। हेप्टथलॉन महिलाओं की 2 दिवसीय संयुक्त एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जिसमें खिलाड़ियों को 7 अलग अलग स्पर्धाओं में प्रदर्शन करना होता है। पहले दिन 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉर्टपुट और 200 मीटर दौड़ होती है, जबकि दूसरे दिन लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर दौड़ के साथ प्रतियोगिता पूरी होती है। हर स्पर्धा के प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलते हैं और सभी 7 स्पर्धाओं में कुल अंकों के आधार पर विजेता तय होता है।
0: राइट, और जाने से पहले आपको दोस्तों ये भी बता दें कि इस समय मेडल टेबल में भारत कैसे स्टैंड कर रहा है। मेडल टेबल में भारत की पोजीशन है 12th। कुल मिलाकर भारत के पास हो गए 19 मेडल्स जिसमें से 2 गोल्ड आ चुके हैं, 1 क्रिकेट की बदौलत, महिला क्रिकेट की बदौलत, और 1 हमारी शूटिंग की बदौलत। 8 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। अब यही उम्मीद है कि भारत अपने प्रदर्शन को और बेहतर करता जाए समय के साथ साथ, दिनों के साथ साथ, लेकिन देखते ही सफर भारत के लिए कैसे पैन आउट होने वाला है। फिलहाल मुझे यानी साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम आपके साथ दोस्तों एक बार फिर से सारे लाइव अपडेट्स के साथ जुड़ेंगे दोपहर के 12:30 बजे आकाशवाणी के माध्यम से। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार

0: 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। और आपको बता दें कि आज मशहूर बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता फिरोज खान का जन्मदिन है। 25 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है और 25 सितंबर 1939 को बेंगलुरु में उनका जन्म हुआ था। और उनका नाम जुल्फिकार अली शाह खान, जो कि फिल्मी दुनिया में फिरोज खान के नाम से मशहूर है। और साल 1960 में आई फिल्म दीदी से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और उन्हें बॉलीवुड में फिरोज खान से नाम से तो जानते हैं। उन्होंने स्टाइल आइकन, कुर्बानी, जाबाज, धर्मात्मा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन और अभिनय किया। और 27 अप्रैल 2009 को फेफड़ों के कैंसर के कारण उनका निधन हो गया था। और आज बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिव्या दत्त का भी जन्मदिन है। 25 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है और उनका जन्म 25 सितंबर 1977 को लुधियाना, पंजाब में हुआ था। लुधियाना, पंजाब। और उन्होंने 100 से अधिक हिंदी, पंजाबी, अन्य भाषा की फिल्मों में शानदार अभिनय किया है और उन्हें वीर जरा, भाग मिल्खा भाग, दिल्ली सिक्स जैसी फिल्मों में उनके बेहतरीन और दमदार अभिनय के लिए जाना जाता है। और अपने अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे फिरोज खान साहब। आज हमारे बीच तो नहीं है लेकिन उनके अभिनय के कारण वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। और दिव्या दत्त जी को भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, ये है बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड ट्रेल्स में हम आपसे पूछ रहे थे कि बॉलीवुड सरताज का जो सवाल है, तो अगर हमारे कुछ दोस्त अभी अभी जुड़े हैं तो उनको हम बता दें कि बॉलीवुड सरताज में जो आज का सवाल है वो है कि अगर संजय लीला भंसाली की जो है वो नेक्स्ट फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है उसका नाम क्या है। संजय लीला भंसाली की जो नेक्स्ट फिल्म है उसका नाम क्या है, जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में है, तो उसका नाम आपको बताना है और हमें व्हाट्सअप करना है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868107070। और कुछ दोस्तों ने हमें जवाब लिख के भेजे हैं लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिख के भेजा है, तो अपना नाम ज़रूर लिख कर भेजें और कौन सी जगह कौन से शहर से आपने मैसेज भेजा है ये भी लिख के भेजें। और जल्द ही हम कनेक्ट करेंगे अपने बॉलीवुड सरताज के साथ, तो एंट्रीज अभी ओपन हैं, आप हमें इस सवाल का जवाब भेज सकते हैं हमारे नंबर पर 9868107070 पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और दोस्तों, हमने अब से कुछ देर पहले आपसे एक सवाल पूछा था बॉलीवुड सरताज के लिए, और सवाल था कि संजय लीला बंसाली की नेक्स्ट फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है उसका नाम क्या है, जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में है, तो आपने उसका नाम बताना था। तो हमें बहुत सारे आंसर मिले हैं और कईयों ने सही जवाब दिए हैं, कईयों के गलत भी हैं, और उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे बॉलीवुड सरताज के साथ। तो हमें आंसर भेजा है सलीम फैज़ ने शिव विहार दिल्ली से, फिल्म का नाम है लव एंड वॉर, बिल्कुल सही जवाब है। और सुखलाल बाला फलकता वेस्ट बंगाल से उन्होंने हमें जवाब भेजा है, और सुरेश बदहान ने हमें लुधियाना से जवाब भेजा है, परवीन चौहान ने खरगांव से हमें जवाब भेजा है,

और मिसेस धर्म भाटिया ने रोहतक से हमें सही जवाब दिया है। मोहम्मद इम्तियाज़ ने जवाहर कैंप न्यू दिल्ली से हमें सही जवाब भेजा है। ईशा ने धर्मशाला से हमें सही जवाब भेजा है। प्रकाश गोगिया ने दिल्ली से हमें सही जवाब भेजा है और हमें भेजा है सही जवाब बदायूं से। विनीता कुमार ने उत्तर प्रदेश से देविका चटर्जी और हमें सही जवाब भेजा है। उमेश ने खयाला से। सोनिया त्यागी ने दिल्ली से हमें सही जवाब भेजा है, फिल्म का नाम लव एंड वॉर। और मोहम्मद फुरकान ने ग्राम सियाल मेरठ से हमें सही

दिल्ली से हमें सही जवाब भेजा है, और सुदर्शना मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी ने सोनीपत से हमें सही जवाब भेजा है, और सुरेश पाल ने हमें दिल्ली सुल्तानपुरी से सही जवाब भेजा है। क्या बात है, सब ने सही जवाब भेजा है। जो जिन्होंने गलत भेजा है उन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है। तो राजकुमार केसंतानी ने हमें सही जवाब भेजा है, अभिनय पारकर ने पूना से हमें सही जवाब भेजा है, और कंचन सोनिया विहार से हमें सही जवाब लिख के वो भेज रही हैं, और हमें उत्तम नगर से शिव विहार से फहीम खान ने सही जवाब भेजा है, सलीम मलिक ने मेरठ से सही जवाब भेजा है, पूजा कोमल आयुष ने सही जवाब भेजा है, पंकज ने अमरावती महाराष्ट्र से हमें सही जवाब भेजा है, कान्हा ने मेरठ से हमें सही जवाब भेजा है, और जवाब अभी आ ही रहे हैं। जैनंद त्यागी ने मोदी नगर से सही जवाब भेजा है, और डॉली ने सही जवाब भेजा है, और किन्होंने हमें सही जवाब भेजा है, इन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है, कोई बात नहीं। और फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं गाना, और उसके बाद हम बॉलीवुड जो सरताज बने हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनसे बातें करेंगे।

0: दोस्तों अब हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं हमारे बॉलीवुड सरताज, तो चलिए उनके साथ कनेक्ट करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हेलो।
1: हेलो सर।
0: नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: आप अपना नाम बताएं।
1: सर मैं प्रवीण चौहान हूँ, करगोन मध्य प्रदेश से।
0: प्रवीण जी बहुत बहुत मुबारक हो। और पहले जो इसका आंसर आप बताइए जो हमने आपसे सवाल पूछा था।
1: सर फिल्म का नाम है लव एंड वार।
0: लव एंड वार। और क्या करते हैं आप प्रवीण जी?
1: सर मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ।
0: अच्छा स्टूडेंट है, तो खरगांव से, खरगांव में आप हैं, तो खरगांव का क्या फेमस है वहाँ का?
1: सर खरगांव नहीं, खरगोन बोलते हैं। और ओके। ये इसको नौग्रह की सिटी बोलते हैं।
0: नौग्रह
1: मतलब नाइन प्लेनेट।
0: नाइन
1: सिटी ऑफ, हाँ सिटी ऑफ नाइन प्लेनेट। यहाँ का मतलब खासियत ये है कि जो पूरा भारत में ये यहाँ का जो मंदिर है वो एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सन सेंटर्ड है, मतलब सूर्य प्रधान, सेंटर में सन है।
0: ओके सेंटर में सन है। ओके तो और बाकी इसके अलावा आपके शौक क्या हैं, क्या क्या आपकी हॉबीज हैं?
1: हाँ सर शौक तो सर अभी सब बंद हो गए हैं। पहले बचपन में थे शौक खेलना, फिर ड्राइंग पेंटिंग करना।
0: ओके तो ऐसा है मतलब बचपन खत्म, बचपन खत्म शौक खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए ना?
1: सर अभी तो पढ़ाई करना पड़ता है तो पूरा टाइम चले जाता है पढ़ाई में।
0: तो रेनबो, रेनबो सुनते हैं एफएम रेनबो, समय निकलता है?
1: हाँ साथ साथ में रेनबो सुनता हूँ।
0: कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगते हैं? ऐसे तो सारे प्रोग्राम बहुत बढ़िया है हमारे।
1: सर सबसे बढ़िया तो यही है फिर, हाँ बॉलीवुड से। फिर उसके बाद दोपहर में कुछ प्रोग्राम आते हैं, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम रहते हैं।
0: ओके।
1: जैसे हेल्पलाइन वाले, फिर अल्फा जेन और
0: ओके
1: और भी प्रोग्राम है।
0: चलिए बहुत बहुत मुबारक हो और यूं ही अपना प्यार अपने

0: जिसके जरिए एफएम रेनबो को भेजते रहिए और हम आपसे फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक।
1: ओके थैंक यू सर।
0: थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों अब मेरा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। चलते चलते इतना ही कहूंगा कि मुस्कुराते रहिए, जिंदगी से हाथ मिलाते रहिए और 1 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी मेरा वाला सॉन्ग में। बाय।

0: All right, it's time for us to... It's time for the Asian Games 2026 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां मानुष शाह ने टेबल टेनिस में शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान के बेंजामिन फराजी को सीधे 4 गेमों में 4-0 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। मानुष ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की और पहला गेम 11-9 से अपने नाम कर लिया। उसके बाद लय बरकरार रखते हुए दूसरे गेम में 11-6, तीसरे गेम में 11-6 और चौथे गेम में 11-5 से जीत दर्ज की। लगातार 4 गेम जीतकर मानुष शाह ने मुकाबले पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा और अगले दौर में जगह बना ली है।
3: जी, थैंक यू सो मच शाहिद। और अगला अपडेट हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कबड्डी की दुनिया से, जहां वुमेन एंड मेन बोथ ऑफ देम हैव गिवन रीजन फॉर द इंडियंस टू नाउ स्टैंड प्राउड, बिकॉज महिला के कबड्डी मुकाबले में हमने देखा भारत ने नेपाल को सेमीफाइनल मुकाबले में बड़ी आसानी और कन्विंसिंग तरीके से 48-24 से हरा कर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। वहीं पर अगर मेंस सेमीफाइनल की बात करें तो भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने भी अपना मुकाबला आसानी से जीत लिया थाईलैंड से विद अ स्कोर लाइन दैट रेड 66-28। फर्स्ट हाफ में भारत ने 37-18 से लीड बनाई और दूसरे हाफ में उन्होंने 29-10 से लीड बनाई एंड एज अ रिजल्ट द टोटल स्टूड टू 66-28 इन द मेंस सेमीफाइनल एंड देयर बाय बोथ द इंडियन टीम्स हैव नाउ booked their place in the finals of the ongoing kabaddi in the Asian Games 2026.
2: साक्षी, फेंसिंग की बात कर लेते हैं। भारतीय महिला ईपी टीम को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा है। उज्बेकिस्तान ने कड़े मुकाबले में भारत को शिकस्त देकर अगले दौर में जगह बना ली है। वहीं सर्फिंग की एक खबर दे देता हूं। सर्फिंग में महिला शॉर्टबोर्ड राउंड 1 में भारत की सुगर शांति गोयन ने कमाली प्रकाश अपने अपने हीट में सबसे निचले स्थान पर है। यानी यह दो खबरें हैं लेकिन दोनों में कुछ खास भारत के लिए नहीं है।
3: वेल, कुछ ऐसा ही समा फिलहाल मैं भी आगे लेके जाने वाली हूँ, बिकॉज ई स्पोर्ट्स और इक्वेस्ट्रियन की दुनिया से भी मेरे पास कुछ खास वेलकमिंग या फिर स्माइलिंग न्यूज नहीं आ रही है। दोस्तों, ई स्पोर्ट्स में भारत ने अपना मुकाबला साउथ कोरिया से 0-2 से वो पोकेमॉन यूनाइट में हार गए। साउथ कोरिया कंप्लीटली डोमिनेटेड एंड अबॉलिश्ड द इंडियन टीम इन स्ट्रेट सेट्स, विनिंग द फर्स्ट वन 1-0 एंड द सेकेंड वन ऑल्सो 1-0 अगेन टू मेक इट अ स्ट्रेट विन ऑफ 2-0। इक्वेस्ट्रियन के अंदर इंडिया हु हैड वन गोल्ड इन टीम रिसार्ज लास्ट एडिशन, मैं आपको याद दिला दे, इस बार भारत ने चौथे स्थान पर समाप्त किया है बिहाइंड चाइना, जापान और कोरिया। भारत के कुल मिलाकर जो अंक बने थे वो थे 201.971 पॉइंट्स, जिसमें श्रुति ने 68.059, हृदय ने 67.353,

0: और जय ने 66.559 के स्कोर्स के साथ कंट्रीब्यूशन दिया। ये तीनों भारत के लिए टॉप थ्री स्कोरर्स बने। गौरव जिन्होंने 65.794 का कंट्रीब्यूशन दिया था, वो क्योंकि चौथे स्थान पर थे इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन इस टोटल के अंदर काउंट नहीं किया गया।
1: फेंसिंग की बात कर लेते हैं साक्षी। फेंसिंग में पुरुषों की टीम फाइनल स्पर्धा में राउंड ऑफ 16 में भारत को हांगकांग के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही जो फाइनल जो स्पर्धा है उसमें भारत की चुनौती समाप्त हो गई है।
0: राइट, एंड अ क्विक अपडेट नाउ कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश वेयर वी कैन गिव यू सम गुड न्यूज, बिकॉज सबसे पहले आपको बताते हैं कि जोशना चिनप्पा हैज अनदर एशियन गेम्स मेडल 16 इयर्स आफ्टर विनिंग हर फर्स्ट, बिकॉज शी विल नाउ बी कमिंग अप विद द 40 ईयर ओल्ड पार्टनरिंग बी सेंथिल कुमार स्टॉर्मिंग इनटू द मिक्स्ड डबल स्क्वॉश सेमीफाइनल्स विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर द फिलिपिनो ओपोनेंट्स 11-3, 11-5। दिस विक्ट्री अशोर्स इंडिया ऑफ एटलीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट। जोशना एंड बी सेंथिल कुमार विल नाउ फेस हांगकांग्स ली का यी एंड टैंग मिंग होंग इन द सेमीफाइनल्स टुमारो। तो यहां से भारत को एक पदक तो अब जरूर मिलेगा। वही अभय सिंह मेड क्विक वर्क ऑफ जापान्स रुनसुके सुखोई बीटिंग हिम 3-0 इन जस्ट 30 मिनट्स टू रीच द मेन सिंगल्स सेमीफाइनल्स। और आपको बता दें कि पहले ये बात हो रही थी कि अभय सिंह का शायद आमना सामना सेमीफाइनल में भारतीय अपोनेंट के साथ ही हो सकता है, लेकिन ऐसा प्लान नहीं था क्योंकि वीर चतरानी अपना मुकाबला मेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में मोहम्मद इरफान जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनसे हार गए 1-3। और इसीलिए अब अभय का आमना सामना सेमीफाइनल्स में होगा पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान के साथ। और अनाथ सिंह, उनके बारे में भी आपके लिए कुछ खबर लेके आ रहे हैं स्क्वाश की दुनिया से, जहां अनाथ सिंह मेड शॉर्ट वर्क ऑफ कंपैट्रियट तन्वी खन्ना डिफीटिंग अ 3-0 विद द स्कोर लाइन दैट रेड 11-2, 11-5, 11-3 इन जस्ट 15 मिनट्स टू रीच द वुमेन्स सिंगल सेमीफाइनल। द 18-year-old ऑल्सो डोमिनेटेड द कॉन्टेस्ट फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश। शी विल नाउ बी फेसिंग जापान सतोमी वतानबे इन द सेमीफाइनल।
1: चलते चलते साक्षी हॉकी की खबर बता दें, जहां भारत ने जापान को 3-1 से हराकर एशियाई खेलों में अपनी जीत का जो सिलसिला था जारी रखा है। महिलाओं की बात हो रही है महिला हॉकी की, जहां लाल रिम श्यामी ने पहला गोल किया जिसके बाद इश्का ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। वहीं नवनीत कौर ने तीसरा गोल दागा। कोई बाकावा शिको ने अंतिम क्वार्टर में जापान के लिए एक गोल जरूर दागा, लेकिन ये गोल कोई खास उनके लिए काम नहीं आया। भारत की जो बढ़त थी वो बनी नहीं और भारत ने आसानी से शिकस्त देते हुए यहां पर जीत दर्ज कर ली है।
0: राइट, एंड ऑन दैट नोट दोस्तों अभी के लिए हमारा सफर यहीं पर आकर समाप्त होता है इस अपडेट के अंदर, लेकिन आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 1:30 बजे जुड़ेंगे सारे लाइव अपडेट्स लेकर फ्रॉम द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। अभी के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। दोपहर 1:30 बजे एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: You're listening to the Asian Games 2026 update. And yes, we guys are back again on the show, Play It Cool with me, Dave. And yes, we have Afrojack over here right now with this beautiful track called Keep Your Love Alive. Let's listen to this.

0: we go. From the album Forget the World, that was Dutch DJ Afrojack with Keep Our Love Alive. Time right now is 12:40, and yes, we already received a message from our regular listener, Shriram. Shriram, let me see what I can do for you, for your request, and other requests also. Let me see, because it's not a request show. Okay, let's take a quick break over here. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
5: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
4: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
5: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
4: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
7: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
8: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
9: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: You guys are back again on the show, Play It Cool with me, Dave. And yes, I had asked you guys a question what's your plan for today? Today being a Friday. So you can always send across your message over here on our WhatsApp number, which is 9868107070. I repeat, 9868107070. That's our WhatsApp number. And yes, for me, yes, I might just go and meet my old childhood friends over here and just have a good time in the evening. Okay, there we go. Up next is going to be Ariana Grande with this track called Breathe In.

0: There we go, from the band's second studio album, Meteora. That was Linkin Park with Numb. Alrighty, there we go. Time right now is 12:51. And yes, we're going to take a quick break over here. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: मिल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: There we go. It's time right now is 12:55 this beautiful Friday afternoon. It's time for me, Dave, to say ta-ta and bye-bye. See you guys very soon. Until then, like the way I always say, smile. Because with a smile, you can win the entire world. Till then, enjoy this pretty beautiful track over here by Creed. And this one is called Higher. See you guys very soon. Bye-bye.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: पेश है अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वाडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथे उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू हुई। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देशभर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय घटनाक्रम और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने कहा है कि ईरान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने और होमुज जल डमरू मध्य को फिर खोलने और अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बहाल करने के लिए 7 दिन का प्रस्ताव दिया है। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने श्रीनगर स्थित आकाशवाणी केंद्र में उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय चैनल प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में आज मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और पुरुष के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत अब 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।
4: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं अलकाशी हूँ और पिछले लगभग 14 वर्षों से इंडियन कैंसर सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ वॉलेंटियर हूँ और कैंसर जागरूकता के लिए कार्य कर रही हूँ। मैं स्वयं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। इंडियन कैंसर सोसाइटी की ओर से मैं आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। हमारी संस्था पिछले लगभग 42 वर्षों से कैंसर के क्षेत्र में जागरूकता के लिए कार्य कर रही है, साथ ही कैंसर पीड़ित मरीजों की भावनात्मक एवं आर्थिक सहायता भी करती है। हमारी आज की वार्ता महिलाओं में होने वाले ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय के कैंसर से संबंधित है। वार्ता का विषय है बियॉन्ड सिम्टम्स, अंडरस्टैंडिंग ओवेरियन कैंसर। यह कैंसर महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बाद तीसरे नंबर पर होने वाला एक महत्वपूर्ण कैंसर है। इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसके लक्षण बहुत आम होते हैं जो किसी अन्य बीमारी के भी हो सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कैंसर का नाम सुनते ही हम सब घबरा जाते हैं, परंतु पहले हम ये तो जानें कि आखिर कैंसर है क्या। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बना है। साधारण रूप से ये कोशिकाएं मल्टीप्लाई होती हैं, बूढ़ी होती हैं और फिर मर जाती हैं। यह प्रोसेस एक नियंत्रित रूप से चलता रहता है, पर किसी कारणवश यदि इस प्रक्रिया में कोई खामी आ जाए तो ये पुरानी कोशिकाएं मरना भूल जाती हैं और अनियंत्रित तरीके से बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार ये एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। जब ऐसे ट्यूमर की असामान्य कोशिकाएं शरीर के दूसरे भागों में भी फैल सकती हैं तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। कोशिकाओं की इसी असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। और जब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ओवरीज की कोशिकाओं से शुरू होता है तो ये ओवेरियन कैंसर कहलाता है। आइए अब हम ये समझते हैं कि ओवरीज क्या हैं। प्रत्येक महिला में ओवरी यानी अंडाशय उसके प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मुख्य और महत्वपूर्ण अंग है। यह महिलाओं के पेट के निचले हिस्से पेल्विस में गर्भाशय यानी यूट्रस के दोनों तरफ स्थित होती हैं। हर महिला में दो ओवरीज होती हैं, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर।

यह बादाम के आकार की होती है और इसकी लंबाई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। ओवरीज के मुख्य कार्य क्या हैं? प्रत्येक महीने एक ओवरी बारी बारी से अंडाणु यानी एग्स या ओवम का उत्पादन एवं विकास करती है और फिर इसे गर्भाशय की ओर भेजती है। वहां पुरुष के वीर्य से मिलकर गर्भाधान होता है। साथ ही यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन बनाती है जो मासिक धर्म के चक्र को नियंत्रित करते हैं और गर्भधारण में मदद करते हैं। महिलाओं में अंडाशय कैंसर एक गंभीर बीमारी है। अंडाशय कैंसर का निदान करना कठिन है क्योंकि आमतौर पर इसके लक्षण बाद के चरणों तक दिखाई नहीं देते। जब दिखाई देते हैं तो अक्सर ये पेट में तरल पदार्थ जमा होने के कारण होते हैं। इससे दर्द और सूजन होती है। ओवेरियन कैंसर गंभीर होता है क्योंकि 2/3 मामलों में निदान के समय तक कैंसर फैल चुका होता है। इसके लक्षण बहुत सामान्य होते हैं। ये बदलाव अन्य सामान्य बीमारियों से मिलते जुलते हो सकते हैं। अगर आपको कुछ भी असामान्य लगे तो किसी स्वास्थ्य प्रदाता से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात करते हैं ओवेरियन कैंसर के लक्षणों की। यदि महिला की श्रोणि अर्थात पेल्विस में दर्द हो, पेट में दर्द हो, कभी कभी पीठ में भी दर्द हो सकता है तो ये ओवेरियन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। यदि खाना खाने के तुरंत बाद पेट भरा भरा सा महसूस हो, ब्लोटिंग हो, पेट फूला फूला सा लगे या भूख कम हो जाए तो ये भी ओवेरियन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। यदि ज़्यादा थकान हो, अकारण वजन कम हो तो ये भी ओवेरियन कैंसर के लक्षण होते हैं। यदि संभोग के दौरान दर्द हो, योनि से असामान्य रक्तस्राव हो, दस्त या कब्ज हो तो ये सब भी ओवेरियन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इसका निदान और परीक्षण किस तरह किया जाए? ओवेरियन कैंसर के शुरुआती चरणों में निदान करना मुश्किल होता है। इसका कारण यह है कि हो सकता है कि आपको कोई लक्षण ना हो या अस्पष्ट लक्षण हो, परंतु डरने की कोई बात नहीं। यदि आपके डॉक्टर को ओवेरियन कैंसर का संदेह है तो वे निदान के लिए इन परीक्षणों की सलाह देंगे, जैसे पेल्विस की जांच, जिससे किसी प्रकार की गांठ या बढ़े हुए अंग की जांच की जा सके, या पेल्विस का ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर MRI, CT स्कैन और PET स्कैन जैसे परीक्षणों की सलाह भी डॉक्टर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त ब्लड टेस्ट जैसे CA125 भी इसका एक इंडिकेटर हो सकता है। साथ ही BRCA1 या BRCA2 जैसे अनुवांशिक परीक्षण भी आवश्यकता पड़ने पर किए जा सकते हैं। अब ये होता क्यों है? इसके रिस्क फैक्टर्स या जोखिम कारक क्या हैं? तो आइए अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। सबसे पहला रिस्क फैक्टर तो इसका बढ़ती उम्र ही है। जैसे बढ़ती उम्र में किसी भी बीमारी का जोखिम बढ़ जाता है, वैसे ही बढ़ती उम्र के साथ साथ कैंसर का जोखिम भी बढ़ता है। अतः 60 वर्ष की उम्र के बाद इसके रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं। दूसरा है ओबेसिटी यानी मोटापा। ओबेसिटी या मोटापा कई बीमारियों का रिस्क फैक्टर है। ओवेरियन कैंसर में भी ओबेसिटी या मोटापा होने से इसका खतरा बढ़ जाता है। कई बार ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स लंबे समय तक एस्ट्रोजन के संपर्क में रहने या अधिक संख्या में ओवल्यूशन साइकिल से जुड़े होते हैं। अतः यदि कम उम्र में 12 वर्ष से पहले ही मासिक धर्म शुरू हो जाए और रजोनिवृत्ति देर से 50 वर्ष की उम्र के बाद हो तो ये इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। कभी गर्भधारण ना करना
पहला बच्चा 30 वर्ष की आयु के बाद होना या बच्चे को स्तनपान ना कराना इत्यादि भी ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं। यदि महिला को स्वयं या उसकी बहन, माँ, मौसी, नानी इत्यादि को स्तन, गर्भाशय, अंडाशय या कोलोरेक्टल कैंसर का इतिहास रहा हो तो महिला को भी इसका खतरा हो सकता है। यदि उसे स्वयं या उसके परिवार में BRCA1 या BRCA जीन म्यूटेशन पाया गया हो तो महिला के लिए भी ये एक रिस्क फैक्टर है। परंतु घबराइए मत, इन रिस्क फैक्टर्स के होने का ये मतलब नहीं कि आपको कैंसर हो ही जाएगा। परंतु हाँ, सतर्क अवश्य रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके इन जोखिम कारकों से बचे। तो बचाव किस तरह संभव है? अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय के कैंसर से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जो रिस्क फैक्टर्स हमारे हाथ में हैं ही नहीं, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे अनुवांशिकी, हेरिडिटरी बीमारियाँ। यदि महिला के परिवार में उसकी माँ, बहन, मौसी, नानी इत्यादि को बीमारी थी तो पारिवारिक इतिहास तो हम बदल नहीं सकते। यदि BRCA1 और BRCA2 जीन्स म्यूटेशन था तो उसे तो हम बदल नहीं सकते। पर जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी जो परिवर्तन योग्य जोखिम कारक हैं, उनसे बचाव संभव है। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, कम फैट यानी कम वसा व अधिक फाइबर या अधिक रेशे वाले भोजन का संतुलित आहार लें, फल सब्जियों का भरपूर सेवन करें जिससे आपका भोजन संतुलित रहे और वजन ना बढ़े, नियमित व्यायाम करें, एक स्वस्थ और एक्टिव जीवन शैली अपनाएं। यदि आप मोटापे से बचेंगी तो ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी कम होगा। कोशिश करें कि पहला बच्चा 30 वर्ष की आयु से पहले हो तथा बच्चे को स्तनपान कराएं। हार्मोन्स का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें इत्यादि। याद रखिए, आपकी सेहत आपके हाथ में है। अब इसका प्रबंधन एवं उपचार कैसे हो सकता है? यदि आपको ओवेरियन कैंसर हो भी गया हो तो भी डरने की कोई बात नहीं। आज इसके उपचार की कई विधियां उपलब्ध हैं और इसका सफल इलाज संभव है। परंतु हाँ, आवश्यक ये है कि इसका जितनी जल्दी निदान हो सके उतना ही सफल इलाज हो सकता है। देर करने पर कठिनाई हो सकती है, इसलिए ये जरूरी है कि अपने शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव के प्रति सजग रहें और अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं। नियमित जांच कराने से बीमारी प्रारंभिक अवस्था में ही पकड़ी जा सकती है और आप लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। जांच की यह सुविधा इंडियन कैंसर सोसाइटी के कैंसर डिटेक्शन सेंटर में भी दी जाती है। यह सोमवार से शुक्रवार 9 से 12:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ रक्त की जांच, छाती का एक्सरे, मुंह, गला, नाक, कान की जांच तथा महिलाओं एवं पुरुषों की अलग अलग जांच, सब कुछ बहुत ही कम खर्च में की जाती है। हमारा पता है 42 बाबर रोड, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली। 42 बाबर रोड, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली। और टेलीफोन नंबर है 2371-6941। साथ ही हमारी एक ICS हेल्पलाइन भी है जिसमें फ़ोन करके आप अपने किसी भी प्रश्न का समाधान कर सकती हैं। इसका नंबर है 9910516562, 9910516562। इसके अलावा हमारी एक मोबाइल ऐप है राइज अगेंस्ट कैंसर, जिसमें 5 भाषाओं में विभिन्न कैंसरों के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई।

0: है। इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकती हैं और ओवेरियन कैंसर सहित और भी कई कैंसरों के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों, आप हमारे डिटेक्शन सेंटर में आएं, अपनी जांच कराएं, कैंसर से बचें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए एक बार फिर मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लवली लिसनर्स। और दोस्तों, आप अपने सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। यहाँ पर आप अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपने नाम और फिल्म के नाम के साथ ज़रूर भेजिएगा, गीत कौन सा आप सुनना चाहते हैं, और एक दूसरी चॉइस भी दीजिएगा, दो गानों की जो है चॉइस भेजिए। और पहली जो सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट भेजी है वो भेजिए शोभापुर मेरठ कैंप से दिग्दर्शन और कविता गौड़ और इनके मित्रगण दिव्यांशु यादव, संजय ढींगिया, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शन सुनना चाहते हैं फिल्म। जी हाँ, फिल्म कौन सी है, फिल्म आप गैस कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल और भी ये सेम रिक्वेस्ट हमें भेजी है किन्होंने, अनीता वर्मा ने द्वारका से ये सॉन्ग हमें सुनना चाहा है। और इसके अलावा हमें ये भेजा है सौरभ अनेजा गाज़ियाबाद से, लिखते हैं कि आप कोई भी अपनी पसंद का गीत सुना दीजिए। और विजेंदर घाटोल अकोला से उन्होंने भी इस गीत की फरमाइश भेजी है। और फिल्म मैं आपको चलिए बता देता हूँ, फिल्म है दिल ही दिल में और गीत के बोल हैं ए नाजनी सुनो ना, अभिजीत की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत। और उसके बाद और रिक्वेस्ट लेंगे, आप भी अपने मनपसंद गीत की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: और दोस्तों, अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
5: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
6: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और दोस्तों मेरे साथ इस समय यहाँ मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी। घड़ी में बज रहे दोपहर के 1:30। हम लेकर आ गए आपके लिए द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स। जी हाँ, सबसे पहला अपडेट आपको देने वाले हैं टेबल टेनिस की दुनिया में, जहाँ वुमेन्स डबल्स के हमने आज मुकाबले देखे, लेकिन उसमें कुछ खास अच्छी खबरें नहीं है मेरे पास आप सबको देने के लिए, क्योंकि वुमेन्स डबल्स का जो पहला मुकाबला हुआ उसमें श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास डिड ट्राई टू पुट अप अ फाइट against Man Kuai and Wang Manu, but ultimately their opponents were just too good for them, and as a result Shreeja Akula aur unke sath sath Cinderella Das lost the game 3-0। matlab bahut hi dominating a confident jeet samne se unke opponents ne aaj Shreeja Akula aur Cinderella Das ke upar hasil kari। dusri taraf Yashaswini Ghorpade and Diya Chitale lost 0-3 to China's Wai Chen and Shuhan Fan। the Indian pair went down 7-11, 5-11, 8-11 with the Chinese duo taking control early in the third game and opening up an 8-11 lead before India tried to fight back, but it was just too late। और दिन की शुरुआत में हमने देखा था कि कैसे मानुष शाह also got the job done against Iran's Benjamin Faraji, sealing a convincing 4-0 victory। That was a good news that came around in table tennis। और उसके साथ साथ, लेकिन उसके बाद और कोई good news हमें मिली नहीं थी। We had the mixed doubles pair of Manav and Manush who lost to Harimoto and Shinozuka of Japan। Then Yashaswini Ghorpade defeated Hen Zaza to reach the round of 16 in Asian Games, and the other thing was that Harmeet and Yashaswini were knocked out in the mixed doubles quarterfinals। Big news that came in was that Jia Chitale and Manush Shah who have stormed into the mixed doubles semi-finals, jiska mukabla ab kal hoga hopefully, and yahan par umeed kar sakte hain ki Bharat ko shayad एक पदक अपने नाम मिले, लेकिन इट्स गोइंग टू बी स्टिल टू अर्ली शाय टू इवन से दैट।
7: इधर बैडमिंटन की बात कर लेते हैं साक्षी। बैडमिंटन में जबरदस्त रोमांचक मुकाबला चल रहा है। भारत का जो सबसे मजबूत जोड़ी भारत की है वो उतर चुकी है। हालांकि मुकाबला अभी बराबर चल रहा है एशियन गेम्स का। जो पुरुष युगल का मुकाबला, भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना थाईलैंड के पकापोन टिरास्कुल और पिराचाई सुपकुंत के बीच हो रहा है। भारतीय जोड़ी ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और पहला गेम 21-12 से अपने नाम किया। हालांकि दूसरे गेम में थाई जोड़ी ने जोरदार वापसी की और 21-19 से गेम जीतकर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। अब निर्णायक तीसरा गेम जारी है, जहां दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी थाईलैंड की जोड़ी ने 11-9 से बढ़त बना रखी है।
6: राइट, हॉकी की दुनिया से आपको थोड़ी खुशखबरी दे सकते हैं, बिकॉज भारतीय महिलाओं का मुकाबला हुआ जापान की महिलाओं के साथ, जहां भारत ने उनको 3-1 से, यानी जापान को 3-1 से हरा दिया इन द एशियन गेम्स। लालरिम सियामी और ओपन द स्कोरिंग बिफोर इशिका डबल्ड इंडियाज लीड विद नवनीत कौर एडिंग द थर्ड गोल। कोबाई खावा शीहू पुल्ड वन पैक फॉर जापान इन द फाइनल क्वार्टर, बट इंडिया हेल्ड ऑन कंफर्टेबली टू सील द विन। ये जरूर कह सकते हैं कि इससे पहले के मुकाबले जो हमने भारतीय महिलाओं के देखे हॉकी के अंदर, उसमें काफी ज्यादा गोल्स करके भी भारतीय महिलाएं जीती, और शायद इस मैच में आपने उसकी कमी जरूर महसूस करी हो, लेकिन जीत तो भारत के नाम ही दर्ज हो गई। और अब भारत का एक और पूल मैच है सिंगापुर के खिलाफ, और उसके बाद भारत को आप खेलते हुए देखेंगे सेमीफाइनल्स में इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स इन द विमेंस हॉकी मैच।
7: महिलाओं की बात आपने की तो यहाँ डबल्स की मैं मिक्स डबल्स की बात करना चाहूंगा। बैडमिंटन की खबर है, भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा करस्टो का मुकाबला मलेशिया के शेवन जेमई लाई और सून हुआट गो के बीच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 22-20 से जीतकर मुकाबले में बढ़त बनाई, लेकिन दूसरा गेम बेहद कड़ा चल रहा है। दोनों के बीच में जो मुकाबला है, दूसरा गेम जो है 21-21 की

0: बराबरी पर अभी मुकाबला जारी है। यहां पर देखना होगा क्या भारतीय जोड़ी इस गेम को जीत कर मुकाबले को अपने नाम कर पाती है, आने वाला कुछ समय ही बता देगा आपको।
1: जी, और एक क्वेश्चन की दुनिया से भी आपको अपडेट देते हैं कि जहां हमने पिछली बार देखा था कि भारत की टीम ने गोल्ड हासिल किया था टीम रिसर्च के ये लास्ट एडिशन में, वहीं अब इस बार भारत ने चौथे स्थान पर फिनिश किया है बिहाइंड चाइना, जापान, कोरिया। प्रीटी डिसअपॉइंटिंग न्यूज। भारत का टोटल रहा था 201.97 पॉइंट्स एंड एज अ रिजल्ट इट वॉज जस्ट नॉट इनफ फॉर द इंडियन इक्वेस्ट्रियन प्लेयर to even stand in competition with the other countries, Shahid.
0: जिस खबर की मैं बात कर रहा था उसमें कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट हुई है। भारतीय जोड़ी 23-22 से यहाँ पर जो दूसरा गेम है वहाँ आगे है, लेकिन अभी भी मुकाबला जारी है। बात सर्फिंग की कर लेते हैं यहाँ से भी कुछ, हालांकि बहुत अच्छी खबर नहीं, फिर भी जो आपको अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा जो सर्फिंग से खबर है, किशोर कुमार ने हीट जीत कर दूसरे दौर में जरूर जगह बना ली है। भारत के किशोर कुमार ने 9.33 के स्कोर के साथ अपनी हीट में पहला स्थान हासिल किया और दूसरे दौर में जगह बनाई। उनका जो अगला मुकाबला कल होने वाला है, यानी कल उनकी असली परीक्षा होनी है।
1: जी, और चलने से पहले आपको एक खुशखबरी की नोट पे ही छोड़ेंगे, बिकॉज आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी खबरों के साथ हुई थी। शूटिंग की दुनिया से हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेडल्स के बारे में पता चला, बिकॉज इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट कमलजीत एंड सुरुचि सिंह ब्रॉट अस द लॉरेल्स बाय गेटिंग इंडिया द कवेटेड गोल्ड। और इंडियन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस में हमारे भारतीय शूटर्स ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया था। वहीं अगर हम बात करते हैं स्क्वॉश में भी, तो स्क्वॉश में मिक्स डबल्स के इवेंट के जो सेमीफाइनल्स कल घटित होने वाले हैं उसमें हम ये उम्मीदें रख सकते हैं कि हमें एक मेडल तो डेफिनेटली, अब यानी भारत को मेडल डेफिनेटली अश्योर हो चुका है। इसके साथ ही मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को अभी के लिए दीजिए इजाजत। हम आपसे एक बार दोपहर 3:30 बजे दोबारा जोड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। फॉर नाउ इट्स गुड बाय एंड टेक केयर।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। और दोस्तों, अगले जो गीत की फरमाइश हमें भेजी है वो भेजी है किन्होंने, ये भेजी है हमें मोहाली से सेक्टर 67 चंडीगढ़। TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, ये सुनना चाहते हैं फिल्म सौदागर का लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

और अगला गीत जो सुनने चाहते हैं वो है हमारे साथ प्रकाश गोगिया, मनोहर लाल सत्य प्रकाश गोगिया, किशन वंजानी दिल्ली से ये गीत सुनना चाहते हैं। और साथ ही हमारे को ये गीत की फरमाइश भेजी है देवरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है, साथ ही साथ हमें भेजी है कृष्ण कुमार मिश्रा ने दयालपुर दिल्ली से। तो ये रही आपकी फरमाइश।

और इस गीत की फरमाइश हमें पंकज ने अमरावती से भेजी थी और भी सभी दोस्तों ने भेजी है। और अगला गीत जो हम सुनवा रहे हैं वो सुनवा रहे हैं किन की फरमाइश पर, ये सुनवा रहे हैं किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किन के किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशन की फरमाइश पर, ये रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से इन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजी है। ये सुनना चाहते हैं तेरे नाम फिल्म का ये खूबसूरत गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

और दोस्तों अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है किन्होंने, वेस्ट बंगाल से भेजी है सुखलाल बाला फलकाटा से, और ये सुनना चाहते हैं केसरी फिल्म का ये खूबसूरत गीत, खास तौर पे इन्होंने लिख के भेजा है कि आप गीत सुनवा दीजिए प्लीज़। तो आपकी ये रिक्वेस्ट है तो हमें तो पूरी करनी पड़ेगी।

और अगले गीत की फरमाइश भेजी है हमें किन्होंने, ये भेजी है देव भूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से, हमें भेजी है कविता ने। और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ और भी हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजी है, मोहम्मद इम्तियाज, सलमा बेगम जौहर कैंप कीर्तिनगर से, कृष्ण कुमार मिश्रा दयालपुर से, और हमारे साथ प्रकाश गोगिया, मनोहर लाल गांधी, सत्य प्रकाश ने ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है, और राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से हमें कह रहे हैं कि गणेश विसर्जन की ढेरों शुभकामनाएं, आपको भी दिल से तहे दिल से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मनवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ने इस गीत की भी फरमाइश भेजी है, और हमारे कुछ और लिसनर्स भी हैं जिन्होंने हमें इस गीत की फरमाइश भेजी है। ये भेजिए ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, और राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता। तो आपकी पसंद का गीत ये रहा।

जी हाँ, एक मुलाकात जरूरी है सनम, लेकिन अगर आप अपना नाम चाहते हैं कि हम आपका नाम ऑन लेयर लें, तो एक रिक्वेस्ट जरूरी है सनम। आपको रिक्वेस्ट भेजनी है 9868107070 पर कि अगर कोई गीत आप सुनना चाहते हैं तो फिल्म के नाम के साथ अपनी रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। और अगली रिक्वेस्ट हमें भेजी है सुदर्शना मुखी अनीता।

गांव से ये रिक्वेस्ट भेजी है, और सुरेश पाल ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है, विपिन पटेल ने छतरपुर एमपी से हमें रिक्वेस्ट भेजी है, और किन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालविया, मनीष मालविया ने ये रिक्वेस्ट भेजी है, सुनीता शर्मा ने शालीमार बाग से हमें रिक्वेस्ट भेजी है, और हमें भेजी है मंजीत ने, कमल ने, पुष्कर सिंह ने दिल्ली से ये रिक्वेस्ट भेजी है, और हमें रिक्वेस्ट भेजी है किन्होंने ये भेजी है, अनीता ने और वरुण वार्ष्णेय ने कौरियागंज अलीगढ़ से हमें रिक्वेस्ट भेजी है, निकिता पारिकर ने पूना से हमें रिक्वेस्ट भेजी है, और हमें रिक्वेस्ट भेजी है किन्होंने, बहुत सारे लिसनर्स हैं, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनवाज खान और दानिश ने रिक्वेस्ट भेजी है, तो आपकी रिक्वेस्ट ये रही।

और दोस्तों बता दें कि अगला प्रोग्राम आशियाना आपके साथ लेकर आएंगी रेशमा फारूकी, और वो आज हमें रेनबो डेस्टिनेशन में कहाँ घुमाने वाली हैं, लेके जाने वाली हैं, वो वही बताएंगी। और अब अपने दोस्त आरजे वीर दमन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर। और चलते चलते मैं कुछ और दोस्तों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने अपना रिक्वेस्ट भेजी है, और ये हमें रिक्वेस्ट भेजी है किन्होंने, अफरोज शेख ने नेमुआ सुपौल बिहार से हमें ये रिक्वेस्ट भेजी है, और हमें कईयों ने औरों ने भी रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन अगले जो प्रोग्राम होंगे उनमें हम आपकी रिक्वेस्ट ले लेंगे, नेक्स्ट कल आप भेज सकते हैं। फिलहाल अब वीर दमन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ज़िंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा। बाय।

नमस्कार, लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू हुई। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देशभर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 71वें स्थापना दिवस पर कहा कि एम्स की विशेष जिम्मेदारी देश में स्वास्थ्य सेवाओं की अगली पीढ़ी को दिशा देने और अन्य चिकित्सा संस्थानों का मार्गदर्शन करने की है। ओडिशा के दक्षिण में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, वहीं स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। और आप तो जानते ही हैं कि आज हम आपके साथ ढेर सारी बातें करने के लिए आ गए हैं। सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारी ट्रैवल शो आशियाना रेनबो डेस्टिनेशन। दोस्तों, सफर की अगर बात करें तो ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने का नाम नहीं, सफर होता है नई जगह को देखने का, नई संस्कृतियों को जानने का, नए स्वाद चखने का और सबसे बढ़कर वहां के लोगों और उनकी जिंदगी से मिलने का। और आज रेनबो डेस्टिनेशन में हमारी मंजिल है एक ऐसा प्रदेश जहां इतिहास बहुत पुराना है लेकिन उसकी संस्कृति आज भी उतनी ही जिंदा है, जहां प्राचीन सभ्यता के निशान भी मिलते हैं और आधुनिक शहरों की रफ्तार भी, जहां कच्छ का सफेद रण है, गिर का जंगल है, समुद्र का किनारा है, मंदिर

है, बावड़ियां हैं और रंग बिरंगे हस्तशिल्प हैं। जी हाँ, आज रेनबो डेस्टिनेशन की पुकार है गुजरात कॉलिंग हेरिटेज एंड हॉस्पिटैलिटी। तो आइए सीट बेल्ट बांध लीजिए और सफर शुरू करते हैं। और सबसे पहले चलते हैं हम आपको लेकर गुजरात की गलियों में। और गुजरात की ये वो गलियां हैं जहां हमारी अपनी संस्कृति हमें नजर आती है, एक परंपरा नजर आती है जो हमें अपने आप में महसूस भी होती है।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है आशियाना, और आशियाना में हम बात कर रहे हैं आपके साथ रेनबो डेस्टिनेशन में गुजरात की। जी हाँ, गुजरात में अगर हम बात करें तो भाई अहमदाबाद हमारी पहली मंजिल होनी चाहिए। अहमदाबाद का सिर्फ गुजरात का एक बड़ा शहर कहना उसको शायद इंसाफ नहीं होगा, बल्कि पुराने शहर की गलियां, वहाँ के पोल, लकड़ी की नक्काशी वाले पुराने दरवाज़े, वहाँ के जो पुरानी इमारतें हैं, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहाँ इतिहास आज भी रोज़मर्रा के जिंदगी का हिस्सा है। और हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद को 2017 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी मिला था। तो अगर आप कभी अहमदाबाद जाएँ तो सिर्फ फेमस लैंडमार्क्स देखकर वापस मत आइएगा, थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिएगा, पुराने शहर की किसी गली में पैदल जरूर चलिएगा, क्योंकि कभी कभी किसी शहर को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसके नक्शे को देखना नहीं, उसकी गलियों में खो जाना होता है। और अहमदाबाद से निकलते हैं और मुझे लगता है उसके बाद हम चलेंगे पाटन की तरफ, जहां हमारा इंतजार कर रही है पत्थरों पर लिखी एक बेहद खूबसूरत कहानी। जी हाँ, रानी की वाव, पाटन की रानी की वाव, नाम सुनते ही एक बावड़ी की तस्वीर सामने आ जाती है आंखों के, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो महसूस होता है कि ये सिर्फ पानी तक पहुंचने के लिए बनाई गई सीढ़ियां नहीं हैं, बल्कि 11वीं सदी की ये बावड़ी अपनी स्थापत्य कला और बारीक मूर्ति कला के लिए बेहद मशहूर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जरा सोचिए, आज से लगभग 1000 साल पहले किसी ने पानी की जरूरत को कितनी खूबसूरती और कला के साथ जोड़ने की कल्पना की होगी। तो भाई यही तो है गुजरात की विरासत। कुछ और बातें आपके साथ हम करना चाहते हैं गुजरात के बारे में। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि गुजरात है तो जनाब कुछ इसी तरह के म्यूजिक होना भी चाहिए।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: और FM रेनबो पर हम आपके साथ बात कर रहे हैं गुजरात की। तो आइए जरा कच्छ की ओर रुख करते हैं। कच्छ में मौजूद धोलीवीरा हमें हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहर तक ले जाता है। नगर नियोजन, जल संरक्षण और निर्माण कौशल के प्रमाण बताते हैं कि उस समय भी यहाँ एक व्यवस्थित शहरी जीवन मौजूद था। और जनाब आज हम वाटर कंजर्वेशन को लेकर चिंतित नजर आते हैं, लेकिन हजारों साल पहले धोलीवीरा के लोग पानी के प्रबंधन को बहुत ही गंभीरता से लेते थे। कभी कभी सफर हमें नई जगह दिखाता है, बल्कि पुरानी दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका भी देता है। और भाई इसी कच्छ का एक और खूबसूरत पहलू है

0: वहाँ के हुनरमंद हाथ। जी हाँ, कच्छ का हस्तशिल्प। कच्छ का नाम आते ही आंखों के सामने रंगों की एक दुनिया हमारे सामने होती है, खुल जाती है, जिसमें कई सारी कढ़ाई है, मिरर वर्क है, बंधनी है, पारंपरिक वहाँ के वस्त्र हैं और कई तरह के हस्तशिल्प। लेकिन साहब, इन चीज़ों की असली खूबसूरती सिर्फ इनके रंगों में नहीं, इनके पीछे है कारीगरों के हाथ, पीढ़ियों से चला रहा हुनर और स्थानीय समुदायों की परंपराएं। यानी ये सिर्फ हैंडीक्राफ्ट नहीं, ये लिविंग हेरिटेज है। और शायद यही वजह है कि गुजरात की यात्रा से लौटते हुए लोग सिर्फ तस्वीरें नहीं लेते जनाब, कई बार वे अपने साथ एक छोटी सी कढ़ाई, कोई पारंपरिक कपड़ा या फिर हस्तशिल्प की कोई चीज़ भी ज़रूर लेकर आते हैं, जो उन्हें उस सफ़र की हमेशा याद दिलाती रहती है। इन्हीं रंगों से निकलकर चलते हैं उस जगह की तरफ जहां पूरी धरती ही सफ़ेद नज़र आती है। जी हाँ, ये है रण ऑफ कच्छ। यहां आप जाएंगे तो आपको यहां बहुत कुछ खूबसूरत देखने को मिलेगा। दूर तक फैली हुई सफ़ेदी, ऊपर खुला आसमान और शाम ढलते हुए बदलते रंग, बेहद खूबसूरत जगह है। आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आप ज़रूर जाइएगा। और अब बात यहां पर हम करेंगे हॉस्पिटैलिटी की, यानी कि वहां की जो मेहमान नवाजी है वो कैसी है। करते हैं बात, लेकिन पहले एक गीत सुनते हैं, उसके बाद मैं लौटती हूँ आपके पास। कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए प्रोग्राम आशियाना।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

तो जनाब, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और हम आपके साथ बात कर रहे हैं गुजरात की। और अब आपके साथ हम बात करना चाहते हैं गुजरात की मेज़बानी की, कि वहाँ आपको जो स्वाद मिलता है वो बिल्कुल अलग नज़र आता है। वाकई किसी जगह की यात्रा में हम क्या देखते हैं, यही तो हमें अक्सर याद रह जाता है। लेकिन वहाँ के लोगों ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है, कैसा वो हमसे बात करते थे, किस तरह से हमसे मिलते थे, ये शायद सबसे ज़्यादा हमें याद रहता है। गुजरात की पर्यटन पहचान में हॉस्पिटैलिटी का एक अपना ही अहम रोल है। जी हाँ, वहाँ पे आप हेरिटेज स्टे करें, होम स्टे करें, किसी स्थानीय परिवार से मुलाकात हो या फिर किसी छोटे शहर के बाज़ार में दुकानदार से ही बातचीत क्यों ना हो, यात्रा तब और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है जब डेस्टिनेशन सिर्फ जगह ना रहे बल्कि लोगों के साथ जुड़ जाए। वाकई वहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो बिल्कुल अलग ही नज़र आती है। वहाँ का जो स्वाद है वो बिल्कुल अलग, कहीं और मिलेगा ही नहीं आपको। ढोकला, खांडवी, थेपला या फिर गुजराती कढ़ी, फाफड़ा, जलेबी, मतलब ये कहना चाहिए कि एक अलग डेस्टिनेशन है। और स्वाद तो कहना ही क्या, और इतना ही नहीं, स्वाद आपको शायद कहीं और का भी अच्छा लग सकता है, लेकिन वहाँ की जो मेहमान नवाजी है, जब आप वहाँ जाएंगे तो इसका अंदाज़ा आप खुद ही कर पाएंगे। लिहाजा आपके पास जब भी थोड़ा सा भी वक्त हो तो मैं तो आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि आप वहाँ ज़रूर जाइएगा, एक बार महसूस करके देखिएगा कि हमारी संस्कृति जो गुजरात की है, जो हमारी परम्परा है, वो कितनी समृद्ध है। तो बस इसी के साथ आपसे इतना ही कहेंगे कि आज रेनबो डेस्टिनेशन में इतना ही। लेकिन हाँ, आप आकाशवाणी के रेनबो चैनल से जुड़े रहिए, बहुत कुछ है आप तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल मुझे यही अनुमति दें, नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ, अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं, वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में
2: जी।
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
3: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
3: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
2: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया, उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
3: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
2: जी।
3: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
2: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
3: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
2: जी।
3: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
2: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
2: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
3: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
3: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे हर गंगे हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हर हर गंगे हर गंगे हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
2: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा,
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई।

लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। आज कैंसर तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है और कई तरह के कैंसर में महिलाओं को होने वाला ब्रेस्ट कैंसर भी शामिल है। क्या है इसकी वजह और कैसे करें इससे बचाव, इस बेहद खास विषय ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पर हम जानकारी लेंगे आज अपने विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव से, जो फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एम्स न्यू दिल्ली हैं। आप विशेषकर ब्रेस्ट डिजीज के विशेषज्ञ हैं और 6 साल तक आदिफ ब्रेस्ट क्लिनिक में कार्यरत रहे। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: इस विषय पर अब आप भी करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कोई सवाल तो हमें करिए कॉल। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 01123421080 और 2342108 2। नंबर एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, 01123421080 और 2342108082। आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए नंबर नोट कर लें 9868107070 यानी 9868107070। डॉक्टर साहब, पहला सवाल है मेरा कि ब्रेस्ट कैंसर किस शारीरिक दशा को कहा जाता है?
2: जी, तो स्तन में दुग्ध निर्माण के लिए दूध की नलियां होती हैं, मिल्क डक्ट्स और मिल्क ग्लैंड होती हैं। तो अधिकांश स्थिति में देखा गया है कि दूध की नलियों की जो डक्ट्स के कण हैं, यानी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो तेजी से बढ़ने लगती हैं और वो धीरे धीरे एक गांठ का रूप ले लेती हैं। फिर शुरू में वो अगर डक्ट के अंदर जा रही है, निपल की जो दूध की नली है, तो उससे रक्तस्राव हो सकता है या पानी निकल सकता है निपल के सहारे, या अगर गांठ त्वचा के पास है तो वो महिला महसूस कर सकती है एक गांठ के रूप में। कभी कभी आसपास की कोई नस दब जाती है तो स्तन में पीड़ा भी हो सकती है। और कुछ परिस्थितियों में देखा गया है कि स्तन की गांठ इतनी छोटी होती है कि वो पता नहीं आती, लेकिन वो बगल की गिल्टियों में, यानी आर्मपिट की गिल्टियों में फैल जाती है, एक्सेला में, और वो गिल्टियों के रूप में पता चलती है।
1: जी जी, डॉक्टर साहब, किन लक्षणों से कोई महिला इस बीमारी की पहचान कर सकती है और साथ ही ये भी बताइए कि ये होता क्यों है या किन वजहों से ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी होती है?
2: जी ज़रूर। तो स्तन कैंसर के प्राथमिक लक्षण हैं स्तन में गांठ होना, पीड़ा होना, निपल से रक्तस्राव होना, खून आना या पानी आना, निपल का अंदर धंसना और कभी कभी बगल में गिल्टियां आना।
1: ओके, और किन वजहों से, अगर हम कारण जानना चाहें तो किन वजहों से ये बीमारी होती है?
2: जी, तो दूध की नलियों में शरीर में जो महिलाओं के हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन आदि हार्मोन कार्य करते हैं और उनसे उसका संचालन सही रूप में होता है, लेकिन कभी कभी वो उनका जो ब्लड में जो लेवल है उन हार्मोन्स का, वो चेंज हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन की अधिकता से या प्रोजेस्टेरोन की कमी से कुछ सेल्स तेजी से बढ़ने लगते हैं, अधिकांश 90% में ये दूध की नलियों में पाया जाता है, मिल्क डक्ट्स का, और कभी कभी मिल्क के ग्लैंड यानी कि जो लोब्यूल्स हैं उनका भी होता है कैंसर। तो 90% स्तन कैंसर मिल्क डक्टल कैंसर कहते हैं हम लोग उसको
1: जी।
2: और ये शुरू में धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो अगर महिला ने पहला बेबी 30 वर्ष के बाद हुआ है अगर उनका, या बच्चे को दुग्धपान नहीं कराया है, या उनको हार्मोन्स दिए गए हैं, काफ़ी हाई ईस्ट्रोजन टैबलेट्स दिए गए हैं, जैसे कुछ गायनकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें दिए जाते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती थी पहले, जिसमें कि जब मीनोपॉज होता है तो महिलाओं के जो पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम कम करने के लिए हाई डोज ईस्ट्रोजन पिल्स दी जाती थी
1: जी।
2: फिर अगर ओबी

0: ओबेसिटी है, मोटापा, तो उससे शरीर के 13 अंगों के और स्तन के भी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। अगर महिला तंबाकू इस्तेमाल करती है या अल्कोहल ड्रिंक करती हैं, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों रूप में स्तन कैंसर का संभावना बढ़ जाती है। यदि बाल्यकाल में छाती के सामने स्तन में या चेस्ट में अगर रेडियोथेरेपी दी गई है, रेडिएशन की किरणें दी गई
1: है,
0: तो 6 गुना स्तन कैंसर का संभावना बढ़ जाती है।
1: सर, इसका किसी आयु से भी रिलेट है क्या? ब्रेस्ट कैंसर की पर्टिकुलर किसी आयु में होती है या किसी भी आयु में हो सकता है? एज कोई है क्या इसके लिए?
0: अधिकांश महिलाओं में स्तन कैंसर 40 की उम्र के बाद होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में आजकल देखा जा रहा है 21, 22, 25 में भी ये कैंसर पाया जा रहा है, लेकिन ये कम है।
1: क्या समझते हैं सर, इतनी कम उम्र में इस तरह की बीमारी का होना?
0: जी, तो हमारे अगर जीवन शैली और भोजन की शैली, तो आहार विहार जैसे हम कहते हैं, उसमें तेजी से परिवर्तन आ रहा है। आज की जीवन शैली देखिए और 50 साल पहले की देखिए, और आज के खान पान के जो है, जैसे हम जंक फूड कहते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदे से बना पिज्ज़ा, नूडल, बर्गर, साथी शुगरेटेड ड्रिंक्स जिसमें कि ज़्यादा शुगर कंटेंट रहता है वो, और फिर लाल मांस, प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट, फ्राइड फूड्स, ये सब जो ऐसे खान पान की चीज जिसमें फल सब्जी, ताजे फल सब्जी का ना होना या कम होना, तो उनसे कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। और चूंकि आज देर से उठना, देर से जगना, तो कहा जाता था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ वुमन एंड ऑल्सो अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो भगवद गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त सपना व बोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात हमारा आहार अगर सात्विक होगा, सही समय पे खाएंगे, अगर विहार इन लाइफ स्टाइल, जल्दी जगेंगे सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक 9-10 बजे तक सो जाएंगे, और हम बहुत चिंता नहीं करेंगे,
1: हमारे स्ट्रेस नहीं लेंगे, उससे भी क्या ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस,
0: और जो हमारे कर्म हैं वो भी सब सही हों,
1: हाँ बिल्कुल जी,
0: तब हम योग के द्वारा सभी दुखों से और कैंसर से भी बच सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, स्ट्रेस को कई बार, बहुत बार जो डॉक्टर्स हैं कहते हैं कि वो बहुत सारी बीमारियों का कारण है, तो क्या इसमें भी स्ट्रेस का रोल रहता है ब्रेस्ट कैंसर में?
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये देखा गया है कि हमारे सबके, अधिकांश व्यक्तियों के शरीर में कैंसर सेल्स बनती रहती हैं, क्योंकि हमें बाहर से इतने विकिरण आ रहा है, कॉस्मिक रेज जैसे रेडिएशन है, फिर हम जो पोल्यूटेंट्स जो भोजन में है हमारे, द एयर वी इनहेल, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, दे ऑल हैव सम काइंड ऑफ कार्सिनोजेंस।
1: जी बिल्कुल,
0: तो उनसे हमारे शरीर में कैंसर सेल्स बन रहे हैं, कोशिकाएं बन रही हैं, लेकिन हमारे शरीर की रोग निरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी इतनी अधिक है कि हम उन कैंसर सेल्स को मार देते हैं। जी
1: डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो,
2: हेलो
1: जी,
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: हाँ जी बोलिए, पूछिए सवाल।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, बताइए कादिर साहब, बताइए।
2: डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है,
1: जी,
2: तो मेल्स में इसके कारण क्या हैं और लक्षण इसके बारे में विस्तार से बताइए
1: डॉक्टर साहब।
0: तो लक्षण है छाती में गांठ होना, पीड़ा होना, निपल का अंदर धंसना, निपल से रक्त स्राव यानी खून का आना या पानी का आना, और कभी कभी बगल में गिल्टियों का बढ़ना, ये प्राथमिक लक्षण है। और जब उसका इलाज सही समय पे नहीं होता, वो कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाता है, लंग्स में, लिवर में, फेफड़ों में, हड्डियों में, तब उसकी गंभीर दशा हो जाती है और उसके दर्द हो सकता है। छाती में अगर लंग्स में फैला है तो फेफड़े में पानी भर जाता है, सांस में दिक्कत हो सकती है, खांसी में खून आ सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर ब्रेन में पहुँच गया तो सिर में दर्द होगा और लकवा या पैरालिसिस भी हो सकती है। तो जिस अंग में कैंसर फैलता है उसके लक्षण हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत देर की अवस्था है। हम लोग कहते हैं डोंट वेट टिल लेट, जैसे ही प्राथमिक लक्षण हो, कोई गांठ गिल्टी पता चले, निपल अंदर धंसे, निपल में रक्त स्राव या पानी आए, तुरंत चेकअप कराएं, कैंसर हो सकता है।
1: जी तो सुना श्रोताओं आपने कि आज हम ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े विषय पर बात कर रहे हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव इस बेहद खास विषय पर अपने विशेषज्ञ से। अगर आप भी हमारे विशेषज्ञ से बात करना चाहते हैं तो, और कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए नंबर

नंबर्स हैं 01123421080 और 23421080। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए हमारा नंबर नोट कर ले 9868107070। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक में।

0: कार्यक्रम में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारा विषय है ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, और इस पर हमें विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, हमें एक मैसेज मिला है अलका का, वो लिखती हैं कि उनकी उम्र 46 साल है, दिल्ली से उन्होंने हमें मैसेज किया है। कैन दिस कैंसर हैपन टू अनमैरिड हैविंग नो किड्स वुमेन आल्सो, क्या कहेंगे आप?
1: यस, उनमें संभावना ज्यादा है
0: जी,
1: क्योंकि प्रेगनेंसी अगर 30 वर्ष के पहले होती है तो ये प्रोटेक्टिव है। प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अधिक बनता है वो स्तन कैंसर को बचाव करता है, लेकिन 30 के बाद, उम्र के बाद अगर पहला बच्चा होता है या बच्चा हुआ उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करा
0: जी,
1: या अबॉर्शन हो गया
0: जी,
1: तो वो खतरा बढ़ जाता है
0: जी, ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है।
1: ब्रेस्ट कैंसर भी और बच्चेदानी का यानी एंडोमेट्रियल कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है अनमैरिड लेडीज को
0: जी। और डॉक्टर साहब, अगर कभी ऐसा कोई रीजन हो कि नहीं हो पाया विवाह, तो क्या करें वो महिलाएं जो 40 की हैं या 40 से ऊपर की हैं? तो

0: उनके
1: उनसे
0: लिए
1: बचाव के तरीके हैं, अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, एक घंटे योगासन प्राणायाम एक्सरसाइज करें, वजन कंट्रोल रखें और फल सब्जियां, रंगीन फल सब्जी ज्यादा खाएं। ब्रोकली एक हरे रंग की गोभी होती है, उससे देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर बचने का, और इसी तरह लाल और जितने रंगीन फल सब्जियां ज्यादा मात्रा में खाएं तो उससे स्तन कैंसर का बचाव हो सकता है। लाल मांस और स्पेशली भुना हुआ मांस, रोस्टेड मीट और फ्राइड सब्सटेंस वो कम खाएं। शराब और तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें
0: जी।
1: मन को कंट्रोल करें, नियमित रखें और स्ट्रेस तनाव न लें
0: और खुश
1: रहें, ध्यान प्राणायाम करें, खुश रहें,
0: टेंशन ना लें और खुश रहें। जी। डॉक्टर साहब एक और सवाल है नरदेव सिंह का, कोट द्वार उत्तराखंड से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ब्रेस्ट कैंसर ग्रामीण या शहरी किस क्षेत्र में अधिक होता है? जो माँ स्तनपान नहीं कराती हैं उन्हें क्या ये ज़्यादा होने की वो रहता है, चांस रहता है?
1: जी, तो शहरों में ये कैंसर ज़्यादा है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, मद्रास, चेन्नई और कैलकटा, जो बड़े शहर हैं हमारे मेट्रोपॉलिटन टाउन, उनमें ये कैंसर बहुत अधिक है। और जो गांव के क्षेत्र हैं उनमें अभी ये कैंसर बहुत कम है। और जो पूछा आपने बेबी न होने का, तो उनको उनको कैंसर की संभावना ज्यादा है।
0: जी जी, डॉक्टर साहब स्तन कैंसर के लिए जोखिम, अगर कारकों की बात करें तो क्या कारक हैं इसके लिए?
1: तो हार्मोन्स का डिसरेगुलेशन, यानी कि अगर माहवारी 12 साल के पहले शुरू हो
0: जी,
1: और मीनोपॉज यानी मासिक धर्म का बंद होना 55 वर्ष के बाद हो, तो दोनों ही रिस्क बढ़ाते हैं। तो मीनार्के बिफोर 12 और मीनोपॉज आफ्टर 55 बोथ इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। फिर इसके अलावा ओबिसिटी तो हम लोगों ने बात चर्चा कर ही ली, टोबैको और एल्कोहल, और फर्स्ट बेबी 30 के बाद होना, ब्रेस्ट फीडिंग ना करना और हाई ईस्ट्रोजन इनटेक। इसके अतिरिक्त ये देखा गया अगर छोटी बच्चियों को जिनको अभी महावारी शुरू नहीं हुई है उनको खूब खेल कूद में और विग्रस फिजिकल एक्टिविटी में उनको लगाएं आप, खेल जो भी वो खेल कूद के गाँव में है तो वो खेत में काम करें, पानी भर के लाएं, खाना बनाएं, गौ माता की सेवा करें, कबड्डी खेलें, शहरों में जो भी खेल कूद हैं उनको खूब खेल कूद में एंगेज करें, तो देखा गया उनका मीनार्के यानी महावारी शुरू होने की आयु लेट हो जाती है और उससे स्तन कैंसर प्रोटेक्शन हो गया, देखा गया है और उससे चाइल्डहुड ओबेसिटी भी कंट्रोल होती है
0: जी।
1: तो छोटी बच्चियों को अपने घर में और स्कूल में खूब खेल कूद में ज्यादा लगाएं और फिजिकल एक्टिविटी में खूब ज्यादा आएंगे।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो सीधा सीधा ये है कि जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, जिस तरह से हमारी जीवन शैली चलती थी, उस वक्त महिला और पुरुष सभी स्वस्थ रहते थे और आज हमें ज़रूरत है उन्हीं परंपराओं को अपनाने की, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है, पूरे विश्व में पॉल्यूशन है और उस पॉल्यूशन से कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि खेल कूद और खान पान का ख्याल, तो ये हमें प्रोटेक्ट रखेंगे
1: अवश्य।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एंड डॉक्टर साहब ब्रेस्ट कैंसर की जांच की बात की जाए तो कैसे इसकी जांच होती है और उपचार के बारे में भी हमें बताइए।
1: तो पहले हमें आवश्यकता है जागरूकता की, हर महिला को 20 वर्ष के बाद स्वतः स्तन की जांच, यानी कि अपने नहाते या कपड़े बदलते समय अपने स्तन की जांच करें। उसके 5 तरीके हैं और आप YouTube में इसको स्तन की जांच का देख सकते हैं। हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए इसको 12 भाषाओं में अनुवाद भी किया है, पूरे देश में दिखाई जाती है। तो स्वतः स्तन की जांच करें महीने में एक बार पीरियड के एक हफ्ते बाद, यानी पहली तारीख को अगर आपका मासिक खत्म हुआ है तो 7 तारीख को आप स्वतः स्तन की जांच करें। अगर कोई गिल्टी लगे, निपल अंदर जा रहा है, निपल से ब्लड आ रहा है, कोई गांठ लगे तो तुरंत चेकअप करें। दूसरा है अपना वजन का ध्यान रखें, वेट कंट्रोल रखें, एक घंटे योगासन प्राणायाम करें, शाकाहारी फल सब्जी वाला भोजन अधिक करें, लाल मांस शराब और तंबाकू का सेवन ना करें।
0: डॉक्टर साहब इसी बीच में एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो
1: जी, जरूर।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा।
1: जी नमस्कार
2: सर, मेरी मैडम को ना प्रेगनेंसी के दौरान एक्सिला वाले पार्ट में छोटी सी गांठ हुई है, प्रेगनेंसी के दौरान, और अभी मैडम ने फीडिंग बंद कर दी, 2 साल कंटिन्यू किया है, लेकिन उसके बाद उसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, तो हमने उसका अल्ट्रासोनोग्राफी कराया, 2 बार कराया है साल में, तो दोनों बार साइज थोड़ा सा कम हुआ है। तो जिसने अल्ट्रासाउंड किया वो बोले कि भाई इसको रिमूव करवा लो, डॉक्टर साहब से राय ली तो वो बोले कि उसको ऐसा भी पड़ा रहने दे सकते हैं हम। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि ये किस वजह से हुआ है,
1: तो किसी स्तन रोग के विशेषज्ञ से आप उसकी जांच कराएं। तो अल्ट्रासाउंड में उनकी आयु कितनी है?
2: 40
1: के कम है
2: सर
1: जी? 33। तो 40 के कम आयु को हम लोग अल्ट्रासाउंड ही करते हैं, और अगर उनकी माँ, नानी, मौसी, बड़ी बहन, बुआ, दादी को भी स्तन कैंसर था,
2: ऑल इज वेल सर,
1: नहीं कोई परिवार में कैंसर था उनका, तो उनको MRI भी कराते हैं हम लोग। तो इनको एक अच्छा अल्ट्रासाउंड कराएं और अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं।
2: मैंने एम्स अधिक में दिखाया था सर,
1: एम्स में दिखाया, बहुत अच्छा है।
2: तो वो
1: एम्स में डॉक्टर अनीता धर हैं, दिल्ली एम्स में डॉक्टर अनीता धर हैं, शनिवार को बैठती हैं सुबह OPD में, तो उनसे मिलें। या डॉक्टर सोहानी बैठती हैं, तो अच्छी लेडी डॉक्टर हैं, तो उनको दिखा के, अगर वो कहते हैं सिर्फ चर्बी की गांठ है, अधिकांश तो चर्बी की गांठ होती है एक्जिला में, तो उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा खराब दिखता है, देखने में खराब दिखता है, और वो मैडम स्लीवलेस पहनना चाहती हैं, तो उसको छोटा सा ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है, एक्सेसरी ब्रेस्ट कहते हैं उसको। अगर उसमें स्तन के टिश्यू की गांठ दिख रही है अल्ट्रासाउंड में, तो उसकी बायोप्सी जरूर कराएं। तो चर्बी है या स्तन है, ये अल्ट्रासाउंड द्वारा पता चलेगा, और फिर उसको निकलवा सकते हैं अगर उनको स्लीवलेस कपड़े पहनने हैं।
2: चर्बी की है, पढ़ा भी रहने, हाँ, तो अगर ये आपको दिक्कत
1: चर्बी की है, और अगर मैडम जी आपकी स्लीवलेस कपड़ा पहनना चाहती हैं, तो वो दिखता है, तो उसको इसलिए वो निकलवा सकते हैं।
2: ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जांच कैसे की जाती है, आपने बताया कि स्वतः जांच, इसके अलावा
1: सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन,
0: जी जी, इसके उपचार के बारे में बात करें तो क्या उपचार दिए जाते हैं? अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो क्या उपचार होते हैं?
1: जी, तो उसको कंफर्म हो गया अगर बायोप्सी द्वारा
0: जी,
1: और मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड से हम देख लेते हैं वो स्तन के किस स्थान पे है, एक गांठ है कि कई गांठ है
0: जी,
1: और फिर हम वो शरीर में कहीं फैला तो नहीं है दूसरे अंग में, पेट सीटी से या स्कैन से उसको चेक कर लेते हैं, फिर हम उसका इलाज शुरू करते हैं। इलाज में उसके अंदर किस प्रकार के सेल्स हैं, कैसे रिसेप्टर हैं, उसके आधार पे आजकल निर्णय किया जाता है। एक जैसे पंचायत होती है गांव की, तो उसी प्रकार हमारी भी एक पंचायत बैठती है कैंसर एक्सपर्ट्स की, उसमें सर्जन, रेडियोथेरेपिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, फिर प्लास्टिक सर्जन, और विशेष नर्स होती है, ब्रेस्ट केयर नर्स, और परिवार के सदस्य, ये सभी मिलके चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इनका इलाज किया जाए। अगर सब लोग ऐसे सहमत करते हैं कि पहले ऑपरेशन किया जाए, तो पहले ऑपरेशन कर देते हैं हम लोग। अगर लगता है कि पहले इनको दवाओं से कीमोथेरेपी द्वारा इलाज किया जाएगा, गांठ छोटी की जाएगी, उसके पश्चात फिर ऑपरेशन किया जाए, तो ये हमारी जो कैंसर की पंचायत होती है, जिसको हम लोग ट्यूमर बोर्ड कहते हैं या मल्टीडिसिप्लिनरी टीम कहते हैं, वो निर्णय करती है कि पहले प्राथमिक इनका इलाज सर्जरी द्वारा है या ड्रग द्वारा, कीमोथेरेपी द्वारा है
0: जी।
1: और तो इसलिए सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और कभी कभी इम्यून थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। तो आजकल बहुत सारी दवाएं निकल आई हैं जिनसे हम उन विशेष कणिकाओं को, कैंसर सेल्स को दबा सकते हैं या सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि उनमें रिसेप्टर पाया गया है।
0: तो सर, जो अभी आपने ये जो प्रोसीजर बताया, क्या ये इसके जो अगर हम कहें कि सफलता के रेट है, वो कितना ज्यादा है?
1: तो अगर छोटी गांठ है
0: जी,
1: 2 सेंटीमीटर से कम गांठ है और बगल की गलतियों में नहीं फैली है, अभी जांच द्वारा पता चला है
0: जी,
1: तो हम कह सकते हैं करीब 90-95% महिलाएं 10 वर्ष तक एकदम ठीक रहेंगी।
0: अच्छा, ओके।
1: लेकिन अगर वो बगल की गलतियों फैल जाता है, तो थोड़ा सा सफलता की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर और शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाता है, तब संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं डोंट वेट टिल लेट, जैसे ही कोई गांठ गिल्टी पता चले, निपल अंदर जाए, निपल से रक्त श्राव, खून आए, पानी आए, तुरंत चेकअप कराएं। उसको ये ना सोच लें अरे तो दूध की गांठ है, ठीक हो जाएगी, ये ना सोचें
0: जी,
1: तुरंत चेकअप कराएं। 10 में 7 की संभावना है कि वो बेनाइन होगा, कैंसर नहीं होगा
0: जी,
1: लेकिन उसका चेकअप तो कराना है
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, सुना आपने कि डॉक्टर श्रीवास्तव कह रहे हैं कि कोई भी छोटी सी छोटी गांठ भी बड़ी बन सकती है अगर आपने उसको नज़रअंदाज किया, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी हो सकती है अगर आप समय पर डॉक्टर के पास आ गए, आपने डॉक्टर की सलाह मानी, उनके अनुसार आपने दवाइयाँ ली और अपना ख्याल रखा, और वो परेशानी जो बड़ी लग रही है वो भी बहुत छोटी हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसी विषय पर हमारे और आपके बीच में बातचीत होती रहेगी। सवाल बहुत सारे हैं। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि आज हम ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट जैसे बेहद खास विषय पर बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव से। और इसके लिए अगर आपके पास कोई है सवाल तो आप हमें कर सकते हैं कॉल, जिसके लिए हमारे नंबर है 0112342108 और 2342108। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: साथियों, अब वक्त हो चला है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट जानने का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ दोस्तों इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं दोपहर 3:30 के लाइव अपडेट्स ऑन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। सबसे बड़ा अपसेट जो आज हम कह सकते हैं आज के दिन का है वो रहा फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, जहां पर हमने देखा कि द वर्ल्ड नंबर फाइव पेयर ऑफ सात्विक साईराज रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी हु आर द डिफेंडिंग गोल्ड मेडलिस्ट हैव क्रैश्ड आउट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द एशियन गेम्स 2026 बैडमिंटन मेन्स डबल कैटेगरी। जी हाँ, द थाई पेयर ऑफ पकोपो एंड पीरा चाय सुखपू वन बाय अ मार्जिन ऑफ 21-12, 19-21, 14-21। अ वेरी बिग अपसेट फॉर द इंडियन बैडमिंटन कंटिंजेंट एंड फॉर द बैडमिंटन फैंस। आफ्टर अ डोमिनेंट विन इन द फर्स्ट गेम सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी लॉस्ट द सेकंड गेम आफ्टर अ नेक टू नेक फाइट विद पकोपो एंड सुखपुन। द थाई पेयर वन बाय अ क्लोज मार्जिन ऑफ 21-19 द सेकंड गेम। द मैच देन गॉट टाइड एट 1-1 एंड इन द फाइनल डिसाइडिंग गेम द थाई पेयर वाज जस्ट टू गुड फॉर सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी एंड इंडिया वेंट डाउन 14-21 इन द डिसाइडर टू लेट द थाई पेयर विन ओवर our Indian defending champions।
1: अच्छी खबर दे दूं साक्षी, यहाँ बैडमिंटन में भारत के मिश्रित युगल में ध्रुव और तनिषा की क्वार्टर फाइनल की जो जोड़ी थी क्वार्टर फाइनल पहुंच गई। जी हाँ, ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो की जोड़ी ने एशियन गेम्स के बैडमिंटन व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 गो सून हुआट और लाई श्योन जैमी की जोड़ी को कड़े मुकाबले में 22-20, 24-22 से शिकस्त दे दी है। दोनों गेमों में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। भारतीय जोड़ी ने दबाव के पलों में शानदार खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में 27 सितंबर को ध्रुव और तनिषा का सामना विश्व नंबर 1 फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग की चीनी जोड़ी के खिलाफ होगा।
0: जी, और टेबल टेनिस की दुनिया से आपको बता दें कि एक और निराशाजनक खबर हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं, जहां पर हमने देखा आज मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल्स हो रहे थे, अब वो फिलहाल समाप्त हो गए। इसमें भारत की तरफ से दिया चितले और मनु शाह वो रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड दे वर फाइटिंग अप अगेंस्ट द चाइनीज यिंगशा सुन एंड चू क्विन वैंग, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से ऑलमोस्ट इंडिया का जो सफर रहा है वो खत्म होते होते कगार से आते आते बच गया, क्योंकि पहले तीन सेट्स हम यहाँ पर कहेंगे जो पहले तीन गेम्स थे वो चाइना ने अपने नाम कर लिए हैं अभी तक 11-8, 11-5, 11-8। इसलिए ये सेमीफाइनल का मुकाबला दोस्तों अभी तो फिलहाल जारी है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि चाइना ने एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग शुरुआत भारतीय जोड़ी पर करी है पहले तीन गेम्स अपने नाम करके। शाहिद
1: जी, यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको भारत की एक उम्मीद निरुपमा देवी 63 किलोग्राम के वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में 7वां स्थान हासिल कर पाए हैं। उम्मीदें थी कुछ बेहतर करेंगी, कुल 217 किलोग्राम उन्होंने वजन उठाया। निरुपमा ने इस मैच में 93 किलोग्राम वजन उठाया, हालांकि 95 किलोग्राम उठाना चाहती थी लेकिन वहां नाकाम रही। किलियन जर्क में 124 किलोग्राम का भार उठाया, इस तरह उनका कुल स्कोर 217 किलोग्राम था, जो मेडल टैली में यानी मेडल के स्थान पर आने के लिए पोडियम पर आने के लिए काफी नहीं था।
0: जी, स्विमिंग की दुनिया से भी आपको बता दें कि यहाँ पर काइंड ऑफ मिक्स न्यूज हम कह सकते आई है, बिकॉज सजन प्रकाश प्रोग्रेस्ड आफ्टर फिनिशिंग 6th ओवरऑल इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई हीट्स विद द टाइम ऑफ 2:00.94, लेकिन जब फाइनल्स में उन्होंने आज प्रवेश किया तो वेटरन स्विमर फिनिश 7th इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई। ही डिड नॉट स्टार्ट इन द 100 मीटर बटरफ्लाई बट केम अप विद अ वैलियंट एफर्ट टुडे। वहीं पर अगर आप बात करें 21 साल के ऋषभ दास की, तो उन्होंने अपने निजी स्कोर को कह सकते हैं निजी टाइमिंग को और बेहतर कर लिया पिछली बार से, बिकॉज वंस द फाइनल्स ऑफ द मेंस 200 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट स्टार्टेड बोथ द इंडियंस व्हिच इज ऋषभ दास एंड उत्कर्ष पाटिल वर इन दिस फाइनल बट नीदर फिनिश्ड अमंगस्ट द टॉप थ्री। द 21 ईयर ओल्ड ऋषभ क्लॉक्ड 1:58.77 इन द 200 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल्स टू फिनिश 6th, टेकिंग मोर देन अ सेकंड ऑफ हिज प्रीवियस मार्क। वहीं पर उत्कर्ष पाटिल वाज 7th clocking a time of 2:00.94, so he was basically Rishabh Das was overall able to better his timing from the last time।
1: एक टेबल टेनिस से भी खबर दे देते हैं। महिला युगल में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, यशस्विनी घोरपड़े और दिया चिटले की जोड़ी राउंड ऑफ 16 में चीन की फैन शुहान और चेन ई के खिलाफ 0-3 से हार गई। चीनी जोड़ी ने मुकाबले में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा था और तीनों गेम 11-7, 11-5, 11-8 से अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ यशस्विनी और दिया की महिला युगल स्पर्धा में चुनौती समाप्त हो गई। वहीं एक और खबर दे देते हैं, हरमीत देसाई और सत्येन गणेशेकरन की जापान के जो खिलाड़ी हैं सेरा मासुयामी और शुनके तोगामी के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश की थी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। भारतीय जो जोड़ी थी उसे सीधे गेमों में 5-11, 9-11, 9-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा।
0: एंड अ वेरी क्विक अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग, इन विच इन द वुमेन्स 54 केजी राउंड वी फाउंड पैंग चोल मी डिफीटिंग प्रीति 5-0 इन द राउंड ऑफ 16, एन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस कमिंग फ्रॉम द बॉक्सर। ऑफ कोर्स द पेरिस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट प्रूव टू गुड फॉर द इंडियन प्रीति आउट देयर एंड शी लॉस्ट स्ट्रेट टू हर बाय गेटिंग डिफीटेड 5-0। सो निराशाजनक खबरें जरूर आती हुई याद दोस्तों इस अपडेट के अंदर, लेकिन उम्मीद है कि शाम को जब एथलेटिक इवेंट्स आएंगे तो जिस प्रकार से आज एशियन गेम्स में दिन की शुरुआत हुई थी सिल्वर और गोल्ड मेडल के साथ, हम आज दिन की समाप्ति भी कुछ मेडल्स के साथ जो आज हमने कमाए हैं उसके साथ कर पाएंगे। फिलहाल के लिए शाहिद और मुझे साक्षी, हम दोनों को दीजिए इजाजत। हम जुड़ेंगे आपसे शाम के 4:30 एक बार फिर से विद ऑल द लाइव अपडेट्स। फॉर नाउ थैंक यू एंड गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
4: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट जैसे एक खास विषय पर, और हमें बेहद खास जानकारियां दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है, कॉल लाइन पर ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो।
5: जरूर।
4: हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। मैं आपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि इस बेहद खास विषय पर अगर आपके पास है कोई सवाल या जानना चाहते हैं आप भी इस विषय पर, तो हमें कॉल करिए। उसके लिए हमारे नंबर हैं 2342-1080 और 2342-1082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए नंबर नोट कर लें 9868107070। डॉक्टर साहब, कॉलर जुड़ गए हमारे साथ लाइन पर, आइए। नमस्कार।
6: हाँ नमस्कार मैडम।
4: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
6: हाँ, मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ बीकानेर से।
4: जी जी, पूछिए सवाल, पूछिए डॉक्टर साहब से।
6: सवाल है डॉक्टर साहब, अभी ये गर्ल्स के लिए कोई वैक्सीन सुनी है कैंसर के लिए, तो क्या वो सभी तरह के कैंसर में काम करती है?
5: जो कैंसर की HPV वैक्सीन है 9 वर्ष से 14 वर्ष तक की बेटियों को दिया जा रहा है, उससे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव होता है। इसके अतिरिक्त मुंह के अंदर माउथ के ओरोफेरिंग्स में एक कैंसर होता है गले में, उससे भी बचाव हो सकता है, और जननांगों के जो कैंसर होते हैं उनसे भी बचाव है। तो 4 कैंसर से बचाव होता है HPV वैक्सीन की, अगर 2 खुराकें दी जाएं 6 माह के अंतर पर, एक पहली डोज 9 वर्ष में और उसके 6 महीने बाद बूस्टर डोज दी जाए, तो हम 4 अंगों के कैंसर महिलाओं में बचा सकते हैं। और अब तो पुरुषों में, बच्चों में भी दी जा रही है, बच्चे जो लड़के हैं उनको भी दी जा रही है, उससे भी लाभ है।
4: जी, जी।
6: तो ये ब्रेस्ट कैंसर में काम नहीं करेगी?
5: नहीं, ब्रेस्ट कैंसर वायरस से नहीं होता, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर इससे नहीं बच पाएगा।
4: जी जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल है हमारे पास रेनू जी का, भोपाल से। इनकी उम्र है 47 साल। ये लिखती हैं कि क्या कैन एरोबिक्स एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आल्सो हेल्प अवॉइड द कैंसर? आई हैड टोटली थायरोडेक्टमी डन एट द एज ऑफ 23। डू आई हैव रिस्क ऑफ दिस कैंसर?
5: जी, तो एक्सरसाइज एरोबिक एनएरोबिक किसी भी प्रकार की जाए, आइसोमेट्रिक कैसे भी एक्सरसाइज, योगासन प्राणायाम भारतीय पद्धति द्वारा भी सभी से, हम अगर वजन कंट्रोल हो रहा है उससे और मानसिक तनाव कम हो रहा है जैसे प्राणायाम से, ध्यान से, मेडिटेशन, तो हम स्तन कैंसर को और बहुत दूसरे बीमारियों को कैंसर से बचा सकते हैं। जहां तक टोटल थायरोडेक्टमी का सवाल है, उसके पश्चात आपको थायरोक्सिन टैबलेट दी जा रही होगी, एल्ट्रोक्सिन या थायरोनॉम के नाम से। तो जो महिलाएं थायरोक्सिन बहुत अधिक दिन से खा रही हैं उनको थोड़ा सा रिस्क देखा जा रहा है स्तन कैंसर के अधिक होने का, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, डरने की बात नहीं है, लेकिन आपको बचाव ज्यादा रखना होगा। अपना स्वतः स्तन की परीक्षण, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन माह में एक बार करते रहें। अगर पीरियड आपको हो रहे हैं तो पीरियड के 1 सप्ताह बाद अपना स्वतः जांच करें नहाते या कपड़े बदलते समय, और जरा भी कोई गिल्टी पता चले, निपल अंदर जा रहा हो, निपल से खून या पानी आ रहा हो या बगल की गिल्टियां हो, तो तुरंत आप चेकअप कराएं। और अच्छा होगा कि अगर आप विशेषज्ञ कोई स्तन कैंसर का, आपका भोपाल में जैसे एम्स भोपाल खुल गया
4: जी,
5: है
4: जी,

0: और गांधी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर
1: जी
0: हैं, तो उनसे आप संपर्क करें। और भोपाल में बता दूं, एक डॉक्टर स्वागता ब्रह्मचारी हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर की एक्सपर्ट हैं एम्स भोपाल में, और डॉक्टर जैन हैं ये गांधी मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट का कॉलेज है वहाँ पे,
1: जी
0: दो ये विशेषज्ञ हैं
1: जी
0: जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और वो फिर आपको चेकअप करके बताएंगे कि 47 साल की उम्र में आपको मैमोग्राम किया जा सकता है। तो
1: जी
0: मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि कोई सूक्ष्म कणिका स्तन कैंसर की तो नहीं बन रही
1: नहीं
0: है।
1: बन रही। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पर। हेलो
0: जरूर,
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं विश्वी बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से। हाँ
1: हाँ जी मैडम पूछिए।
2: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत थैंक्स, बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं।
1: जी
0: धन्यवाद धन्यवाद जी।
2: तो डॉक्टर साहब मेरे दो क्वेश्चन हैं।
1: जी
2: एक तो ये कि बड़ी उम्र की शादियां और बड़े सालों बाद बच्चे पैदा करने, क्या ये भी ब्रेस्ट कैंसर का रीजन है? और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल आयुर्वेदिक का बहुत शोर है कैंसर को इरेडिकेट करने का, हर जगह के कैंसर के लिए बहुत मशहूरी हो रही, क्या ये पक्का खत्म हो जाता है कि ये फिर से शुरू हो जाएगा आयुर्वेदिक की दवाइयों से? थैंक
0: तो
2: यू।
0: आपने आयुर्वेद का जो जो बात किया, तो मैं अभी एम्स से तो रिटायर हुआ हूँ, एम्स दिल्ली से जहाँ पे प्रोफेसर ऑफ सर्जरी था, तो अब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो कि आयुष मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा रिसर्च संस्थान है दिल्ली में, वहाँ भी कार्यरत हूँ। एक इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी सेंटर होता है जहाँ पे कैंसर का एलोपैथी और आयुर्वेदिक का मिल के सम्मिश्रण करके हम लोग उसका इलाज करते हैं, सोचते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: ज्वाइंट क्लिनिक होती है तो उसमें मैं भी जाता हूँ वहाँ पे। तो अभी आपको ये बता दें कि आयुर्वेद द्वारा स्तन या कोई और भी कैंसर का प्रमाणिक रूप से क्योर नहीं है। क्योर जो स्तन कैंसर का है वो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ही है।
1: जी
0: आयुर्वेद की दवाओं से हम जो साइड इफेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के,
1: जी
0: जैसे भूख न लगना, वजन कम हो जाना, उल्टी होना, मुंह में छाले होना आदि, उन साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन अभी तक कोई प्रामाणिक क्योर नहीं है आयुर्वेद में या यूनानी में, होम्योपैथी में, सिद्धा में, योगासन प्राणायाम में कैंसर का।
1: जी
0: अभी लोग क्लेम बहुत करते हैं लेकिन कोई भी प्रामाणिक रैंडमाइज ट्रायल द्वारा नहीं सिद्ध किया गया कि सिर्फ आयुर्वेद की दवा दी जाए और स्तन कैंसर ठीक हो गया या कोई और कैंसर ठीक, इसका
1: जी
0: कोई प्रमाण नहीं है, रैंडमाइज ट्रायल नहीं हुए हैं अभी।
1: जी जी जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब संजीव कुमार हमें हरियाणा से करनाल से लिख रहे हैं कि क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है?
0: जी
1: जी
0: संभावना कम होती है लेकिन पुरुषों में भी स्तन में गांठ बन सकती है और वो कैंसर हो सकती है। जैसे अगर 100 महिलाओं को हम देखते हैं स्तन
1: जी
0: कैंसर की, तो उनमें एक पुरुष होगा,
1: जी
0: तो 1:200 का रेशियो है।
1: जी
0: लेकिन हर पुरुष में तो ये देखना बहुत आसान है क्योंकि आप नहा रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, जब तौलिया से रगड़ रहे हैं तो उसी समय आप हाथ से देख लीजिए, कोई गलती पता चले या कभी कभी खून आए निपल से तो तुरंत चेकअप करा लीजिए।
1: जी डॉक्टर साहब इंदर हमें रोहिणी से लिख रहे हैं कि उपचार के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उसने उपचार लिया है तो उसके बाद क्या ख्याल रखना चाहिए?
0: जी तो उपचार में अगर कीमोथेरेपी दी गई है तो कीमोथेरेपी से शरीर की रोग निरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी जिसे कहते हैं हम, वो कम हो जाती है थोड़ी, तो इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो उनको जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है या उनसे बचना चाहिए, धूल या पोल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा हो उस स्थान से बचना चाहिए, और सिर्फ जो कच्चे फल सब्जियाँ नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें कीटाणु हो सकते हैं, पका के खाना खाना चाहिए, और ऐसे फल जैसे छिलके वाले हैं वो खा सकते हैं हम, लेकिन कच्चे फल और सब्जियां कच्ची नहीं खानी चाहिए क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये प्रिकॉशन लें आप, बाहर का खाना ना खाएं, घर का बना खाना खाएं। बाहर के खाने में अगर बहुत अच्छी जगह बनाया गया है तो ठीक है, लेकिन दो विशेष गंभीर विषय होते हैं बाहर के खाने
1: जी
0: में जो
1: जी
0: भारत में बनता है।
1: जी
0: एक तो आपको उस कुक का, जो खाना बनाने वाला है व्यक्ति है, उसकी हाइजीन का ध्यान नहीं है। वो अपना पसीना पोंछ के खाना बना रहा है, रोटी बेल रहा है, या अपनी नाक पोंछ के कर रहा है,
1: वो
0: आपको ज्ञान ही नहीं।
1: जी
0: 5-स्टार होटल में जाएंगे वहां ग्लव्स पहन के कुक अच्छा बनाते हैं, मास्क पहन के, वो तो ठीक है लेकिन बाकी अन्य स्थान पे नहीं।
1: नहीं कहा जा
0: दूसरा
1: सकता।
0: है वो कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहा है, उस पर आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है, और वो क्यों बहुत महंगा ऑयल इस्तेमाल करेगा।
1: बिल्कुल
0: अगर किसी ऑयल को, कुकिंग ऑयल में कोई चीज़ तली जाती है और दोबारा तली गई, इफ़ यू फ्राई सम फूड आइटम्स twice in the same oil, then it becomes harmful, it becomes carcinogenic.

0: तो जो छोटे मोटे खाने वाले चेन्स हैं वो आपके स्वास्थ्य का इतना ख्याल क्यों रखेंगे कि उस ऑयल को दोबारा ना ट्राई करें, वो तो लास्ट
1: यस
0: मिनट तक, जो लास्ट बूंद है वहां तक तो इस्तेमाल कर
1: और
0: लेंगे
1: वो जल जल के
0: और जल
1: खराब,
0: जल के बार बार करेगा,
1: बहुत खराब हो
0: इसका आपको
1: जाता
0: पता है। फिर वो मसाले कैसे हैं, अगर खड़े मसाले आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आजकल कितना आता है न्यूज़ में कि मसालों में क्या पोल्यूशन है
1: जी बिल्कुल
0: ना, तो अगर खड़े मसाले आप, तो जो मार्केट वाला है वो आपको कभी खड़े मसाले नहीं, उनको तो सस्ता बनाना है, जल्दी से काम करना है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: तीन कारण हमने बताए,
1: जी
0: हाइजीन, खड़े मसाले का पोल्यूटेड मसाले, और कुकिंग ऑयल हार्मफुल होना, इसलिए बाहर का खाना मत खाइए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने कुकिंग की बात की तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि
0: जरूर,
1: हम लोग जब घर पर कुछ बनाते हैं ऑयली, तो क्या हमें भी एक बार यूज़ किया हुए ऑयल को दोबारा यूज़ नहीं करना
0: जी
1: चाहिए?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी
0: इसमें रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट ने देखा गया है, अगर उसी ऑयल या घी को दोबारा गर्म करते हैं तो
1: हाँ
0: उसमें एक ट्रांस फैट बन जाता है जो कि हानिकारक होता
1: होता
0: है,
1: है
0: उससे हार्ट डिजीज अधिक होना और कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो
1: जी
0: एक बार ऑयल या घी को गर्म करके दोबारा नहीं करना चाहिए,
1: जी
0: और अच्छा ही घी इस्तेमाल करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, रजनी हमें उत्तम नगर दिल्ली से लिख रही हैं कि इनका सर्जिकल मेनोपोज हुआ है, तो क्या इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? इनकी एज है 52 ईयर्स, इनको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या ध्यान रखना है?
0: तो चूंकि दिल्ली में कैंसर की संभावना महिलाओं में थोड़ी ज़्यादा है, आम औसत अगर भारत की जनसंख्या से देखा जाए, तो इसलिए उनको प्रिकॉशन में पोल्यूशन से बचें, योगासन प्राणायाम करते रहें, 1 घंटे एक्सरसाइज जरूर करें, वज़न कंट्रोल रखें, ताज़े फल सब्जियां खाएं, लाल मांस और शुगर वाली जैसे कोक पेप्सी आदि जो अधिक चीनी वाला भोजन ना खाएं, और फ्राइड चीज़ें ना खाएं,
1: जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है
0: और
1: यहाँ,
0: सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करें
1: जरूर करते
0: और
1: रहें,
0: किसी डॉक्टर को दिखा लें
1: अगर
0: उनको
1: कोई
0: चेकअप।
1: भी छोटी सी भी प्रॉब्लम लगती है,
0: जी
1: कहीं भी गांठ
0: जी
1: गिलती लगती है, तो आप
0: 50 की हैं तो एक बार अगर मैमोग्राम करा लेंगे तो अच्छा रहेगा,
1: जी
0: उसमें छोटी गांठ पकड़ में आ
1: जी
0: जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर उपचार के बाद क्या महिलाएं कंसीव कर सकती हैं? अगर ब्रेस्ट कैंसर का उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, तो कंसीव करना कितना इजी है, या क्या आप कहेंगे इस पे?
0: जी, तो हम लोग जिस समय इलाज शुरू करते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि आपके बच्चे हैं कि नहीं, अगर नहीं हैं तो हम उनका ओवम यानी अंडा जो होता है
1: जी
0: तो उसको पहले प्रिजर्व करते हैं, और उसके पश्चात ही फिर उनका कीमोथेरेपी शुरू करते हैं। अगर उनकी शादी हो गई है तो हम ओवम और पति का स्पर्म लेके
1: जी
0: उसका जाइगोट बना सकते हैं, एम्ब्रियो बना सकते हैं, उसका टेस्ट ट्यूब बेबी बना के उसको भी फ्रीज कर सकते हैं,
1: जी
0: और जब उनकी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी पूरी हो गई उसके पश्चात उसमें इन विट्रो उनको IVF के द्वारा उनका प्रेगनेंसी दे सकते हैं। तो संभव है, लेकिन विशेष प्रिकॉशन लेना है, ओवम प्रिजर्वेशन कराना है या उनका जाइगोट प्रिजर्वेशन कराना
1: जी
0: है।
1: डॉक्टर साहब, क्या मेमोग्राफी जो है वो दर्दनाक होती है, और कीमोथेरेपी के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं?
0: जी, तो मैमोग्राफी में थोड़ा सा स्तन को जो महिला कर रही हैं रेडियोग्राफर
1: जी
0: वो थोड़ा प्रेस करती हैं ताकि अच्छी पिक्चर आ सके। तो अगर कोई घाव है, अगर बहुत तेज पीड़ा हो रही है इन्फेक्शन है इन्फ्लेमेशन के कारण, तो हम लोग अवॉइड करते हैं मैमोग्राफी, फिर में अल्ट्रासाउंड जरूर कर सकते हैं हम, और MRI स्कैन, ब्रेस्ट
1: जी
0: का MRI स्कैन, उसमें पीड़ा नहीं होती, वो दोनों कर सकते हैं।
1: जी और साथियों, अब एक सुन लेते हैं गीत, उसके बाद बातें जारी रहेंगी।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट जैसे खास विषय पर, जिस पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, अक्सर स्तन में दर्द और खिंचाव होने पर महिलाओं में एक डर बढ़ जाता है कि कहीं कैंसर तो नहीं, ये डर कितना सही है?
1: देखिए, 10 महिलाओं को अगर स्तन में दर्द है
0: जी,
1: तो वो 7 में बिनाइन होगा। उसको हार्मोन रिलेटेड पेन कहते हैं, मेस्टैल्जिया कहते हैं हम लोग। तो उनके चेकअप जरूर करते हैं हम लोग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के पश्चात उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और 40 के वर्ष के बाद की उनकी आयु है तो मैमोग्राम भी कराते हैं। और यदि परिवार में उनको माँ, नानी, मौसी, बड़ी बहन, बुआ, दादी आदि को अगर कैंसर हुआ है तो MRI स्कैन भी कराते हैं। इसके पश्चात अगर वो सब स्कैन नॉर्मल निकलते हैं और स्तन का परीक्षण जो हुआ, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वो भी नॉर्मल है, तो हम उनको आश्वस्त कर देते हैं, रीअश्योर करते हैं कि कोई खतरनाक बात नहीं है, लेकिन उनको चेकअप करते रहें। और अगर पीड़ा इतनी अधिक है कि वो उनकी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ हैं उनको बाधा पहुंचा रही हैं, अपने घर का घरेलू काम नहीं कर पा रही, स्कूल की टीचर हैं तो पढ़ा नहीं पा रही, ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं पा रही आदि आदि, टाइपिस्ट हैं तो टाइप नहीं कर पा रही, तो हम उनको कुछ दवाएं देते हैं जिससे कि उनकी पीड़ा कम हो जाए। इसके अतिरिक्त उनको हम कहते हैं कि टाइट स्पोर्ट्स ब्रा पहने
0: जी,
1: उससे 100 में 80 महिलाओं का स्तन का दर्द कम हो सकता है।
0: जी जी,
1: इतना लाभकारी है
0: जी।
1: और अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत रिच सोर्स है, 30 ग्राम यानी 2 बड़े चाय के चम्मच प्रतिदिन अगर लें फ्लैक्स सीड्स, तो उससे भी स्तन के दर्द का बहुत ज्यादा निवारण हो सकता है।
0: जी जी जी,
1: ये 2 साधारण से इलाज है, फ्लैक्स सीड्स खाना और टाइट स्पोर्ट्स ब्रा पहनना।
0: डॉक्टर साहब, आशा हमें लिख रही हैं कि इज मैमोग्राम सेफ फॉर द बॉडी, इज बॉडी एक्सपोज टू एनी रेडिएशन ड्यूरिंग मैमोग्राफी?
1: ये जो मैमोग्राम एक विशेष एक्सरे है, लेकिन जो करंट जनरेशन का मैमोग्राम डिजिटल मैमोग्राफी कहते हैं, उसमें बहुत ही सूक्ष्म रेडिएशन होता है, इतना सूक्ष्म कि उससे स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, मैमोग्राम करना आवश्यक ही है, नितांत आवश्यक है, मैंडेटरी है, तो हम पेट के ऊपर लेड शील्ड लगा के जैसे बेबी को, फीटस को प्रोटेक्ट करके भी कर सकते हैं, इतना सेफ है आजकल का डिजिटल मैमोग्राम।
0: जी डॉक्टर साहब, एक जो मैसेज है वो स्पेशली आपके लिए है, ये हमें डॉक्टर अनिल कालरा गुड़गांव से लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, साथ ही FM रेनबो और रेडियो डॉक्टर का भी ये धन्यवाद कर रहे हैं इस विषय को आज चूज करने के लिए, इसका चयन करने के लिए। और
1: डॉक्टर जी, आपको धन्यवाद।
0: जी जी डॉक्टर साहब, साक्षी हमें दिल्ली से लिख रही हैं कि क्या प्लास्टिक का यूज़ जैसे वाटर बॉटल और अदर प्लास्टिक, क्या बाहर का फूड जो आता है घर में उससे इस्तेमाल करने से क्या ब्रेस्ट कैंसर या किसी तरह का अन्य कैंसर हो सकता है, खतरा है क्या इसका?
1: जी, प्लास्टिक से आजकल बहुत रिसर्च हो रही है। प्लास्टिक के कण हमारे शरीर में चले जाते हैं पानी में या जो भोजन रखें, माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं।
0: हाँ।
1: और वो कैंसर भी कर सकते हैं, कई और बीमारियां भी करते हैं। दूसरा है, आपने बाहर का खाने का बताया, तो देखिए बाहर के खाने में 3 हानि है।
0: जी।
1: एक तो जिस व्यक्ति ने खाना बनाया, कुक, उसकी हाइजीन का आपको पता नहीं, अनलेस वो 5-स्टार होटल के कुक हों जो ग्लव्स पहन के मास्क लगा के बनाते हैं। तो साधारण जो फूड चेन्स हैं उनके कुक, आपको क्या पता कि वो पसीना पोंछ के अपनी रोटी बेल रहे हैं या नाक पोंछ के बना रहे हैं, आपको उनके हाइजीन का कोई ज्ञान नहीं। दूसरा, वो कुकिंग ऑयल कौन सा यूज कर रहे हैं,
0: जैसा आपने पहले,
1: जैसा स्वास्थ्यवर्धक कुकिंग ऑयल नहीं करा, दोबारा रीफ्राई तो नहीं करा, तो इसलिए

0: और बायोप्सी आजकल इतनी पतली नीडल से अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस भी ली जाती है
1: जी,
0: जिससे उससे हानि नहीं होती, उससे फैल नहीं सकता
1: जी।
0: तो बायोप्सी से
1: डरे नहीं,
0: अवश्य कराएं
1: कराएं जी। क्या डॉक्टर साहब, ये ब्रेस्ट कैंसर अनुवांशिक हो सकता है? कितना सतर्क रहने की जरूरत है?
0: 100 में करीब 5 से 10% महिलाओं में स्तन कैंसर माँ की या पिता की साइड से आ सकता है
1: जी।
0: और इसमें जीन्स होते हैं, ब्रैका जीन होता है, P53 जीन, कई होते P10, कुछ जीन्स होते हैं जो कि माता या पिता के साइड से ब्रेस्ट कैंसर के जीन आ सकते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी,
0: तो सभी महिलाओं को स्वस्थ अपने स्वास्थ्य के प्रति और विशेष रूप से स्तन के स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होना है और उनको स्वतः स्तन का परीक्षण अवश्य करना है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करें और इसकी विधि सीख लें। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए हम लोगों ने भारत की 12 भाषाओं में, 12 इंडियन लैंग्वेजेस में हमने ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की विधि वीडियो बनाई है जो यूट्यूब में उपलब्ध है। आप इसको देख के करीब
1: किस नाम से सर वो भी बता दें।
0: हाँ, लिखे हैं स्वतः स्तन का परीक्षण, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये टाइप करेंगे आप
1: जी, जी।
0: तो आपको ये विधि मिल जाएगी और वो जरूर करें। करीब 5 मिनट लगते हैं
1: जी,
0: अच्छी तरह से देखने की, महीने में एक बार करें, पीरियड समाप्त होने के 1 हफ्ते बाद
1: जी। जी जी डॉक्टर साहब, वक्त तो चला आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की और ले जाने का। हमें उम्मीद है कि सभी को ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से कैसे बचाव करना है इसकी जानकारी मिली होगी। हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जो है फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एम्स न्यू दिल्ली और विशेषकर ब्रेस्ट डिजीज के विशेषज्ञ और 6 साल तक ब्रेस्ट क्लिनिक में कार्यरत रहे डॉक्टर श्रीवास्तव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप यहाँ आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। और आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: धन्यवाद पूजा जी, नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

और लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू हुई। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

का उद्घाटन किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 71वें स्थापना दिवस पर कहा कि एम्स की विशेष जिम्मेदारी देश में स्वास्थ्य सेवाओं की अगली पीढ़ी को दिशा देने और अन्य चिकित्सा संस्थानों का मार्गदर्शन करने की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर आईबीएसए संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि अब हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं अल्फा जैन, और थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और वाकई जब आता है फ्राइडे तो हमें बहुत सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें सोचनी भी चाहिए, है ना। तो भाई बहुत सारी बातें हम आपके साथ तो भाई करेंगे ही करेंगे कि भाई जब फ्राइडे आता है यानी वीकेंड का स्टार्ट होता है तो ऐसी बहुत सारी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम कई बार सोच नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, सोचना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम सोचेंगे, विचार करेंगे कि आखिर हमारा जो वीकेंड है वो हम कैसे खास बना सकते हैं। तो ढेर सारी बातें हम आपके साथ तो दोस्तों करेंगे ही, लेकिन आपको मैं यहाँ बता दूं कि अभी हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी सुनेंगे और उस प्रोग्राम के बाद मैं लौटूंगी आपके पास और फिर हम बात करेंगे थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। तो बस फ्राइडे की ढेर सारी बातें यानी वीकेंड की बातें, आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि एक कार्यक्रम है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वही कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं। आज के दौर में कम उम्र के बच्चे में भी स्कूल, पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाता है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान न मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आपको बच्चे में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बता दें इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों कई हैं। एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल अडल्ट से जो मानसिक समस्याएं देखी जाती है वो बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है। बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने वाले कारक उनका परिवार, परिवार में माता पिता के आपसी संबंध, उनके दोस्तों द्वारा उन पर किसी बात के लिए नियमित रूप से प्रेशर डालना, पढ़ाई लिखाई में सफल होने का प्रेशर। कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक परेशान और अकेला महसूस करते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों से अलग महसूस करते हैं या महसूस करवाए जाते हैं। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे खुद को अलग अक्सर तब महसूस करते हैं जब वह समाज के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार खुद को नहीं पाते। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी, क्लास, जाति के आधार पर भेदभाव, परिवार में हिंसा, किसी बड़े का सपोर्ट न होना और हर वक्त बड़ों द्वारा प्रेशर थोपा जाना बड़े कारक साबित हुए हैं। वैसे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वो दुनिया में अभी तक जानी और समझी गई किसी भी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी बच्चों में गांव के बच्चों की तुलना में मानसिक रोगों की समस्या अधिक देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर यह मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक खाना या खाना बिल्कुल छोड़ देने की कंडीशन देखी जाती है। बहुत से बच्चों में युवावस्था से पहले यानी टीनेज से ही पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। उनका बहुत अधिक गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, खींच जाना, मारपीट आदि करना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही लक्षण कहे जाते हैं। ये बेहद कॉमन मानसिक समस्या है जहां कम उम्र से ही स्ट्रेस के चलते बच्चों का मूड और व्यवहार बदल जाता है। कभी वो बहुत उदास हो सकते हैं तो कभी वो बहुत हाइपर एक्साइटेड नजर आते हैं। डिप्रेशन, उदासी, नाराजगी और बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है जो बच्चों में बेहद आम तौर पर देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होती है, तो वही बहुत को तरह तरह के डर घेरने लगते हैं। टीनेज में अभी ये डर बहुत खुलकर सामने आया है, लेकिन पढ़ाई, करियर या किसी खास मामले में ये डर खुलकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है।
एडिक्शन या नशा भी एक मानसिक समस्या है, जिसके चलते एक बच्चा कम उम्र में ही शराब, सिगरेट या ड्रग का आदी हो जाता है। इस उम्र में उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और यही वजह है कि अल्कोहल और ड्रग उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। फ्रेंड्स, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, कहीं आपका बच्चा किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है। ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लक्षणों और हरकतों पर नजर रखें, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। ये लक्षण समझ में आने पर आप अपने बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, जहां टॉक थेरेपी या किसी अन्य प्रकार के मेंटल हेल्थ थेरेपी से बच्चों को अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं आपको अपने बच्चों के किन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं

0: तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए, जैसे बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना, भूख न लगना, हर वक्त निराश महसूस करना, एकाग्रता की कमी, दिल के भावना बढ़ने लगना, सुसाइडल महसूस करना, उदास, खाली या घबराहट महसूस करना। बचाव और इलाज यह है दोस्तों कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा है तो उसकी सही इलाज करवाई जाना बेहद जरूरी है। टीनेज वैसे ही अपने आप में एक बेहद मुश्किल दौर होता है, ऊपर से मानसिक समस्याएं इसे और भी चैलेंज बना सकती है। इसीलिए परिवार को अपने बच्चे के प्रति बहुत उदार होना चाहिए और उसे खूब प्यार देना चाहिए। जब बच्चा महसूस करता है कि परिवार से प्यार अपनापन मिल रहा है तो उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के प्रेशर के तले दबता जा रहा है और इसकी वजह से लगातार घबराहट, डर और निराशा महसूस कर रहा है तो उस पर बेवजह टॉप करने का दबाव न डालें। हर बच्चे की क्षमताओं और काबिलियत अलग अलग होती है। दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के झपेट में आए तो समस्या को समझकर उसकी मुश्किल आसान करने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार दें और उसे ये यकीन दिलाए कि वह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा। उस पर किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर न डाले, नियमित रूप से उसे बात करते रहे ताकि अगर उसके मन में कोई भी उलझन हो तो वो खुलकर आपको बता सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लम्हे विद चेतन। आज के लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक चेतन को इजाजत दीजिए, नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow।
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। और जैसे ही हम जानते हैं कि आज हम बात करेंगे थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार, यानी हफ्ते की भागदौड़ पर एक छोटा सा विराम कह सकते हैं। और हाँ, खुद से मिलने की बात कह सकते हैं, खुद के बारे में जानने का हमें मौका मिल सकता है। भाई वैसे तो देखा जाए तो आज की दुनिया में जहाँ सुबह आँख खुलते ही नोटिफिकेशन हमारा स्वागत करते हैं और दिन का एक बड़ा हिस्सा हम स्क्रीन के बीच गुजारते हैं, वहीं अगर हम बात करें अल्फा जैन की तो भाई ये एक ऐसी पीढ़ी है जिसने टेक्नोलॉजी को जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि जिंदगी के आसपास का पूरा माहौल ही बनते हुए देखा है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वीकेंड का मतलब सिर्फ देर तक सोना या फिर रील्स देखना, मोबाइल पर गेम खेलना, मोबाइल पर डिफरेंट तरह की रील्स या फिर यूट्यूब का इस्तेमाल करना, या फिर खुद को थोड़ा सा रीसेट करने का भी वक्त होता है। सोचने वाली बात है कि भाई जब शुक्रवार आता है तो आखिर हम अपने वीकेंड को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। यहाँ सोचने वाले बहुत सारे सवाल हैं, या फिर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भाई वीकेंड का स्टार्ट हो चुका है तो क्यों नहीं इस वीकेंड को हम कोई एक्सपेरिमेंट की तरह देखें, है ना, कोई तजुर्बा करें, कोई ऐसी बात जो अब तक हमने ना की हो उसे करने के बारे में सोचें। कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बस सवाल ये है कि आखिर हम कहाँ तक कैसे सोच पाते हैं। तो थोड़ी सी बातें मैंने कर ली हैं आपके साथ, थोड़ी सी और मैं आपको बताने जा रही हूँ। फिलहाल आप मेरे साथ रहिएगा और सुनते रहिएगा अल्फा जैन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

बेशक थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा सा है बाकी, यानी कि अगर हम इसको अपने जीवन में देखें तो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं हम सब के जीवन में जहां हमें प्रेम की ज़रूरत होती है, जहां हमें एक सोच की ज़रूरत होती है। पूरा हफ्ता हम काम करते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई अब छुट्टी वाला दिन है, अब हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें सबसे पहले अपने परिवार की बात करनी है, सबसे पहले अपने परिवार को देखना है, क्योंकि एक आदर्श और खुशहाल परिवार वही होता है जहाँ एक दूसरे के साथ प्यार से रहा जाए, एक दूसरे को सम्मान दिया जाए और एक दूसरे के लिए समय हो। और जानते हैं ये समय, ये वक्त कैसे मिलता है? जब हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं। जब हम सम्मान देंगे तभी तो एक दूसरे को हम वक्त दे पाएंगे। अगर सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर भला हम एक दूसरे के साथ बैठना भी गवारा नहीं कर पाएंगे। लिहाजा बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने परिवार के बारे में सोचें और अपने व्यवहार के बारे में सोचें कि हमारा व्यवहार कैसा है अपने परिवार के साथ, यानी हमारा बिहेवियर कैसा है। क्या मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेव रखता हूँ, या फिर मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका मेरे साथ कैसा व्यवहार है, कैसा उनकी जो एक मुझसे बात करने का जो अंदाज़ है वो कैसा है। यानी बात दोनों तरफ है, मैं यहाँ किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ एक दूसरे की सबकी बात कर रही हूँ, बच्चों की, पेरेंट्स की, पेरेंट्स के तहीं बच्चों की, और बच्चों के तहीं पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, इन सब की मैं बात कर रही हूँ। या फिर पेरेंट्स की एक दूसरे के लिए क्या जिम्मेदारी बन जाती है, या फिर जो भाई बहन हैं उनकी आपस में क्या जिम्मेदारी है। यानी कुल मिलाकर जो मुझे लगता है वो यही है कि अगर आपके पास एक भी छुट्टी है या कुछ घंटे आपके पास हैं फुर्सत के, तो भाई अपनी फैमिली को सम्मान दीजिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए और सम्मान के साथ। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है तो फिर जैसे कि मैंने कहा कि आप वक्त फिर दे नहीं पाएंगे और ना ही उनको आपकी ज़रूरत होगी, ना ही वो आपसे वक्त ले पाएंगे। लिहाजा हमें अपनी बोलचाल पर, अपने शब्दों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो हम सबको एक आदर्श परिवार की ओर मोड़ देती हैं। तो चलिए आप सोचिएगा इस बारे में और मुझे भी बताइएगा। फिलहाल ढेर सारी बातें और भी करनी है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए अल्फा जैन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

सुबह अल्फा जैन में हम आपके साथ बात कर रहे हैं। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और फ्राइडे वो भी इसलिए कि वीकेंड शुरू हो जाता है और हम बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे बिहेवियर की, तो भाई बच्चों का जो बिहेवियर है वो अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो बच्चों के साथ अच्छा होना चाहिए, और एक दूसरे के लिए सम्मान भी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आमतौर पर हम ऐसा देखते हैं कि कहा जाता है कि बच्चों को अच्छी आदतें, बड़ों का आदर करना और ईमानदारी सिखानी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ उनके जो एक मानसिक विकास है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों में ये सारी आदतें अपने पेरेंट्स को देखकर आ ही जाया करते हैं। ज़रूरत यहाँ इस बात की है कि पेरेंट्स आपस में किस तरह से बिहेव करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के लिए सम्मान पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, एक दूसरे से प्रेम की भाषा बोलते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, सॉफ्टली बात करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके बच्चों में भी वो सब चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी। क्योंकि कहते हैं कि अगर घर का जो माहौल है वो लड़ाई झगड़े का ना हो, प्यार भरा

माहौल हो ताकि बच्चे अपने आप ही मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस कर सकें, और जब घर का माहौल अच्छा होता है तो अपने आप ही उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो ही जाता है। तो यहाँ ज़रूरत हमें सोचने की है कि आखिर हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं।

0: और अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ दोस्तों इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आज के शाम 4:30 बजे आपके लिए दी ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की आपको हम दे सकते हैं वो एथलेटिक्स की दुनिया से, बिकॉज एथलेटिक्स के इवेंट्स शुरू हो गए हैं और उसके अंदर द बेस्ट न्यूज दैट हैज कम इन फॉर अस राइट नाउ इज दैट मनप्रीत कौर हैज गॉन ऑन टू विन ब्रॉन्ज इन एथलेटिक्स इन द शॉट पुट इवेंट in the women's shot put event। जी हाँ, she has won bronze for India with the best throw of 17.17। आपको बता दें कि मनप्रीत कौर का जो पहला अटेम्प्ट था वो 16.32 का था, सेकंड अटेम्प्ट 16.41, थर्ड अटेम्प्ट 16.80, चौथा अटेम्प्ट 17.17, पांचवा अटेम्प्ट 16.75 और छठा अटेम्प्ट था इनवैलिड। छठे अटेम्प्ट के बाद वो काफी निराश भी दिखी थी, बिकॉज उनको लगा था कि

0: शायद वो अपना छठा अटेम्प्ट सबसे बेहतर कर पाएंगी, लेकिन क्योंकि वो इनवैलिड हो गया तो शी हैड टू सफाइस विद 17.17 व्हिच थेरबाय हैज गिवन इंडिया इट्स ब्रॉन्ज मेडल एंड विद दिस द टोटल नंबर ऑफ मेडल टैली आल्सो ऑफ इंडिया हैज गॉन अप टू 21। चाइना ने लिया गोल्ड इसमें और सिल्वर दोनों ही। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर जो है वो 100 मीटर्स के सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं। गुरिंदर वीर सिंह ने 10.32 सेकंड्स का टाइमिंग क्लॉक किया और अनिमेश कुजूर ने 10.38 का टाइमिंग क्लॉक किया, और इसके बाद क्योंकि वो अब सेमीफाइनल की रेस से ही बाहर हो चुके हैं, निराशाजनक खबर, भारत का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होने वाला है शायद 100 मीटर्स के आगे इस रेस के अंदर अब फाइनल्स के अंदर।
1: जी बिल्कुल, अब बताना चाहूँगा बैडमिंटन की खबर है। हालांकि बैडमिंटन की अच्छी खबर है कि भारत के लिए, भारत के नज़रिए से देखा जाए तो बेहद खास खबर है। एशियन गेम्स के बैडमिंटन के महिला युगल में भारत के लिए जो टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 32 में भारतीय जोड़ी का सामना हांगकांग के त्यांग ह्यू यान और लुई लोक की जोड़ी से हुआ था। टीसा और गायत्री ने पहला गेम शानदार तरीके से 21-16 से अपने नाम किया। हालांकि दूसरे गेम में हांगकांग की जोड़ी ने जोरदार वापसी की और 21-16 से गेम जीतकर मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद निर्णायक तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन टीसा और गायत्री ने दबाव के बीच धैर्य बनाए रखा और तीसरा गेम भी 21-16 से जीत लिया। इस तरह भारतीय जोड़ी ने मुकाबला 2-1 से अपने नाम करते हुए अगले दौर में जगह पक्की कर ली है। अब राउंड ऑफ 16 में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद के सामने जापान की विश्व नंबर 3 जोड़ी युकी फुकुशिमा और माइसु मासुमो की जोड़ी होगी, यानी अगले दौर में भारतीय जोड़ी के सामने दुनिया की शीर्ष जोड़ियों में से शामिल एक मजबूत प्रतिद्वंदी मिलने वाली है।
0: होपफुली शायद उम्मीद करते हैं कि भारत का सफर यहाँ पे अच्छा बने। लेकिन वुमेन्स डबल्स के फर्स्ट राउंड मैच में सिमरन सिंघी और कवि प्रिया सेल्वम वर अप अगेंस्ट फेब्रियाना कुसुमा और मेलियासा पुष्पित तसारी ऑफ इंडोनेशिया, वेयर द इंडियन डुओ लॉस्ट 9-21, 5-21 टू इंडोनेशिया इन स्ट्रेट गेम्स, थेरबाय लूजिंग द मैच 2-0 टू इंडोनेशिया। तो मेरे पास तो बैडमिंटन की दुनिया से आपको कुछ अच्छी खबरें देने के लिए नहीं थी जैसे शाहिद ने दी, लेकिन आई एम श्योर शाहिद हैज मोर अपडेट्स टू शेयर विद ऑल आवर लिसनर्स।
1: जी बिल्कुल, तैराकी की बात कर लेते हैं। ऋषभ दास ने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। हालांकि राष्ट्रीय रिकॉर्ड कोई बहुत बड़ा काम नहीं आया उनको इस इवेंट में, एशियन गेम्स में, एशियाई खेलों में भारतीय तैराक जो ऋषभ दास हैं, उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए, हालांकि शानदार प्रदर्शन जरूर रहा लेकिन पदक जीतने से चूक गए और छठे स्थान पर है, लेकिन उन्होंने 1:58.77 का समय निकालकर अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जो उनका अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड था, उसे तोड़ दिया। 19 वर्षीय ऋषभ ने अपने पुराने रिकॉर्ड में 1 सेकंड से ज्यादा का सुधार किया। वहीं भारत के उत्कर्ष पाटिल 2:00.94 के समय के साथ 7वें स्थान पर रहे।
0: जी, और टेबल टेनिस की दुनिया से आपको बता दें कि मिक्स डबल्स के अंदर आज भारत ने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया। जी हाँ, मनु शाह और दिया चितले लॉस्ट 8-11, 5-11, 8-11, 2-11 टू चाइनाज वैंग चू क्वीन एंड सुन यिंगशा इन द मिक्स डबल्स सेमीफाइनल्स। क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला था, ये कह सकते हैं हाँ कि भारत ने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया, लेकिन चाइना के दोनों ही अपोनेंट्स भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से आज हावी हो गए थे। कंप्लीट डोमिनेशन उनका देखने को मिला भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर, प्रिटी मच गोइंग बाय द वे द चाइनीज फंक्शन एंड प्ले द गेम ऑफ टेबल टेनिस, एंड एज अ रिजल्ट द इंडियन डुओ लॉस्ट द इंटायर गेम in four entire match in four straight games, making the lead to be 4-0 and thereby settled in with the bronze medal. So congratulations to the Indian mixed doubles team who got us the bronze today in India.
1: जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह की शुरुआत हुई थी लगातार मेडल मिल रहे थे, शाम ढलते ढलते उस मेडल में एक और मेडल जुड़ गया है। उम्मीद करेंगे अभी जो समय और बचा वहां भी कुछ अच्छी खबर आए। फिलहाल एशियन गेम्स की इस घंटे की अपडेट में फिलहाल इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी ठीक 1 घंटे बाद। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरी साथी साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे, और आइए अब लौटते हैं आकाशवाणी के रेनबो चैनल के कार्यक्रम अल्फा जैन पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: बिल्कुल, जिंदगी मिलके ही गुजारनी है और एक घर में जितने भी रंग हो उन रंगों के साथ जिंदगी को रंगीन बनाना हम सबका फर्ज बन जाता है। तो चलिए और कुछ बातें हैं आपके साथ, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, जल्द हाजिर होती हूँ, कहीं जाइएगा नहीं।
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुँच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल है ये और आप सुन रहे हैं अल्फा जैन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। तो ढेर सारी बातें कर ली भाई हमने कि परिवार में क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब वीकेंड का स्टार्ट हो जाता है तो भाई मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने प्रोग्राम की शुरुआत में बात की थी कि या तो हम स्क्रीन पर अपना बहुत सारा टाइम लगा देते हैं या फिर रील्स देखते रहते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के काम करते रहते हैं और कुछ नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ सोते हैं। सोना अच्छी बात है लेकिन हम तो यहाँ कहेंगे कि जितना सोना ज़रूरी है सेहत के लिए उतना तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे आम तौर पर सिर्फ और सिर्फ सोते ही रहते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी छुट्टी होती है। तो थोड़ा सा इस बारे में भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो इस वक्त मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि अगर आपकी छुट्टी है, अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी ही करें, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं घूमने ही जाएं, और ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप ढेर सारा काम उस दिन अपने लिए इकट्ठा कर लें, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता इतना हो सकता है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर करें जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। भाई मैं तो देखिए ऐसा ही करती हूँ, कुछ नहीं तो कोई नई डिश ही बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि अगर हम कुछ नई डिश बनाते हैं तो ना सिर्फ हमें अच्छा लगता है बल्कि जो हमारा परिवार है उसको भी ये बात बेहद पसंद आती है, और तो और परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी किचन में आ जाते हैं। अगर आपकी अगर आप इंटरेस्टेड हों, अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं यहाँ आप पर बात अपनी ला दूंगी नहीं, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरी छुट्टी है और अगर मैं चाहती हूँ कि उसमें कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाएं तो भाई मैं तो ऐसा ही करती हूँ। अब आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, ये तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो आप घूमने जा सकते हैं, या फिर आप ये भी तो कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन शॉपिंग में न सिर्फ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए एक छोटी सी बात जो मुझे लगती है कि जो हमारे घर में मेड आती है या फिर जो हमारी कॉलोनी में एक कहना चाहिए पहरेदार हुआ करता है, है ना, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर कोई छोटी सी चीज़ किसी के बच्चे के लिए ले ली जाए, उसे दे दिया जाए, तो आप सोचिए कि उनको कितना अच्छा लगता होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है, एज यू विश। मैं यहाँ फिर कहती हूँ आपसे कि मैं आप को बिल्कुल प्रेशराइज इसके लिए नहीं करूंगी, लेकिन एक छोटी सी बात है जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ या अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ कि अगर हम इस तरह जो गार्डनर है उसको हम कुछ दे सकते हैं, उसका कोई छोटा सा बच्चा है उसको दे सकते हैं, आपके घर में मेड आती है उसके बच्चे के लिए हम कुछ कर सकते हैं, यानी एक छोटी छोटी चीज़ें हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कम अज़ कम एक छोटी सी चॉकलेट किसी बच्चे को देखिए देखिए जिसे आप नहीं जानते हो उसको, या फिर आपकी गली में वो हो, है ना। इस तरह से अगर आप करते हैं, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं, तो ना सिर्फ आपको सुकून मिलेगा बल्कि यकीन मानिए उस बच्चे की मुस्कुराहट देखकर जो आपके दिल को मुस्कुराहना सिखा जाता है वो बच्चा, वो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल मेरे साथ ही आपको रहना है, कहीं जाना नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो वीकेंड पे हमें करनी चाहिए, सोचना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि अच्छी ज़िंदगी गुजारें। कोशिश करें कि आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो हमारी गली का हो, चाहे वो हमारी कॉलोनी का हो, हम उसे बेहतर बनाने में अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, यहाँ ये सोचने की ज़रूरत है फिलहाल। और हाँ, जिस तरह से कहते हैं कि एक खूबसूरत दस्तखान होना चाहिए, एक दूसरे से मिलिए, अपने अपने घर से कोई चीज़ बना के ले जाइए, एक साथ बैठ के खा लीजिए, या तो अपने घर में या किसी और के घर में, और कुछ नहीं तो किसी कॉरिडोर में, किसी गार्डन में, कहीं भी आप बैठ सकते हैं जहाँ बैठना अलाउ हो। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्यार का दस्तखान है, मोहब्बत का दस्तखान है, बुला लीजिए किसी अपने को, फिर देखिए कितना मज़ा आता है ज़िंदगी का।

यहाँ एक बात और जोड़ती चलती हूँ, अगर खाना ना सही तो कम अज कम एक कप चाय तो पी जा सकती है ना।

बिल्कुल, इश्क को तो भाई हमेशा हमें सलाम करना ही करना है, क्योंकि जहाँ प्यार होगा, जहाँ प्रेम होगा, जहाँ इश्क होगा, वहीं एक अच्छा और एक बहुत ही प्यारा सा परिवार हमें देखने को मिल जाता है। एक अच्छा परिवार हर तरह के हालात में एक दूसरे का साथ देता है और जीवन के हर कदम पर सही मार्गदर्शन करता है, और सही मायनों में देखा जाए तो पॉजिटिव सोच के साथ एक दिशा देता है, एक राह देता है। परिवार ही हमारे भीतर अच्छे संस्कार देता है और साथ ही जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनके बारे में हमें बताता है। और ये सब चीज़ें आप जानते हैं, ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब हमारी फैमिली की जो बुनियाद है वो सम्मान पर हो, यानी जो नींव है हमारे परिवार की वो सम्मान पर हो। एक दूसरे के लिए सम्मान होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। मैं ये सब आज इसलिए दोस्तों हम बात करना चाहते हैं क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं, सोचते भी हैं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ही एडवाइस किया जाता है, लेकिन क्यों नहीं हम आपस में जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे घर के बड़े हैं, वो क्यों नहीं सोचते इस बारे में कि हम कैसे बेहतर बने, जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो और ज़्यादा अच्छी बन जाएगी तब जब हम खुद बेहतर होंगे। और आपसी सहयोग और समझ से घर का जो माहौल है वो हमेशा पीसफुल रहता है, खुशहाल रहता है। और जो मुझे लगता है कि एक आदर्श या फिर कहना चाहिए एक अच्छा परिवार जो है उसमें हर इंसान को मानसिक शांति यानी जहनी सुकून भी ज़रूर मिले, और ये मानसिक शांति तभी मिलती है जब आप संतुष्ट होते हैं अपने परिवार से। और संतुष्टि कब मिलती है? जब आपको अपने परिवार से सम्मान मिलता है, अपने परिवार से आपको समझा जाता है, आपको एक तरह से आपकी हर बात को सुना जाता है, जिसके लिए हमें हमेशा वैसे अपने परिवार का आभारी रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार ही हमें ये बताता है कि जीवन में हमें किस तरह से रहना है और किस तरह से हमें एक दूसरे से प्यार के साथ रहना है। देखिए जनाब, आपसे ढेर सारी बातें करते करते एक खांसी का धसकस आ गया, लेकिन उम्मीद है कि आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। ढेर सारी बातें और भी करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों वक्त का इशारा है कि मैं आपसे यहीं और यहीं इजाज़त ले लूँ। वादा करूँ आपसे एक और मुलाकात का, मिलने आऊँगी आपसे ज़रूर, लेकिन आपको भी रखना है अपना पूरा ख्याल दोस्तों, क्योंकि जब आप रखते हैं अपना ख्याल तो यकीन मानिए हमें भी ऐसा ही लगता है कि आप हमारा ख्याल रख रहे हैं। तो बस चलते हैं, एक दूसरे के लिए प्यार के साथ ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बेहद खूबसूरत है, इसका ख्याल रखिए। और साथ ही साथ दोस्तों अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, एक खूबसूरत मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब

AIRFM रेनबो पर पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त तरक्की हुई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू हुई। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज न्यूयॉर्क में जमैका, घाना और सूरीनाम के विदेश मंत्री तथा ईस्ट वेस्ट सेंटर के अध्यक्ष सेलेस्टे कॉनर्स के साथ वार्ता की। श्री जयशंकर ने कहा कि बैठक विकासशील देशों की आकांक्षाओं और वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए

संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर आईबीएसए संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और राजधानी को अधिक हरा भरा, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में मिशन ग्रीन दिल्ली के अंतर्गत 70 लाख पौधारोपण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और अंत में जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार एफएम रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और ये है सुषमा की वाणी जो लेकर आ गई है सिटी लाइट्स। एक बार फिर इतनी जल्दी, आपने सोचा भी नहीं होगा, अभी कल ही तो मिली थी मैं आपसे। ओहो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई एंकर या कोई भी प्रेजेंटर या कोई भी आरजे इतनी जल्दी आपसे मुलाकात कर सकता है प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। तो भाई मैं मुलाकात करने आ गई हूँ तो क्या करूँ, देखा जब कल मैंने तो सोचा कि आज फिर से चली जाती हूँ आप ही के पास और सिटी लाइट्स से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें बता देती हूँ आपके लिए। अब दीवानी तो मैं हूं, मुझे पता है आप लोग भी हैं। दीवानी इसलिए क्योंकि कुछ गाने मैं अपनी पसंद से भी लेकर आ जाती हूँ जो मुझे लगता है कि आहा हा याद कर लिया जाए उन दिनों को जब कुछ फिल्में रिलीज हुई थी और वो गाने हमारे दिलों में छा गए थे।

अब देखिए, कल मैंने बोला था हो सकता है कि बारिश अब बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि जो मानसून है वो विदा ले चुका है, लेकिन जो वेस्ट बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है डीप डिप्रेशन बन रहा है और वहाँ तो काफ़ी बारिश हो रही है। लेकिन दिल्ली में अगर हम बारिश के मौसम की बात करें तो शुक्रवार यानी आज के दिन ऐसा कहा जा रहा था कि हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, आसार हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि प्रिडिक्शन होती है कई बार। और शुक्रवार को यानी आज के दिन जो है मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव लग रहा था कि हो सकता है, लेकिन गर्मी तो है, हमें लगा कि अब गर्मी जो है वो चली गई है, अब हल्की हल्की मीठी मीठी सर्दियों के आने के आगाज हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मौसम लेकिन फिर भी अच्छा होने ही वाला है क्योंकि आपको पता है ना, जब रामलीलाओं की तैयारियां जब शुरू हो जाती है ना तो मस्तानी मौसम की बात हो ही जाती है।

बिल्कुल, मौसम तो मस्ताना हो ही जाता है जब छुट्टी हो जाती है आपकी ऑफिस से, लेकिन तब प्रॉब्लम आती है जब सड़कों पर आपको लंबे लंबे ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है। अब देखिए ना, दिल्ली में कहां कहां ट्रैफिक हो सकता है ये मैं आपको बता देती हूं अपने गूगल मैप के जरिए, लेकिन आपको भी थोड़ा सा अपने गूगल मैप को खोल के ओपन रखना ही पड़ेगा ताकि आपको भी पता रहे कि जाम कहाँ कहाँ पर है। अब दिल्ली की जहाँ तक बात है तो देखिए, ये जो है ना सरोजनी नगर की तरफ बहुत अक्सर जाम मिल सकता है आपको, और हयात जो रेजेंसी है हमारा जो होटल है वहाँ पर, उसके वाला जो रोड है सामने जो जा रहा है वहाँ बहुत तगड़ा वाला रेड रेड रेड पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ भी जाम देखा जा सकता है। और आईआईटी दिल्ली है हौस खास वाला जो चौक है यहाँ पर भी अक्सर ये तगड़ा वाला जाम देख सकते हैं आप। और कहाँ पर हो सकता है ये है किशनगढ़ विलेज की तरफ भी थोड़ा सा जाम दिखा रहा है, और कहाँ ओखला फेज़ 1, ओहो हो काफ़ी दूर है और वहाँ भी जाम

0: आ रहा है। और ये कहाँ पर है? कालिंदी कुंज। कालिंदी कुंज की तरफ से ये जो पूरा रोड जा रहा है, कालिंदी कुंज वाला ब्रिज जो है ऊपर, उस तरफ भी काफी तगड़ा जाम दिखा रहे हैं। अब क्या होगा? तैमूर नगर, यहाँ पर भी जाम है। देखिए मैं पूरा मैप घुमा रही हूँ इधर उधर ताकि मुझे पता चले। जंगपुरा की तरफ भी जाम है, मतलब पूरा धीरे स्लो है। जाम का मतलब थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि यहाँ मैप में पूरा रेड रेड दिखाते हैं, तो ट्रैफिक है लेकिन हैवी ट्रैफिक है। जाम तो नहीं बोल सकती लेकिन हाँ हैवी ट्रैफिक है और स्लो चल रहा है। तो बस गाते गुनगुनाते आप चलिए और अच्छे अच्छे गाने में लेकर आ रही हूँ आपके लिए। और एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, उसमें जो लिफ्ट में जब फंस जाते हैं तब जो एक गाना आता है ना, उस गाने में जो फिल्मों के नाम लिए जाते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अब ये गाना मैंने खोज लिया आपके लिए भी क्योंकि आप भी उस गाने को सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। पसंद करेंगे? चलिए, ये जो डायलॉग बाजी हो रही है ना, इसे मैं चाहती हूँ कि आप तक ना पहुँचे, सीधा गाना आपकी तरफ पहुँच जाए। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स अपनी दोस्त सुषमा के साथ, ओनली ऑन FM 102.6।
1: मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

0: चोर
1: भूल गए
2: जाने मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

0: बिल्कुल सत्यम शिवम सुंदरम, और सुंदरम होता है खूबसूरत भी सुंदरम होता है अगर साफ सफाई हो हमारे आसपास। आप जानते हैं मेरा इशारा इसलिए है क्योंकि स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा अभियान वर्ष 2026 में 17 सितंबर से शुरू हो चुका है और 2 अक्टूबर 2026 तक देश भर में बहुत ही खूबसूरती से मनाया जा रहा है, बहुत ही साफ सफाई के साथ मनाया जा रहा है। और ये पखवाड़ा 17 सितंबर इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पर ये स्वच्छता दिवस चल रहा है। और इसका उद्देश्य है कि हम सभी सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई रखें, श्रमदान करें, खुद भी काम करें, कचरा प्रबंधन का काम आप कर सकते हैं। आम तौर पर जनता से ये एक उद्देश्य होता है कि वो उनसे एक रिक्वेस्ट भी होती है कि वो पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें। अपने घर की सफाई ही काम केवल नहीं होती है, हमारे आसपास अगर आप साफ सफाई रखें अपने घर के आसपास, अपने देश की स्वच्छता की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा देश की कामयाबी में आपका एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, आती हूँ।
1: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।

0: बिल्कुल, हीर तो आसमानी हो सकती है और जमी वालों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि जब बारिश हो जाती है और कूड़ा कचरा जब पड़ा होता है तो सोचे उस बारिश के पानी को मतलब कहीं से फ्लो नहीं मिलता कि वो कहीं चला जाए, क्योंकि कूड़ा कचरा इतना फंस जाता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो जनता है, हमारे जो देशवासी हैं, वो सफाई को लेकर बहुत जागरूक रहेंगे और अपने आसपास जो माहौल है वो हमेशा स्वच्छ बना के रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
0: और अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
3: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
4: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी। हम लेकर आ गए हैं शाम के 5:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले खुशखबरी आपको बता देते हैं एथलेटिक्स की दुनिया से, जहाँ वुमेन्स शॉटपुट में मनप्रीत कौर हैज बॉट द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया। जी हाँ, विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 17.17 मीटर्स मनप्रीत कौर ने भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया। इसके साथ ही भारत अब मेडल टेबल में कुल मिलाकर 21 मेडल्स कमा चुका है। चाइना ने दोनों ही गोल्ड और सिल्वर अपने नाम कमा लिए इन द वुमेन्स शॉट पुट। आगे बढ़ेंगे मेंस 100 मीटर सेमीफाइनल पे। गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही 100 मीटर सेमीफाइनल से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, दे विल नो मोर बी टेकिंग पार्ट इन द फाइनल्स टुडे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे कुडंट इवन क्वालिफाई और फिनिश ऑफ इन अ नाइस मैनर फ्रॉम द सेमीफाइनल। आपको एक और मेडल अलर्ट यहाँ पर दे देते हैं। गुलवीर सिंह ने सिल्वर बैक कर लिया एथलेटिक्स के मेन 10,000 मीटर के अंदर। अनदर medal coming for India, and this time it is the silver medal that Gulveer Singh has bought for the Indians. And 800 meter finals in heptathlon, mein aapko bata de, Pooja finished in the event in women's heptathlon with a timing of 2 minutes 16.43 seconds, while compatriot Anamika clocked in 2 minutes 18.06 seconds to finish third in the events. Lekin unki efforts kafi nahi the, Pooja isi wajah se 6th spot par finish kiya unhone heptathlon.

0: के अंदर, वहीं अनामिका ने 8वें स्थान पर खत्म किया। और लास्ट में चलते चलते एथलेटिक्स के अंदर आपको बता देते हैं कि भारत की सिंधु श्री गणेशा इज आउट ऑफ द वुमेन्स पोल वर्ल्ड फाइनल विदाउट अ वैलिड मार्क। शी फेल्ड टू क्लियर 3.85 मीटर्स इन टू अटेम्प्ट्स बिफोर आल्सो मिसिंग आउट एट 4 मीटर्स। शाहिद
1: जी बिल्कुल, अभी आपने गुरवीर सिंह का जिस तरह जिक्र किया, उम्मीद थी कि वो पोडियम फिनिश करेंगे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 10,000 मीटर की जो दौड़ थी उसमें उन्होंने एक रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीत लिया है। मेडल की बात चल रही तो आज जो जिस तरह से दिन की शुरुआत हुई थी, भारत ने गोल्ड जीता था, उसके बारे में अपने श्रोताओं को बता दूं जो बाद में हमारे साथ जुड़े हैं एशियन गेम्स में। भारत के लिए कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था। जी हाँ, एशियन गेम 2026 में भारत का ये दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले क्रिकेट में महिलाओं ने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। अगर आज के शूटिंग के मुकाबले की बात करें तो अंतिम स्कोर जो रहा था 484.6 रहा था, जो दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया से 6.6 अंक अधिक था। इससे अंदाजा लग सकता कितना बेहतरीन भारत ने प्रदर्शन किया था। वहीं एक और खबर दे दे बॉक्सिंग के रिंग से, जहां सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही सचिन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनके सामने जापान के शुनसुके किटामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। लेकिन प्रीति पवार से उम्मीद थी वो भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन 54 किलोग्राम भार वर्ग में वो राउंड ऑफ 16 में ही उनका सफर खत्म हो गया। 0-5 से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा।
0: जी, और हॉकी की अगर बात करें तो खुशखबरी है, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज जापान को 3-1 से हरा दिया। लाल रेम सियामी ओपन द स्कोरिंग बिफोर इशिका डबल्ड इंडियाज लीड विद नवनीत कौर एडिंग टू द थर्ड गोल। और इसके साथ ही अब आपको ये बता दें कि भारत सेमी फाइनल्स में तो प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी उनका आखिरी मैच पूल मैच बचा हुआ है सिंगापुर के साथ, एंड उसके बाद भारत का सामना या भारतीय महिलाओं को दोस्तों हम देख सकेंगे सेमीफाइनल हॉकी मैच के अंदर।
1: जी बिल्कुल देख सकेंगे। और जिस तरह से आज का दिन रहा, कई भारत के मेडल्स आए हैं, लेकिन खास तौर से अगर देखा जाए तो अभी भी जो मेडल आया है गुलवीर सिंह का, उसने शाम को सुहानी बना दिया है।
0: ऑफ कोर्स शाम को तो सुहानी बना ही दिया है, क्योंकि हम मेडल्स की आज बात ही कर रहे थे। तो आपको ये भी बता दें कि स्क्वॉश की दुनिया से भी आज हमें काफी सारी खुशखबरी मिली थी, बिकॉज जोशना चिनप्पा ने तो हमें एक मेडल का एक तरीके से कहते हैं ना भारत को आश्वासन या रिश्योरेंस दे दिया है, क्योंकि अब जोशना चिनप्पा और उनके साथ साथ जो उनके पार्टनर वहां पर होंगे इस गेम में, विच इज वी सेंथिल कुमार, वो आज हमने देखा कि कैसे मिक्स डबल स्क्वॉश सेमीफाइनल्स में स्ट्रेट गेम विन करके 11-3, 11-5 से अपने फिलिपिनो ओपोनेंट्स के अगेंस्ट आगे बढ़ गए। और अब यहां से भारत को कम से कम एक ब्रॉन्ज तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही यहां पर हम अगर आपको बताएं शाहिद, एक बहुत जरूरी चीज जो थी वो यही थी कि हम देखने वाले हैं यहां पर वीर चौटरानी, जो कि हार गए थे आज मोहम्मद इरफान से पाकिस्तान के इन द मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स 1-3। अब मोहम्मद इरफान का सामना होगा अभय सिंह से इन द सेमीफाइनल ऑफ मेंस सिंगल्स। यस, क्योंकि अभय सिंह ने आज जापान के सुकुई को 3-0 से हरा कर सेमीफाइनल में मेंस सिंगल्स के प्रवेश किया, और उनका सामना अब होगा मोहम्मद इरफान से।
1: जी बिल्कुल, और क्या घटित होता अगले एक घंटे में हम इसकी जानकारी ठीक 6:30 पर देंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी साक्षी मांडवाल को इस घंटे के अपडेट के साथ इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

सिटी लाइट्स प्रोग्राम में आप हैं सुषमा के साथ और एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैं आपके लिए लेकर आई हूं, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है बैंकों से जुड़ी हुई। आपको पता है ना, संडे को बैंक्स ओपन रहेंगे, खासतौर पर सरकारी और ग्रामीण क्षेत्रीय जो बैंक है वो भी, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं 3 दिन की हड़ताल पर 28 से 30 सितंबर तक।

बहुत ही प्यारा गीत, इतना खूबसूरत गीत। कभी कभी इस तरह के गीत जब हम लोग सुनते हैं तो बस ऐसा नॉस्टैल्जिया होता है कि बस कहीं ना कहीं हम खोते चले जाते हैं पुराने गीतों में। अब खोने की बात जब आती है तो लगता है कि बचपन भी हमें बहुत याद आ जाता है। हमारा बचपन कितना खूबसूरत था, धीरे धीरे समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और आप अगर बचपन को याद करना चाहते हैं, अपने बच्चों के बचपन को देखना चाहते हैं, उनकी कलाओं को देखना चाहते हैं, उनके रंगों को, उनके उकरे हुए जो उकेरते हैं, वो कलरफुल अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं, उसे भी आप निहार सकते हैं। तो एक इवेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो बचपन के नाम से, जो कि बच्चों के लिए एक आर्ट फेस्टिवल है। और ये कोलैबोरेशन है किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट, और ये शेड्यूल किया गया है 9 से 11 एक वर्कशॉप के तौर पर। तो ज़रूर बच्चों को शामिल करें और देखें कि उनके अंदर कितना कुछ भरा हुआ है, उनकी उनकी जो सोच है, उनकी इमेजिनेशन है, वो कितनी खूबसूरत है ना। तो उनके रंगों में डूब जाइए, ज़रूर शामिल करिए अपने बच्चों को।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर आती हूँ आप ही के पास।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं सुषमा के साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं सिटी लाइट्स। और सिटी की जब बात करें तो लाइट्स वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और आपको पता है कि 1 लाख, अब ऐसा एक नया आंकड़ा आया है कि 1 लाख से ज्यादा स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल की जाएंगी दिल्ली की सड़कों पर, खासतौर पर जो जहां पर LED या HPSV लगी हुई हैं। और ये जो पूरा प्लान है इसको मंजूरी मिल चुकी है और जनवरी एंड यानी 2027 जब जनवरी लगेगी तो उसके अंत तक हमारी जो दिल्ली की सड़कें हैं जहां पर अंधेरा है या लाइट्स काम नहीं कर रही वो कहीं ना कहीं आपको चमचमाती हुई नजर आ सकती हैं।

बिल्कुल दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, और यही कह के मैं जा रही हूँ कि प्यार करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे थे कि लोग जब सड़क पार करते हैं तो ध्यान रखें, और इसीलिए आपकी सुविधा के लिए आपको पता है ना कि 2 फुटओवर ब्रिज बनाने की तैयारी चल रही है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर, वो इसलिए ताकि आप उसका इस्तेमाल करें और फिर आप सड़क की दूसरी तरफ जाएं। और ये बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव्स होते हैं हम सबके हेल्थ के लिए, हम सबकी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेफ्टी मेजर्स को हमेशा फॉलो करते रहें। उठा के चले, जल्दी ही मिल जाऊंगी आपसे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 50वें स्थापना दिवस समारोह में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त तरक्की हुई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू हुई। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र से अलग आर्मेनिया, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों के साथ वार्ता की। डॉ. जयशंकर ने पनामा के राष्ट्रपति जोसे राउल मुलिनो से भी मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग IBASA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने नई दिल्ली में फ्रांस के ईडीएफ समूह के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बर्नार्ड फोंटाना से मुलाकात की। इस बैठक में भारत में प्रस्तावित ईपीआर रिएक्टरों की स्थापना को लेकर समीक्षा की गई। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्यिक विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, 6:03 और 36 सेकंड हुए हैं। मैं हूं आपके साथ सुनीता शाहवादी और ये है प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूं आपके साथ 7 बजे तक ऑफ कोर्स, एंड ये है स्टेशन ऑफ द नेशन दिल से दिल तक 102.6 FM। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में और मेरा प्रश्न तो बनता ही है ऑफ कोर्स, कुछ ना कुछ बात करने के लिए मुद्दा तो होना चाहिए ना। हमारे पास मुद्दा है, टॉपिक है जो हम आपसे पूछेंगे। भाई मौसम बदल तो रहा था, कुछ दिन पहले थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आने लगी थी, फिर से गर्मी आज शुरू हो गई। आपको नहीं लगा बहुत गर्मी थी? सो इसलिए अभी अपना ध्यान रखिए, और ऐसा एकदम से सर्दी आ जाएगी इतना भी नहीं है, पर हाँ मौसम में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा है। आज थोड़ा गर्मी थी लेकिन फिर भी सुबह शाम थोड़ा दिखने को ऐसा फील होता है जब आप बाहर जाते हैं वॉक पे या कहीं भी जाते हैं। चलिए तो मेरा क्वेश्चन आपसे अभी पूछती हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत ही क्यूट सा है और फनी सा है कि किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आपने अब तक का क्या फनी बेवकूफ़ी आपने की है? किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अब तक की आपकी फ़नी बेवकूफ़ी क्या है? बहुत लोगों को आपने इम्प्रेस करने की कोशिश की होगी, कुछ तो हुए होंगे कुछ नहीं हुए होंगे। अब जो हुए हैं उनके लिए, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ उल्टी हरकत की, आपने कुछ अजीब सी फ़नी बेवकूफ़ी की, आप उसके बाद एम्बेरस भी हुए। तो बताइए हमें 9868107070 पर। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी। जल्दी से भेजिए ढेर सारे मैसेजेस, ये है मैसेज मसाला मिक्स।

मैसेजेस मंगवा रही हूँ आपसे, और आप जल्दी से भेजें ताकि किसी को फिर बाद में शिकायत ना रहे। आप जितना समय मेरे पास है ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस एयर करने की कोशिश करूँगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से कहते हैं, गुड इवनिंग जी आरजी, वेलकम, आप कैसे हैं? गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय मेडल विनर्स सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और दीनदयाल उपाध्याय जयंती शत शत नमन, और बहुत अच्छे कार्यक्रम है। आपसे मैंने एक प्रश्न भी पूछा था, ये क्यों आपने छोड़ दिया, उसका जवाब भी मुझे चाहिए और बहुत ज़रूरी चाहिए। यही तो हमारा आज का टॉपिक है और हमें चाहिए, भाई जवाब दीजिए। मोहल्ला हलवाइया शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी कहते हैं कि हर किसी से हो जाए इश्क मजबूरी थोड़ी है, जिसे हम चाहे वो भी हमें चाहे ज़रूरी थोड़ी है। हाँ, लेकिन अब जिसको आपने चाहा उसको इम्प्रेस करने की कभी कोशिश की तो बताइए। नमस्कार, शुभ संध्या, अश्वत आठमुड़े धाराशिव महाराष्ट्र से, ओके, एंड अनमोल राय छापरा विहार से, गुड मॉर्निंग, ओके, गुड मॉर्निंग, हेलो, ओके। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से कहते हैं, गुड इवनिंग, शुभ संध्या सुनीता जी, मैं अपने दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड में बनियान पहनकर पार्क चला गया था। फिर तो उसके बाद बहुत तबीयत ख़राब हो गई। आपने अपने दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए, ओ गॉड, ओके। अमरावती महाराष्ट्र से पंकज कहते, गुड इवनिंग सुनीता मैम, कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स हम सुन रहे हैं, एंड इम्प्रेस करने की कोशिश मैंने नहीं की है किसी को भी, मुझे किसी को इम्प्रेस करना आता नहीं। ओ दैट्स सो स्वीट। मैसेज मसाला मिक्स में आपको प्यार भरा नमस्कार। और आदिल कमर गुन्नौर कहते हैं, आदाब जी, थैंक यू सो मच, मैंने प्रश्न भी पूछा था उसका जवाब नहीं दिया आपने। शुभ संध्या प्रिय आरजी जी, अभी तक मेरे साथ ऐसा वाकया नहीं हुआ है किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, खुद के साथ कोई फ़नी वाकया हुआ हो। हमारी तरफ छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। हीरामणि वर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से, ओके, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो किसी को भी इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओके। आदाब, हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा, ओके। सवाल का जवाब किधर है जी? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? किशन मंजानी, नीलम, स्वाति और किशोर, रेलवे कॉलोनी, आनंद विहार से। किसी को मेरा प्रश्न क्या मुश्किल लगा आपको? मैंने बस ये पूछा कि किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में कहीं आपने कोई फ़नी सी बेवकूफ़ी की हो तो हमें बताइए। कभी आपने ऐसा किया हो कि किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत ही फ़नी सी क्यूट सी बेवकूफ़ी की हो तो बताइए हमें। नमस्ते, शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका, काफ़ी दिनों के बाद आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेमचंद प्रेमी जी, धन्यवाद। एंड माय नेम इज़ मेघना सिंह, आई एम फ्रॉम बिहार। मैं आज तक इसीलिए किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया क्योंकि मैं जो सोचती हूँ उसके नेगेटिव पॉइंट भी जस्ट इमेजिन कर लेती हूँ। सोचने के लोग दिखावा कह सकते हैं, ओके, सोच समझ के चलने वाली। कभी ज़रूरी नहीं कि आप एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को ही इम्प्रेस करें या हस्बैंड या वाइफ को ही, हो सकता है आप अपने दोस्त को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने सिस्टर्स को, अपने ब्रदर को या अपने टीचर को, किसी को भी इम्प्रेस करने के चक्कर में आपने कोई फ़नी सी बेवकूफ़ी की हो तो बताइए हमें कैसे किया। आपका नंबर है 9868107070 और मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी।

0: केले का छिलका सड़क पे ना भाई ना, चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
5: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
4: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
5: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: और आज जी टाइम हुआ है 6:21 और 51 सेकंड और हमारे पास मैसेजेस आ रही है। 25 साल पहले एक लड़की को इम्प्रेस करते करते उससे शादी कर बैठा, बबलू कश्यप ने कहा है मंगोलपुरी से। पर ये आपकी बेवकूफ़ी तो नहीं हुई ना? आपने उसको इम्प्रेस करने के लिए करते करते उससे शादी कर दी, तो आप कहना चाहते हैं कि आपकी बेवकूफ़ी थी स्वीट सी। हाँ, ये उससे भी पूछ लीजिए कभी। सुनीता जी, फनी बात ये हुई कि बॉस की चमचागिरी के चक्कर में सिगरेट की डब्बी ऑफर कर दी। रोज़ सिगरेट पीने वालों को क्या हुआ कि उल्टा पड़ गया और झाड़े पड़ गए। गनीमत थी कि दफ्तर बंद कैबिन में शख्स सिर्फ मैं और बॉस थे, जिससे ये बात वायरल नहीं हुई। फ़ायदा ये हुआ कि अगले दिन उसके बॉस ने उसे बुलाकर शख्स को हैप्पी

0: हैप्पी कर कल जो हुआ उसके लिए सॉरी कहा और बॉस की चमचागिरी करने में मुझे झाड़े पड़ी थी। अनिल शर्मा सरिता विहार से ओके। कभी कभी कोई बात उल्टी फट जाती है। हाय गुड इवनिंग डियर सरिता मैम, कैसी हैं आप? मैं तो आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि जब बात किसी को इम्प्रेस करने की आती तो वो कोई फ़नी हरकत की हो तो एक बार मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ हो गई। स्कूल टाइम में ना मैं उससे बोल रही थी ना वो मुझसे बात कर रही थी। फिर क्या हुआ, उसने मुझे फ़ोन पर मैसेज सेंड किया इम्प्रेस करने के लिए कि कल मैं अपनी जान देकर सॉरी बोलती हूँ, आज के बाद कभी नाराज़ नहीं होंगे प्लीज़। तो फिर नेक्स्ट डे स्कूल में मिले तो उसने दौड़ कर गले लगा लिया और मुझे चॉकलेट दे दिया। तो इसमें आपने कहाँ से इम्प्रेस कर दिया अंशी जी? मैं आपने कैसे वो किया, उसने किया आपको इम्प्रेस? हेलो मैम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम केरला कोट्टयम सिटी। हाय, कैसे हैं आप? ब्यूटिफुल हाँ, केरला से ओके। एंड मोहल्ला हलवाइयाँ शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी कहते हैं कि आपको मेरा प्यार भरा सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपका स्वागत है। और मैं एक लिसनर हूँ और जी हमें मालूम है, मैं आरजी को इम्प्रेस करने के लिए तारीफ़ करता हूँ, उनकी तारीफ़ करता रहता हूँ, मेरा मैसेज पढ़ देते हैं, उनको मक्खन लगाना पड़ता है। जी नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, हमें मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो जो मैसेजेस आते जाते हैं वो हम ज़रूर एयर करते हैं, तो ये हमें पता होता है कि आप सभी आरजीज की तारीफ़ करते हैं और सेम लाइन आप सभी आरजीज को कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपको सुनना हमें अच्छा लगता है। हमें भी पता होता है कुछ, लेकिन हाँ हमें अगर इसके बिना भी आप मैसेज करेंगे तो हम ज़रूर एयर करेंगे और बिल्कुल दिल से करेंगे। सो नो नीड टू बटर अस, ओके। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आप कैसी हैं? प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इम्प्रेस करने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन आज के ज़माने में कोई किसी से खुश नहीं होता। कंचन सोनिया विहार दिल्ली खजूरी से ओके। एंड दिस, एक बार मैंने अपने बैडमिंटन कौशल का दिखावा करके किसी को प्रभावित करने की कोशिश की। मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा बस ये शानदार शॉट देखो। मैंने पूरे जोश के साथ रैकेट घुमाया लेकिन शटल कॉक को पूरी तरह चूक गया। सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें प्रभावित करने के बजाय मैं उस दिन का मनोरंजन बन गया। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? आपने लिखा नहीं अपना नाम, ओके। द सन इज सुखलाल फलाकार वेस्ट बंगाल से कि हम बचपन में किसी के सामने 100 रुपये गिरा के बोला था कि आपका पैसा गिर गया और वो आदमी 100 रुपये रख के बोला मिल गया। पर ये तो इम्प्रेस करने की बात नहीं हुई ना। गुड इवनिंग सुनीता जी, मैसेज मसाला मिक्स विजेंद्र गटकोल अकोला महाराष्ट्र से, आज तक किसी को इम्प्रेस किया नहीं है। अकोला में बारिश चालू है, गाने बहुत एंजॉय कर रहे हैं एंड एक्चुअली दे आर स्वीट सॉन्ग्स। यस आई नो दैट, थैंक यू सो मच। एंड दिस वन इज, मैं एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए गया, अपने पर्स में से सभी नोट सड़क पर उछाल दिए। ओह रियली, ओह ये तो हीरोगिरी होगी। कभी मेरी गर्लफ्रेंड ने सारे नोट सड़क से उठाए और मेरे पर्स में वापस रख दिए, मेरी जेब में रख दिया। नवाब अहमद भारती बलीमारा से। लेकिन इसमें इम्प्रेस हो गए वो आपसे? ये वैसे फनी बेवकूफ़ी तो है, सीरियसली ओके। 9th और 10th की बात है, गली में हम स्कूल भी साथ पढ़ते थे, जो कि किसी को देखकर क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग बैटिंग करते थे और हम और एक रेस्टोरेंट में बड़ी बड़ी एकजुट में इम्प्रेस हुए थे। कौन हुए थे इम्प्रेस? आप थोड़ा टाइपिंग एरर्स कम कर दीजिए प्लीज़, वो मेरे को दिक्कत कर देते हैं। और एक गाना चलाऊं या आपसे बातें करूं, बताइए क्या? हाँ, टाइम हुआ है 6:26 और 52 सेकंड और मैसेजेस इतने आ रहे हैं कि मतलब पढ़ूंगी नहीं तो फिर आप नाराज़ हो जाएंगे। तुम्हारे दिल की गहराई में डूबने का इरादा था पर ऐ सनम तभी याद आया कि मुझे तैरना नहीं आता। सोचा था तुम्हारी जुल्फों के साथ साए में ज़िंदगी गुजार दूंगा पर तुमने तो कंघी करके सारा प्लान ही बिगाड़ दिया। आजी सुनीता जी नमस्ते, शुभ संध्या। प्रकाश शिंदे मुंबई से, थैंक यू। एंड जोया कहती है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, मैंने आज तक कभी किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की क्योंकि लोग मुझे देखकर या सुनकर या लिखा हुआ पढ़कर खुद ही इम्प्रेस हो जाते। ओह माय माय, That's impressive, huh? Okay, hi, good evening. I presented gold chain to my girlfriend to impress her. And after 4 years, she finally became my wife. तो वो सोने की चेन असली थी या नकली थी ये बताइए मुझे. रजत, समायरा और सम्राज. लिटिल सन 7 months का, गॉड ब्लेस हिम, लुधियाना से. गॉड ब्लेस योर फैमिली ऑफ कोर्स, एंड आप हमेशा ऐसे ही साथ रहें. और असली गोल्ड की क्या, डायमंड की भी उनको दे दीजिए प्रेजेंट्स. सो डायमंड इज ऑलवेज फॉर गर्ल्स एंड फॉर एवर, या एंड लड़कियां बहुत इम्प्रेस होती हैं. नमस्ते सुनीता जी, मैं नेहा गाज़ियाबाद से. मैं और मेरे हस्बैंड शादी से पहले एक ही कंपनी में थे और मेरे बाल बहुत कमर तक आते थे. एक बार उन्होंने मुझे कहा कि आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं. उस दिन से मैं हर दिन बाल धो के खुले छोड़ के आने लग गए. हालांकि इसके कारण मम्मी से बहुत पिटाई हुई क्योंकि मम्मी को लगता था कि ऐसे मेरे बाल खराब हो जाएंगे. आज भी हम पति पत्नी उस बात को खूब याद करते हैं. इम्प्रेस करने की कोशिश, बाल खुले छोड़ के हवा नहीं चलवाते थे फैंस का ताकि आपके बाल भी उड़े. हाँ, ये तो ज़रूरी था ना कि थोड़ा सा बाल भी उड़ा दें. कितना अच्छा लगता ना, हवाएं चल रही हैं, ओह हो हो, फिर आपके बाल उड़ रहे हैं, खूबसूरत बाल. वो टाइम तो ऐसे ही होता है ना. यू नो दिस इज़ मेरा सवाल आज आपसे ये है कि मैंने आपसे पूछा कि कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपने कोई फ़नी सी बेवकूफ़ी की है तो हमें बताइए. और ज़रूरी नहीं है आप अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ को ही इम्प्रेस करें. इम्प्रेस करने के लिए कोई भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, कोई भी हो सकता है जिसे आपने इम्प्रेस किया हो और फिर बाद में आज आप उसको याद करके आप हंसते हो, ऐसा भी हुआ होगा. हाँ, तो चलिए अब थोड़ी देर बाद बात करते हैं और हम आपसे ही मिलेंगे अभी थोड़ी देर में. अब समय है एशियन गेम्स 2026 के अपडेट का.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
2: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में. मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल. तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं. एथलेटिक्स में भारत के लिए बड़ी खबर आई है. बारानिका एलंगुवन ने एशियन गेम्स 2026 की महिला पोल वॉल्ट में, जो पोल वॉल्ट की स्पर्धा होती है, उसमें कांस्य पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास गढ़ दिया है. बारानिका ने 4.15 मीटर की ऊंचाई सफलतापूर्वक पार की. कजाकिस्तान की पोलिना इवानोवा ने भी 4.15 मीटर की ऊंचाई पार की. दोनों खिलाड़ी 4.25 मीटर की ऊंचाई पर सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद कांस्य पदक साझा किया गया. इस उपलब्धि के साथ वरानिका एलंगुवन एशियन गेम्स में पोल वॉल्ट में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं. भारत के लिए ऐसे ये एथलेटिक्स में एक ऐसी उपलब्धि है जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी.
3: जी शायद, थैंक यू सो मच. और इसी अपडेट को थोड़ा आगे लेके चलेंगे एथलेटिक्स में, क्योंकि आज मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं दोस्तों. तो आपको बता दें कि विम्स 400 मीटर फाइनल में भारत की प्राची भी क्वालिफाई कर चुकी है विम्स 400 मीटर फाइनल्स के लिए आफ्टर फिनिशिंग थर्ड इन अ हीट इन 53.46 सेकंड्स. शी एडवांसेस एज वन ऑफ द नेक्स्ट टू फास्टेस्ट रनर्स आउटसाइड द टॉप टू फिनिशर्स इन द थ्री हीट्स. ईरान ज़हरा विंस द थर्ड हीट इन 52 सेकंड्स. अर्लियर इंडियाज किरण हैड फिनिश्ड सेकंड इन अ हीट इन 53.44 सेकंड्स टू क्वालिफाई डायरेक्टली. ये भी आपको बता दें कि द टॉप टू फिनिशर्स फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री हीट्स क्वालिफाइज डायरेक्टली फॉर द फाइनल विद द नेक्स्ट टू फास्टेस्ट एथलीट्स अक्रॉस ऑल थ्री हीट्स ऑल्सो एडवांसिंग. वही मेंस 400 मीटर फाइनल में विशाल टीके का एक बहुत स्टुपेंडस रन रहा उनके हीट में टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल बिकॉज ही फिनिश्ड इन द फर्स्ट स्पॉट इन द हीट टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल. वेल, द इंडियन वन हिज मेंस 400 मीटर हीट इन 45.27 सेकंड्स टू स्टॉर्म इनटू द फाइनल. विशाल पिप्स कतार अमर इब्राहिम बट जस्ट 0.04 सेकंड्स. इंडिया विल नाउ हैव रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द मेन एंड वुमेन्स 400 मीटर फाइनल्स. शाहिद
2: जी, ट्रैक एंड फील्ड पर भारतीय खिलाड़ी आज शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक पे चलते हैं, एथलेटिक्स की बात करते हैं। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर में जो शानदार प्रदर्शन किया है, रजत पदक जीता, उसकी बात कर लेते हैं। एशियन गेम 2026 में भारत के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत लिया है। गुलवीर ने 28:29.38 का समय निकाला। वहीं बहरीन के बिरहानू बालवेव ने 28:27.51 का समय निकाला और स्वर्ण पदक अपने खाते में जोड़ा, जबकि अल्बर्ट किप्टू ने 28:34.38 के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। ये एशियन गेम्स में गुलवीर सिंह का दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने हांगझाऊ 2023 में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीता था और इस बार उन्होंने अपने पदक का रंग बदला है। गुलवीर सिंह भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। उन्होंने पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। इस साल ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया था। खास बात यह कि आइची नागोया एशियन गेम्स में पुरुषों और महिलाओं दोनों में 10,000 मीटर के स्पर्धाओं में भारत ने पदक जीता। महिलाओं के 10,000 मीटर में जैसा हमने पहले बताया था, सीमा कुमारी ने कांस्य पदक जीता है, यानी महिलाओं में कांस्य पदक मिला, पुरुषों में हमें 10,000 मीटर में रजत पदक हासिल हुआ है।
3: हां जी, एंड टू ब्रिंग द बिग न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स एंड वुमेन्स शॉट पुट वंस अगेन फॉर ऑल आवर लवली लिसनर्स, मनप्रीत कौर ने भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 17.17 मीटर्स। यस, इट वॉज अ मोमेंट फॉर एवरी इंडियन टू फील प्राउड बिकॉज दैट वुड डेफिनेटली मेक अस ऑल फील वेरी हैप्पी। चाइना को गोल्ड और सिल्वर दोनों ही वुमेन्स शॉट पुट पे प्राप्त हुआ। मनप्रीत कौर के नाम रहा आज का ब्रॉन्ज मेडल। एंड आपको ये भी बता दे कि दिस डेफिनेटली ये इस जीत के साथ उस समय भारत के हो गए थे 21 मेडल, लेकिन क्योंकि उसके बाद भारत का और मेडल भी आ गया एथलेटिक्स में, तो भारत की मेडल टैली राइज होकर बढ़ गई टू 22 मेडल्स। बट एक और चीज, मेंस 100 मीटर सेमीफाइनल के अंदर गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही 100 मीटर सेमीफाइनल से बाहर हो गए। 10.32 सेकंड्स की टाइमिंग रही गुरिंदर वीर सिंह की और अनिमेश कुजूर की टाइमिंग रही 10.38 सेकंड्स की। सो दैट वाज एन अपसेटिंग डिफीट, और शुड वी से एन अपसेटिंग न्यूज, बिकॉज इंडिया वुड नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द फाइनल्स ऑफ द मेंस 100 मीटर्स टुडे। शाहिद
2: जी, आपने मेडल टेबल की बात की, भारत की बताया, जहां पर भारत ने 2 गोल्ड 9 सिल्वर 11 ब्रॉन्ज समेत 22 पदक जीते हैं। वहीं अगर मेडल टेबल पे देखें तो सबसे ऊपर अभी भी चीन बना हुआ, 97 गोल्ड 36 रजत पदक है, इसके अलावा 24 कांस्य पदक सहित 157 पदक जीतकर सबसे ऊपर पहले पायदान पर बना, जबकि जापान की बात करें 27 स्वर्ण 42 रजत 44 कांस्य सहित 113 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर, जबकि कोरिया की बात करें तो 13 स्वर्ण पदक 17 रजत पदक 34 कांस्य समेत 64 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है।
3: जी, थोड़ा सा खुशी भी होती है और हैरानगी भी होती है कि अगर हम देखें पीपल्स रिपब्लिक चाइना हैज गॉट 97 गोल्स, वी विल टॉक अबाउट दैट शायद इन द नेक्स्ट अपडेट, बिकॉज अभी वक्त हो गया है अपने सारे दोस्तों से विदा लेने का। मैं साक्षी मांडवाल और शाहिद आजमी फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं, आपके साथ एक बार फिर से शाम को 7:30 बजे आज के दिन की आखिरी अपडेट के साथ जुड़ेंगे लाइव फ्रॉम आकाशवाणी ब्रिंगिंग टू यू द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। थैंक यू सो मच।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: अभी आप एशियन गेम्स 2026 का अपडेट सुन रहे थे।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल, गया है बदल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: और आज जी मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहवादी और ये है मैसेज मसाला मिक्स। और आज हमने आपसे बहुत क्यूट सा सवाल पूछा और मैसेज मसाला मिक्स में कहते हैं, नमस्कार रेनबो परिवार को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भैरूलाल वाक्तारिया धाकड़ उज्जैन मध्य प्रदेश से, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। एंड दिस वन इज़ कैलाश शर्मा गुरुग्राम से, बहुत बहुत पुरानी है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। ओहो उस टाइम की बात है, करीब 1986 की बात है। हमें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, तो गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए हमने किसी फ्रेंड से स्कूटर उधार लिया, क्योंकि उसमें स्कूटर एक स्टेटस हुआ करता था, स्टेटस सिंबल माना जाता था, क्योंकि उस समय स्कूटर माना जाता था जैसे हमने लिखा है। लेकिन स्कूटर रास्ते में ही बंद हो गया और हमें उसको पैदल घसीट कर स्कूटर को खड़ा करना पड़ा और हमें बस से ही जाना पड़ा। जब उस घटना को याद करते हैं तो लगता है कि कई बार इम्प्रेस करने के चक्कर में हम फनी चीज कर बैठते हैं जो हमें जिंदगी भर याद रहती है। कैलाश शर्मा जी आपने सही कहा, आज भी आपको वो एक मुस्कुराहट फैला देती है आपके चेहरे पर, है ना। अनूप कुमार झारखंड से कहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स, फूलिशनेस, डिडंट स्टडी वेल, हाउएवर आई हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, लर्न फ्रॉम मैथ्स। रियली मैथ्स, ओके। एंड मैसेज मसाला मिक्स में आज सुनीता शाहबादी साहिबा को नमस्कार, आदाब। अगर किसी को हद से ज़्यादा मीठी मीठी बातों से प्यार जताओ तो समझता तो है ज़रूर, लेकिन कोई इसका मतलब है जो इसका आज इतना इम्प्रेस कर रहा है? हाँ ये तो है। अब वो तरीके पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनको ना लगे कि आप उनको मक्खन लगा रहे हैं। गुनौर से आदिल कमर तस्दीक और अली मुजफ्फर अली, ओके। एंड सुदर्शन मुखी एंड अनीता एंड सिमरन मुखी कहते हैं शांतिनगर से कि नमस्कार, ज़िंदगी में दिखावे की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जब आप दिखाने लायक हो जाएंगे तो लोग अपने आप ही दिख जाएंगे। आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ हो। नहीं, कभी कभी हम दूसरों को थोड़ा सा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है उसे दिखावा नहीं होता। कभी कभी हम चाहते हैं कि हाँ कोई हमसे इम्प्रेस भी हो जाए। मैम जब वो नाराज़ हुई थी तो मैंने भी उसको इम्प्रेस करने के लिए उसकी टेस्ट में चीटिंग कराई थी। हैं अंशी सीरियसली, ओके तो ये इम्प्रेस करना तो नहीं हुआ, ये तो गलत बात हो गई। ओके हाय प्रोफेसर, हाय राहुल, हैप्पी वीकेंड, आई हैव ट्राई टू इम्प्रेस बट मिजरेबली फेल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओह रियली, ट्राई अगेन डार्लिंग। एंड दिस वन इज सिस्टर सुनीता जी, नमस्ते, अभी अभी बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ हमारे गाँव का कि रामलीला के अध्यक्ष मशहूर कलाकार छोटे भाई रूपेन राणा जी गंभीर बीमारी से, हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं, हमारी तरफ से शुभकामनाएं और जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। थैंक यू दीदी मैसेज शामिल करने के लिए, ओके। एंड दिस वन इज हाय, बहुत सारे मैसेजेस हैं। हेलो मैम, मैं भुवनेश हूँ अशोक विहार से दिल्ली से, हाउ आर यू टुडे, टॉपिक आई लाइक टू से दैट देयर हैज नॉट बीन सच एन इंसिडेंट वेयर आई हैव ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन।

In fact, I remember when I had joined my government job, my postmaster ma'am got impressed by me as soon as she met me. Ooh, seriously? By kaam se aapki personality se. Shubh Sandhya Sunita ji, aajkal log aaye din social media par prabhavit karne ke liye apni photo lagate hain jisme likha hota hai kisi ke saath, kisi celebrity ke saath, you know, Rajesh Bhalla advocate Kankar Khera mera chigi to hai. Good evening, Shyam Sohani. प्रोग्राम बेहद खूब अच्छा चल रहा है और बेहद अच्छा चल रहा है. ओके, मेरा एक बार मोबाइल कहीं गिरा था, मुझे मालूम नहीं था. जब वो मेरे घर पहुंचाने आए तब मैं उन्हें इम्प्रेस किया. कैसे इम्प्रेस किया आपने? बसंत कुमार ठाकुर से आपने कहाँ इम्प्रेस किया? वो तो उनकी अच्छाई थी और वो घर लेकर आ गए. गुड इवनिंग सुनीता. आई एम कृष्ण तिवारी फ्रॉम अयोध्या यूपी. एक बार मुझे इम्प्रेस करने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे न्यू ईयर पे ग्रीटिंग कार्ड दिया और उसको मैंने अपने बेडशीट के नीचे रख दिया. नेक्स्ट डे मैं स्कूल चला गया और बेडशीट धुलने के लिए गया और उसके बाद आपकी धुलाई हो गई है ना, और सबको पता चल गया और मेरा प्रेम पत्र के बारे में, तो उसके बाद आपकी धुलाई होगी. आय हाय हाय. ओके, तो वेल इम्प्रेस तो आप हुए होंगे. है खैर, चलिए, दैट वी लीव टू यू. ओके, नमस्ते, कैसे हैं आप? अमरावती से ये लिख रहे हैं कि वैसे तो एफएम रेनबो को सुनती रहती हूँ मैं. शादी के पहले जब स्कूल जाते थे मेरे बाल बहुत लंबे थे और मुझे फूलों से बहुत प्यार था और गुलाब के फूलों का तो लगाना बहुत पसंद था. अभी मेरे पति को, हमारे गांव आते हैं तो मेरी बहन और देव, इनको फूल पसंद है तो उनको फूल गिराते हैं, इम्प्रेस करते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. माई टाइम इज़ अप एंड मैं आपसे मिलूँगी अभी 8 बजे और आपसे मिलूँगी म्यूज़िक मस्ती में. तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए. आई सी यू Very soon. Bye-bye. Take good care.

0: Well, those were some of the new releases of the week. Listen at 7:30 p.m. by the studio clock. Time for the Asian Games 2026 updates.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
2: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवार। तो चलिए इस घंटे की आज की अंतिम अपडेट की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले एथलेटिक्स की, जहां 400 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हीट जीती और फाइनल में जगह बनाई। खास बात यह रही कि तीनों हीट में उनका सबसे तेज, यानी सबसे तेज जो उनकी दौड़ थी वो तीनों हीट में सबसे तेज रहे। महिलाओं की 400 मीटर में किरण पहल और प्राची ने भी फाइनल का टिकट कटाया। किरण ने 53.44 सेकंड और प्राची ने 53.646 सेकंड का समय लिया। दोनों अब कल फाइनल में उतरेंगी। पुरुषों के हैमर थ्रो स्पर्धा में भारत को निराशा हाथ लगी। दमनीत सिंह का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 67.56 मीटर रहा, जो उन्होंने शीर्ष आठ में जगह दिलाने के लिए पर्याप्त उनके लिए नहीं रहा है। प्रवीण कुमार ने 65.24 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, लेकिन वो 11वें स्थान पर है। शीर्ष आठ में जगह बनाने के लिए 68.10 मीटर का थ्रो चाहिए था। खास बात यह है कि दोनों भारतीय खिलाड़ी इससे पहले इस दूरी को पार कर चुके हैं। इस तरह हैमर थ्रो के फाइनल में भारत का अभियान निराशाजनक देखने को मिला, जिस तरह से शुरू हुआ है।
3: जी, एंड नाउ गिविंग यू सम मोर अपडेट्स फ्रॉम हाउ द डे स्टार्टेड ऑफ टुडे, सिंस वी आर रैपिंग अप द डे टुडे। शूटिंग में लेट्स नॉट फॉरगेट दैट कमलजीत एंड सुरुचि इंदर सिंह वन एज द गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम फाइनल इवेंट, मेकिंग द गोल्ड टैली फॉर इंडिया टू 2 मेडल्स। एंड अगेन इन शूटिंग वी हैड एपीएस तोमर, रुद्राक्ष पाटिल एंड नीरज कुमार इन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस, विनिंग द सिल्वर फॉर इंडिया। और एथलेटिक्स में जैसे हमें भी बता ही रहते हैं आपको कि गुलवीर सिंह हैज वन एज द सिल्वर इन द मेंस 10,000 मीटर। टेबल टेनिस की दुनिया में दोस्तों आपको बता दिया, दिया चिटले एंड मनुषा लॉस्ट टू वैंग चू क्विन सुन जिंगशा एंड वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स डबल सेमीफाइनल्स फॉर इंडिया। वहीं मनप्रीत कौर ने भी भारत को आज ब्रॉन्ज दिलवाया है और कृष्णा जयशंकर मेनन ने फिनिश किया 5वें स्थान पर विमेन के शॉट पुट अरीना के अंदर। शाहिद
2: जी, दो भारत के खिलाड़ी हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उनके बारे में बताना चाहूंगा। भारत के गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर सेमीफाइनल में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। गुरविंदर 11वें और अनिमेश कुजूर 18वें स्थान पर रहे। हालांकि दोनों भारत में जिस तरह से प्रैक्टिस करके जिस तरह गए थे, उम्मीदें थी कि काफी बेहतर करेंगे, लेकिन पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के फाइनल में जगह बनाने से वो चूक गए। आपको बता दें गुरविंदर ने 10.32 का समय लिया, जबकि अनिमेश कुजूर ने 10.38 का समय लेकर 100 मीटर की दौड़ पूरी की और इसके साथ ही उनकी जो चुनौती थी 100 मीटर में वो समाप्त हो गई है।
3: जी, एंड मूविंग ऑन टू एथलेटिक्स आल्सो, वी हैड बरानिका एलाइन गोवन विनिंग अस द ब्रॉन्ज वुमेन्स पोल वॉल्ट फाइनल में। अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया टू हैव वन अ मेडल इन पोल वॉल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। स्क्वाश की बात करें तो जोशना चिनप्पा और वी सेंथिल कुमार बी डेविड पलिनो जेम के अरेबिदो ऑफ फिलीपींस इन मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल, यहां पर भी भारत के लिए एक मेडल कंफर्म हो गया। आज का दिन स्क्वाश के नजरिए से तो भारत के लिए बहुत अच्छा रहा। कबड्डी में दोनों ही महिला और जो मेन्स हॉकी की टीमें हैं भारत की, उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव ओपोनेंट्स को, यानी भारतीय महिलाओं ने नेपाल को आज हराया कबड्डी के सेमीफाइनल में और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं कबड्डी की तरफ मेन में भारत ने थाईलैंड को हराया और उसके फाइनल में प्रवेश कर लिया। तो ओवरऑल इफ यू वुड टू सम अप इंडियाज डे टुडे इन टर्म्स ऑफ द मेडल काउंट, इट स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी गुड नोट एंड थैंकफुली इट्स आल्सो एंडिंग ऑन अ डिसेंट एंड अ गुड नोट। शाहिद
2: जी बिल्कुल, मैं एथलेटिक्स की बात कर रहा हूं। एथलेटिक्स में भारत के लिए एक बड़ी खबर यह भी रही, बरानिका लेगोवन ने एशियन गेम 2026 की महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में जो कांस्य पदक जीता है, जो इतिहास रचा है, वो एक संदेश देता है कि जो भारत के एथलेटिक्स से खासकर अगर हम बात करें ट्रैक और फील्ड की, दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
3: जी, और थोड़ी सी अपसेटिंग न्यूज़ बता दी कि आज के दिन का सबसे बड़ा अपसेट बैडमिंटन की दुनिया से आता है, जहां पर सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी लॉस्ट टू पकापोन एंड पीरताचाई सुखपुन 1-2 ऑफ थाईलैंड इन द मेंस डबल्स फर्स्ट राउंड। ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। दे वर द मेडल contenders and we were keeping our hopes alive from this duo of India, but things did not go our way. Weightlifting, can there be? Nirupama Devi finished 8th in the women's 61 kilogram category. Another heartbreak over there. Uske saath saath hum batate equestrian mein jahan pichli baar Bharat ko gold mila tha, aaj usme Gaurav Pandir, Hriday Vipul Chedda, Shruti Bora and Jay Sood ran out of medal places in the team final. Table tennis mein Manu Shah beat Faraji Benjamin Mink singles round 2 match. So overall ye kaha ja sakta hai ki it was a mixed day of medals that were pouring in, but on a lighter and a better note, we can also end the day with the overall medal tally in which India is standing right now. Bharat ki standing agar baat kare to Bharat is samay hai 12th sthan par on the medal position with a total of 22 medals, jisme se 2 gold aa chuke hai cricket aur shooting ki badolat. 9 silver hai, jo 9 silver hai usme 5 shooting se aaye, 1 weightlifting se, 1 वुशु से, 2 एथलेटिक्स से. 11 ब्रॉन्ज है भारत के पास, जिसमें से 4 शूटिंग के हैं, 1 मिक्स मार्शल आर्ट, 1 सॉफ्ट टेनिस, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस.
2: जी, और सबसे ऊपर चीन बना हुआ 98 गोल्ड के साथ 100 यानी शतक लगने वाला है. 37 उसके सिल्वर मेडल, जबकि 24 उसके कांस्य पदक. वहीं जापान 28 गोल्ड, 43 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज समेत 115 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि कोरिया की बात करें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज समेत 64 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है.
3: जी, आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही. अभी मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत. हम एक बार फिर कल सुबह आपके साथ 9:30 आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे टू ब्रिंग यू ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. फॉर द मोमेंट इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
0: You are listening to the Asian Games 2026 updates. This is FM Rainbow 102.6 MHz.
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा.
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
0: Welcome back to Friday Fiesta. My name is Lipika Das. So, some fresh new songs by Sam Smith, Olivia Rodrigo, Kacey Musgraves, Miley Cyrus just made its way onto our playlist, right? And now let's look at the songs that have already made their mark on 2026. Stay with us for more hits of the year so far right here on Friday Fiesta on FM Rainbow 102.6 MHz.

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV

0: एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: वेलकम बैक, इट्स 44 मिनट्स पास्ट 7 PM। यू आर लिसनिंग टू द प्रोग्राम फ्राइडे फिएस्टा एंड इन द सेकंड हाफ यू आर लिसनिंग टू सम ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ 2026 सो फार। द नेक्स्ट ट्रैक दैट आई हैव लाइंड अप दिस इवनिंग इज अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन ऑफ मेक्सिको, इट्स कल्चर एंड इट्स एंड्यूरिंग म्यूजिकल स्पिरिट विद इट्स वार्म मेलोडी एंड हार्टफेल्ट डिलीवरी। दिस सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड बाय अलेहांद्रो फर्नांडेस फॉर द फीफा 2026 एल्बम and it's called Mi Mexico Lindo.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हेलो अगेन एंड वी हैव जस्ट 9 मोर मिनट्स लेफ्ट फॉर मी टू रैप अप फ्राइडे फिएस्टा for September 2026. The next biggest hit of 2026 so far, I feel, is this song by U2, Ed Sheeran, and also features Ukrainian musician turned soldier Taras Topolia. The song here is called Yours Eternally.

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज रात 10 बजे तक आईटीओ सहित कई मार्गों पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन किए हैं। इसमें बहादुर शाह जफर मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, मीरदर्द रोड, रणजीत सिंह मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, जांगीर रोड और प्रेस रोड मार्ग शामिल हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कृत्रिम पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र से अलग सत्र में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है, जिसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हाल में आई बाढ़ के बाद हिमालयी जलवायु तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि इसका नेतृत्व नेपाल, भारत और चीन को संयुक्त रूप से करना चाहिए। और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: Go home. I experienced it too. I experienced it
2: too.
1: Oh
2: my
3: गुड इवनिंग, वेलकम टू म्यूजिक मस्ती विद मी, माय नेम इज सुनीता शामादी। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं मस्त गाने, एंड अगर नाचने का मन करे तो प्लीज अपने आप को मत रोकिएगा।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
6: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ऑलराइट जी, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, मैं आपसे फिर मिलूंगी. अपना ख्याल रखें और टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स. हैप्पी वीकेंड, एंड वीकेंड में रिलैक्स कीजिए, खुशी मनाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, एंड टू गेट रिजुविनेटेड फॉर मंडे. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफसपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया। उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने छात्रों से लगातार अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने तथा तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव के अनुरूप खुद को ढालने का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि भाजपा की नीति हमेशा अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित रही है, जिसका अर्थ है विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और राजनीतिक राजधानी को अधिक हरा भरा, स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाने के लिए मिशन ग्रीन दिल्ली के अंतर्गत 70 लाख पौधरोपण का लक्ष्य पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज रात 10 बजे तक ITO सहित कई मार्गों पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन किए हैं। इसमें बहादुर शाह जफर मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, मिर्दर रोड, रणजीत सिंह मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, जहांगीर रोड और प्रेस रोड मार्ग शामिल हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। और जापान में एशियाई खेलों में आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीते। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और ब्रानिका एल्गोरन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूँ आपके साथ ताहिर, और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये शाम, ये खूबसूरत वक्त, और साथ में कुछ ऐसे नगमे दो जो दिल को छू जाते हैं, जिनके साथ कभी कोई चेहरे या कोई पुरानी बात याद आ जाती है। तो जी हाँ, शुरू हो रहा है प्रोग्राम आपकी याद आती रही। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ ताहिर और प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। कुछ गाने हम सिर्फ सुनते नहीं, उन्हें महसूस भी करते हैं, और जो जब कभी कोई महसूस करते हैं और जब कोई नगमे दिल या किसी पुरानी बात को छू जाएं तो उस वक्त तो याद ही आ जाता है ना। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ आपको कि गाना कभी सुना था, आज वो दोबारा सुन लिया तो याद आ जाता है ना, वही टाइम। हाँ, ये वही टाइम है। नहीं बताइए।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: और प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रहे।

जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ लम्हे दिल के किसी कोने में वैसे ही संभाल के रखे जाते हैं। बस एक धुन बजती है और वो लम्हा फिर से आंखों के सामने आ जाता है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। कभी किसी की आवाज याद आ जाती है, कभी कोई जगह, और कभी सिर्फ एक गाना ही काफी होता है पुरानी दुनिया में लौट जाने के लिए। कुछ यादें हम जानबूझकर नहीं लाते, वो खुद ब खुद किसी धुन के साथ चली आती हैं। शायद अगला ना हुआ भी आपको किसी ऐसी ही लम्हे तक ले जाए, बताना।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर, कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है आपका मन पसंदीदा, जो बहुत प्यारा लगता है आपको प्रोग्राम, जिसका नाम है आपकी याद आती रही। और मैं हूँ आपके साथ ताहिर। बात जब मोहब्बत की होती है तो मोहब्बत एक खूबसूरती, उसकी एक खूबसूरती ये भी है कि फासले कितने भी हो जाएं, दिल में बसी हुई कुछ बातें कभी दूर नहीं होती। वक्त गुजरता है लेकिन एहसास वही रहता है। एक ऐसा ही नगमा जो शायद आपके दिल की किसी बात को अल्फाज दे दे। आपकी नज़र कर रहा हूँ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी याद आती रही। जब प्रोग्राम का नाम ही ऐसा है तो याद तो जरूर आ रही होगी कुछ लोगों को। कुछ लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा ना रहकर भी हमारी कहानी का हिस्सा बने रहते हैं। उनकी एक बात, एक मुस्कुराहट या कोई पसंदीदा गाना सब कुछ फिर से याद दिला देता है। और फिर लगता है कि कुछ रिश्ते वक्त की मोहताज नहीं होते, वो बस दिल में अपनी जगह बना लेते हैं और कहीं जाते ही नहीं, है ना।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: और एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। कभी कभी मोहब्बत के सफर खुशी से ज्यादा इंतजार और तन्हाई भी दे जाता है। इंसान दिल से किसी को अपना बना लेता है लेकिन किस्मत हर बार उस रिश्ते को मुकम्मल नहीं होने देती। बस एक जुमला नहीं कि मोहब्बत, बल्कि उस मोहब्बत का एहसास है जिसमें अपना सब कुछ किसी के नाम कर देने की बात एक दर्द उसके दिल में रह जाता है, दिल को खाली कर जाता है। अब सुनिए ये नामा क्या याद दिलाता है आपको।

तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब इजाजत चाहूंगा। मैं था आपके साथ ताहिर और आप सुन रहे थे आपकी याद आती रही FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। उम्मीद है आज के नगमे आपके दिल को जरूर छू गए होंगे, लेकिन महफिल अभी ख़त्म नहीं हुई है। रात 11 बजे फिर मुलाकात होगी रंगे महफिल में, जहां गज़लों के साथ अल्फाज भी दिल से बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: mixed doubles semi-finals, thus winning India its first mixed doubles medal in table tennis at the Asian Games after 8 years. Shortly afterwards, Joshua Chidambar and V. Senthil Kumar assured themselves of a medal in the mixed doubles squash. The India men's kabaddi team thumped Thailand, while the women's side defeated Nepal to enter the finals, thus assuring India at least two more silver medals. Manpreet Kaur added to India's medal tally next, winning the bronze medal in women's shot put. Gulveer Singh also won a silver medal in the men's 10,000 meter event. Let's now hear some more detailed reports. First up from the shooting range, where India struck gold, here's Sakshi Manwal with all the details.
1: The best news at the start of the day today came from 10-meter air pistol mixed team event, where Indian shooters Kamaljeet and Suruchi Singh put up a brilliant show. In the final of the 10-meter air pistol mixed teams event, they finished with the gold medal, thus clinching India's second gold of the Asian Games 2026. Another good news in the world of shooting was from the men's 50-meter rifle three positions. Indian shooters delivered a strong performance in the men's 50-meter rifle three positions, securing the team's silver. Aishwarya Pratap Singh Tomar finished third with 589, while Neeraj Kumar stood fourth with 588. Rudraksh Balasaheb Patil finished ninth with 585. India's combined score of 1,762 earned them the silver medal. China took gold with 1,766. In the 50-meter rifle three positions individual event, Aishwarya Pratap Singh Tomar had been eliminated from the men's 50-meter rifle three positions individual final, finishing fifth. Neeraj Kumar had earlier been eliminated in the eighth place, bringing India's campaign in the event to a sad end. With this, shooting remains the highest contributor in the total number of medals contributed by a specific event in the ongoing Asian Games 2026 so far, with a total of 10 medals coming from the world of shooting. This includes 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
0: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
2: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉर्टपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.7 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों की 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और प्रवीण कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा छठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। विशाल टीके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
0: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
3: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से, जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
0: The Indian team is going strong in squash. Shabab Anwar has more.
2: योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम चार में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय योशना

0: और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3, 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग होंग टैंग की चुनौती होगी। ये जोशना का एशियाई खेलों में छठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2, 11-5, 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4, 11-3, 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारतीय वीर चोट्रानी को 41 मिनट में 6-11, 11-8, 11-3, 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे, जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: Was another great day for India in kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
0: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
1: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
0: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और पिशाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12, 19-21, 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रॉस और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार दिग्गज की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20, 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7, 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइनलू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में पुरुष वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elham Razoor, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th

0: immense 200 meter butterfly. He did not start in the 100 meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50 meter breaststroke and 400 meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50 meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th respectively in the 400 meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
2: बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार का सफर राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हो गया। पहले बात सचिन की, उन्होंने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी। सचिन ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार और सटीक पंचों के साथ मुकाबले पर दबाव बनाए रखा। अबू जाजे ने आखिरी दौर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई। भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी। प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली। यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया।
1: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
3: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी। निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही।
1: Indians were in action in canoe. Sakshi Manwal has all the details.
0: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished 5th in the men's kayak double 500 meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished 3rd among 4 pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500 meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished 4th among 5 pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500 meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
1: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
3: भारत को आज तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य, हिमांश सिंह, तेजस पाटिल और कर रहे थे। इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।
1: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Amrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tejada City. Coached by Frenchman Samaye Rabou, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. इंडिया वॉज स्ट्राइविंग फॉर अ मेडल इन इक्वेस्ट्रियन। लेट्स हियर व्हाट शाहिद आजमी हैड टू से।
2: एशियन गेम 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जयसूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझोऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
1: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
0: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner, and they ultimately went on to win the series 2-0.
1: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
0: भारत की पोजीशन मेडल टेबल पर 12th स्पॉट पर है। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त 22 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, जो क्रिकेट और शूटिंग से आए हैं, 9 सिल्वर हैं, जिसमें से 5 शूटिंग से, 1 वेट लिफ्टिंग से, 2 एथलेटिक्स से और 1 वुशु से आया है, और 11 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस से आया है। नाउ लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक एट द टॉप 3 पोजीशंस इन द मेडल टेबल। पहला स्थान लिया हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विद अ टोटल ऑफ 157 मेडल्स, जिसमें से 97 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसके पास कुल मिलाकर 113 मेडल्स हैं, 27 गोल्ड, 42 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके पास कुल मिलाकर 64 मेडल्स अभी तक हुए हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स।
1: It's another exciting day of the Asian Games 2026, with the Indian athletes looking to improve their medal tally on day 7 in Aichi Nagoya. In athletics, Savan Barwal and Karthik Arkera will try to go for gold in the men's marathon final. There was gold in shooting today, will there be one tomorrow? As the women's 50-meter 3B position, individual and team final will take place, with Ashish Chaudhary, Tilottama Sen and Vidarsha Vinod in action. Raju Nawat and Neha Devi will try to get India a medal in the canoe sprint mixed canoe double 500 final. There's also mixed doubles semi-final action with Joshua Chinnappa and V. Senthil Kumar flying the Indian flag. Early morning at 9:30 a.m. it's a big women's kabaddi final between India and Iran. There's also women's single semi-final action in squash with Anahat Singh flying the Indian flag, while Abhay Singh will go for gold in his men's single squash semi-final versus Mohammad Irfan of Pakistan. For the Indian men's hockey team, it's a big pool encounter when they battle Japan. And as their female counterparts are doing, the Indian men will try to go for gold versus Iran in the kabaddi final. There are a lot of expectations from Tejinder Pal Singh Tor and Karamveer Singh in the men's shot put final, while Praveen Chitrawal and Karthik Unnikrishnan will go for gold in the men's triple jump final. There's also the women's 400 meter final in athletics, with Prachi and Kiran going for gold, while Vishal TK will hope to improve upon his impressive men's heat performance in the men's 400 meter final. And athletics action ends with the women's 1500 meter final, with Pooja and Parul Chaudhary flying the Indian flag. Not to forget, India is also in action in surfing, archery, athletics, badminton with his men's and women's singles, fencing, table tennis and boxing, as well as e-sports. That's it from us at Akashwani, as we gave you all the latest updates from the Aichi Nagoya Asian Games 2026. Here's hoping the Indian contingent does the country proud again tomorrow. So from producer Shahnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinav Punchi, it's goodbye and thank you so much for listening.
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

लीजिए पेश हैं एफएम पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में असपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की।

ब्रानिका एल्गोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्ण ने एशियाई खेलों में पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों की बधाई दी है। ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम। मैं हूं आपके साथ ताहिर और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पे रात का ये खामोश और हसीन वक्त। और इस वक्त की महफिल भी कुछ खास होनी चाहिए,

तो आइए अल्फाज की नजाकत और गजलों की मिठास के साथ शुरू करते हैं रंगे महफिल, जहां हर गजल अपनी एक कहानी कहती है और हर शेर दिल के किसी कोने को छू जाता है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। गजल की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है, बात चंद अल्फाजों में होती है लेकिन उसका एहसास बहुत देर तक दिल में रह जाता है। कभी एक शेर पूरी कहानी कह देता है और कभी एक मिसरा दिल की किसी पुरानी बात को छू जाता है। शायद इसीलिए गजल को सिर्फ सुना नहीं जाता, उसे समझा भी जाता है और उसे महसूस भी किया जाता है। तो आइए इसी खूबसूरत एहसास के साथ एक गजल सुनते हैं और देखते हैं कि अल्फाज दिल से क्या बात करते हैं।

रात का सन्नाटा और गजल की आवाज, दोनों का रिश्ता भी कुछ अजीब सा है। दिन भर की मसरूफियत के बाद जब इंसान थोड़ा खुद से बात करता है, खुद साथ होता है, तो गजल के अल्फाज ज्यादा अपने लगने लगते हैं और हर शेर में जैसे अपनी ही कोई बात नजर आने लगती है। कोई गुजरा हुआ लम्हा, कोई अधूरी मुलाकात या फिर किसी का इंतजार, इसी खामोश रात के नाम एक खूबसूरत गजल। सुनिए और अपने एहसास के साथ इसे महसूस कीजिए।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102

0: 96.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, मैं हूं आपके साथ। ताहिर प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। जिंदगी में कुछ मुलाकातें बहुत छोटी होती हैं लेकिन उनका असर बहुत लंबा होता है। कभी किसी से चंद पल बात होती है और वो बात सालों तक याद रहती है। प्यार भी शायद कुछ ऐसा ही होता है। वक्त कितना भी गुजर जाए, दिल किसी एक लम्हे को अपने पास संभाल कर रख लेता है, और जब वो लम्हा याद आता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट भी होती है, आंखों में हल्की सी नमी भी। आइए एक गजल सुनते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। मोहब्बत में सिर्फ मिलना ही तो सब कुछ नहीं होता, इंतजार भी मोहब्बत का एक हिस्सा होता है, अहम हिस्सा होता है। किसी के फोन का इंतजार, किसी एक पैगाम का इंतजार, या बस उम्मीद में रहना कि शायद आज मुलाकात हो जाए। और जब इंतजार लंबा हो जाए तो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। शायद इसीलिए मोहब्बत में गुजरा हुआ वक्त कभी पूरी तरह गुजरता ही नहीं है ना। ये गजल आपके पास जा रही है, बहुत कुछ कह जाएगी।

रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, खास तौर पर वो रिश्ते जिनमें दिल शामिल हो। कभी एक छोटी सी गलतफहमी दूरियां पैदा कर देती है और कभी एक सच्ची बात सारी शिकायतें मिटा देती है। प्यार में अना से ज्यादा जरूरी एक दूसरे को समझना होता है, क्योंकि हर बार अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं। कभी किसी अपने को समझा लेना भी बहुत जरूरी होता है। इसी एहसास के साथ ये गजल आपकी नजर।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं, होता है ना ऐसा? लेकिन अधूरी मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि उसमें खूबसूरती नहीं होती। कभी कभी किसी जिंदगी में आना, किसी का जिंदगी में आना आप अपने आप में एक खूबसूरत बात होती है। वो साथ रहे या ना रहे, कुछ लम्हे और कुछ यादें दिल के पास रह जाती हैं। और फिर कभी कोई गजल बजती है तो लगता है जैसे वो पुरानी याद, पुरानी कहानी फिर से सामने आ गई हो।

तो जनाब इसी खूबसूरत गजल के साथ आज की रंगे महफिल से इजाज़त चाहूँगा मैं। मैं था आपके साथ ताहिर, और इसी वादे के साथ, हालांकि दिल तो नहीं है जाने का, फिर भी कहना होगा, जाना होगा, वक्त किसी के कहने से नहीं रुकता। बहरहाल चलता हूँ, बहुत जल्दी आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। ख्याल रखिए अपना और अपनों का। टेक केयर, बाय बाय।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदों पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। जापान

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: तो श्रोताओं स्टूडियो की घड़ी में 12:03 हुए हैं और ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट शीतल गुप्ता। समय हो चला है हमारे शो जीरो आर शो का।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता।
1: जी मैं
2: पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंक कर मारी तो।
1: मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपने नौकर समझी थी।
2: जी
1: जी, मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पे बहुत गुस्सा आया था
2: और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी इस कड़ाके की सर्दी में।
1: अंदर आइए ना।
2: जी आपका गुस्सा उतर गया?
1: मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, लाइए आपके कपड़े दे दीजिए, मैं सुखा देती हूँ। शर्ट भी दे दीजिए।
2: जी
1: ठहरिए,

0: डॉक्टर का घर है ना?
1: और आप?
0: मैं उनकी बेटी हूँ।
1: तो एक प्याला गरम चाय भी हो जाए?
0: चाय? जरूर।

0: क्या हुआ?
1: कुछ नहीं।
0: आंखें बंद क्यों हैं?
1: तुम्हारे सपने देख रही हूँ।
0: दिल की धड़कन इतनी तेज,
1: तुम्हारा नाम पुकार रही है।
0: सांसों की रफ्तार,

0: मेरे पास ले आई है, कहां से कहां।
1: सच? वीनू, आज मैं बहुत खुश हूं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और हमारा कार्यक्रम जीरो आर शो जारी है। और हमारे साथ अभी श्रोता जुड़ गए हमारे विजेंद्र गहलोत अकोला महाराष्ट्र से।

तो श्रोताओं, जारी है जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे शीतल। और अब अगली फरमाइश की है अतिंद्र जोशी ने, ये अमला एमपी से इन्होंने गाने की फरमाइश की है। आइए सुनते हैं इनका गाना, और मूवी का नाम है झूठा ही सही।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे जीरो आर शो। मैं आपके साथ आपकी आरजे शीतल। वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए सुनते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अपसफा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। जापान एशियाई खेलों में कल 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका ने एलंग गोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी रात। और देखिए इस वक्त बहुत से श्रोता जो हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और देखिए एक गीत की जो है फरमाइश हमें भेजी है, और आपको बता दें कि दोस्तों ये गीत हमें भेजा है विजेंद्र जी ने, और ये सुनना चाहते हैं। तुझे रब ने बनाया किस लिए? और भाई देखिए ये लिख रहे हैं कि प्लीज़ इस गाने को आप ज़रूर प्ले कर दीजिएगा। तो देखिए आपकी फरमाइश पर ही हम अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत। और देखिए, आपको बता दें कि कुछ और श्रोता जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मोहम्मद इम्तियाज जौहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं, और मुंबई दादर से राजेंद्र परमार जी ने हमें मैसेज भेजा है, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म मन से एक गीत। तो चलिए, आपकी फरमाइश में हम सुनवाते हैं अगला गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

श्रोता, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुहानी रात। और देखिए, रात का ये वक्त है, हल्की सी ठंडी हवा जो है चारों ओर इस समय चल रही है बाहर जाकर अगर आप देखें तो। और देखिए, हम लोग इस वक्त आपको सुनवा रहे हैं 90 के दशक के गीत। 90 का दशक एक ऐसा समय जिसकी अपनी ही एक खूबसूरती थी। तो चलिए अब आपको बता दें दोस्तों, एक और फरमाइश जो हमें भेजी है, ये हमें मैसेज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप हमें मैंने प्यार किया फिल्म से कोई गाना हमारे लिए बजा दें। और अंकित जी ने हमें मैसेज किया है और ये लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं। तो चलिए अब आपकी फरमाइश में हम सुनवाते हैं आपको मैंने प्यार किया फिल्म से ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, 90 का दशक एक ऐसा समय जिसकी अपनी ही एक खूबसूरती थी। कैसेट की रील, रेडियो पर बजते फिल्मी गीत, गानों की फरमाइश, चिट्ठियों में लिखे संदेश और गाने को बार बार सुनने का इंतज़ार। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं थे और एक क्लिक पर हज़ारों गाने भी उपलब्ध नहीं होते थे, लेकिन संगीत के लिए लोगों का प्यार कभी कम नहीं था। शायद उस दौर में एक गीत के इंतज़ार करना ही उस खूबसूरती को और बढ़ा देता था। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुहानी रात, और देखिए अब कुछ और श्रोता जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एम राजकुमार तिरची से हमें मैसेज कर रहे हैं और

विजेंद्र घटोल अकोला महाराष्ट्र से इन्होंने हमें मैसेज भेजा है और एक मैसेज हमें आया है। ये मैसेज हमें कर रहे हैं रिंकू कुमार जी, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम हमेशा अपनी मर्जी से रोज़ गाने चलवाते हैं, आज हम आपकी मर्जी से कोई गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अगला जो गीत सुनवाने जा रही हूँ ये गीत है उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही लगता है जैसे वक्त अचानक पीछे लौट आया हो। एक पल में स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय याद आ जाता है, किसी का इंतज़ार याद आ जाता है, या फिर घर में बजता हुआ वही पुराना कैसेट प्लेयर। 19 के दशक के गीतों की सबसे खास बात यही थी कि उनकी धुनें आज भी कानों में पड़ते ही मन में अपनी जगह बना लेती है। तो आइए इन यादों को थोड़ा और करीब लाते हैं और सुनते हैं 90 के दशक का ही एक और खूबसूरत गीत। उदित ये जो अगला गीत आप सुनने वाले हैं ये है उदित नारायण की आवाज़ में।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: भी स्टाइल गया है बब्बई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुहानी रात में बस इतने, और आरती में अब लेती हूँ आपसे अनुमति, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, फिर समय रहेगा हमारे कार्यक्रम भुलाए ना बने, और इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी शीतल। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है, और आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। जापान एशियाई खेलों में कल 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और वनानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। ये थे हिंदी में मुख्य समाचार, और मैं हूँ आपके साथ आपकी RJ शीतल। ये दिल्ली आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल है। आप सुनेंगे अब कार्यक्रम सुहाने भुलाए ना बने।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: तो श्रोताओं, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो और आपके साथ मैं फिर हाजिर हूँ, आपकी आरजे शीतल। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने, एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ वक्त भले ही आगे बढ़ गया हो लेकिन कुछ गीत आज भी वहीं ठहरे हुए हैं, हमारी यादों में, हमारी बातों में और हमारे दिल के किसी कोने में। आज हम लौटेंगे उस दौर में जब रेडियो पर बजता था एक गीत पूरे घर को रोक देता था, जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस किए जाते थे। आज की हमारी

पुरानी कहानी याद आ जाती थी। यकीनन हर एक इंसान जो आज इस गाने को सुनेगा, जो उस दौर से गुजर के आया है, जब इन गानों को सुनता है तो अपने ही एक अतीत में खो जाता है। फिल्म यादों की बारात का ये गीत आज भी अपनी मासूमियत और रोमांटिक अंदाज के लिए बेहद याद किया जाता है। और कुछ जो रिश्तों की, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अतीत में चले जाते हैं जब आप गाने सुनते हैं, चाहे वो कैसा भी अतीत, चाहे प्यार का रहा हो, दोस्ती का रहा हो, कैसा भी रहा हो, तो जब हम बात कर रहे हैं दोस्ती की, जिंदगी वो रिश्ता है जिन्हें शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। और जब दोस्ती पर गीत लिखा गया और उसे आवाज़ मिली किशोर कुमार और मन्ना डे की, तो वह सिर्फ फिल्म का गीत नहीं रहा बल्कि दोस्ती की पहचान बन गया। जी हाँ, कई दोस्त जो हमारे श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, वो समझ भी गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, फिल्म शोले का ये सदाबहार गीत आज भी दोस्तों के साथ बिताए उन बेफिक्र पलों को याद दिलाता है। तो आइए सुनते हैं शोले फिल्म से ये दोस्ती का गीत, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।

श्रोता सुन रहे थे चुरा लिया है तुमने इस दिल को। दोस्तों 70 का दशक और मोहब्बत के गीत, ये रिश्ता ही कुछ ऐसा था कि ये गीत शुरू होते ही दिल को जैसे कोई

0: तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दोस्ती जैसे कि इसमें दिखाई गई है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बीच में, और दोस्ती जैसे आपकी और हमारी। तो दोस्ती की ऐसी धुन जिसे सुनकर आज भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कहते हैं वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों की यादें नहीं बदलती। और अब बारी है ऐसी गीत की जिसे प्यार है, इंतज़ार है और एक बहुत खूबसूरत सा एहसास है। 70 के दशक में अगर रोमांटिक गीतों की बात हो और किशोर कुमार की आवाज़ का जिक्र ना हो तो कहानी थोड़ी सी अधूरी लगती है। जैसे कि लता मंगेशकर जी, ऐसे ही किशोर कुमार हमारे। किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अपने समय में भी काफ़ी लोकप्रिय था। आज भी सुनने वालों को उसी पुराने रोमांटिक दौर में ले जाता है। आप समझे या नहीं, चलिए आपको बता देते हैं। गाना है ओ मेरे दिल के चैन और पिक्चर है मेरे जीवन साथी। इस गाने को हम सुनेंगे लेकिन एक प्रोमो के बाद।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये था वो एहसास जिसे शायद शब्दों में ज़्यादा एक आवाज़ समझ सकती है। किशोर कुमार की आवाज़ में 70 का दशक आज भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों, इस सफ़र में सिर्फ रोमांस ही नहीं है, इस दौर में दर्द भी था, जुदाई भी थी और रिश्तों की गहराई भी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और अब सुनेंगे अगला गाना घर पिक्चर से, आपकी आंखों में। सिर्फ पुराने गीतों का दशक नहीं था 70 का जो दशक था, ये खूबसूरत धुनों, सादगी भरे संगीत और भावनाओं को बेहद नज़ाकत से पेश करने का भी दौर था। फिल्म घर का ये गीत भी उसी खूबसूरती के दौर को याद दिलाता है। चलिए कुछ देर के लिए आज की भागदौड़ को किनारे रखते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा गीत, आपकी आंखों में कुछ।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: तो संदेश से पहले हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपकी आंखों ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, प्यार की हो गई, थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं और सुनते हैं डॉन पिक्चर की फिल्म से गाना खई के पान बनारस वाला। डॉन का ये धमाकेदार गीत याद आए और ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग उस दौर में जाके अमिताभ बच्चन का वो रूप भूल जाएं। और हर किसी की जुबान पर ये गाना उस समय, क्या कहें। तो तैयार हो जाइए और माहौल को थोड़ा रंगीन करने के लिए और सुनते हैं ये गाना।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

काका बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: तो श्रोता सुन रहे थे डॉन पिक्चर की आवाज़ में ये गीत, और ये रिमेक है, पुराना अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया है और ये वाला गीत शाहरुख खान के ऊपर फिल्माया गया है और इसमें जो संगीतकार हैं वो उदित नारायण हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो खूबसूरत गीत हम सुनने वाले हैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, आंधी पिक्चर से, आइए सुनते हैं।
1: बरसों बाद यूं खेलने निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी, लो

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

तो दोस्तों, आज की जो हमारी संगीत यात्रा है वो यही समाप्त होती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भुलाए ना भूले। तो आज हमने 1970 के दशक के उन गीतों को याद किया जिन्होंने अपने दौर को तो बहुत खूबसूरत बनाया ही, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यादों का खजाना छोड़ दिया। कुछ गीत प्रेम की याद दिलाते हैं, कुछ दोस्ती की, कुछ अधूरे रिश्तों की, कुछ बारिश और मुलाकातों की, और कुछ बस हमें उस दौर में वापस ले जाते हैं जहां जिंदगी शायद थोड़ी सी धीमी थी लेकिन एहसास बहुत गहरे थे। इसलिए तो कहते हैं समय गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते। इसी उम्मीद के साथ कि आज के गीतों ने आपकी कोई पुरानी याद ज़रूर ताज़ा की होगी, मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपकी आरजे शीतल। फिर मुलाकात होगी एक और खूबसूरत संगीत सफर पर। तब तक सुनते रहिए भुलाए ना भूले।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। ये आप सुनते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। जापान एशियाई खेलों में कल 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और प्राणिका एलोंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ 3:02:50 और अब वक्त है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का, और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और ये श्रोता आप सुनते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अपसवा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। जापान एशियाई खेलों में कल 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और ब्रानिका अलंगवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल और यह वक्त है कार्यक्रम सारेगामा का।

0: मगर आपने तो कहा था कि
1: फिर आप?
0: तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
0: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
0: जैसे?
1: कर सकोगे?
0: मैं हर काम कर सकता हूँ।
1: सोच लो।
0: सोच लिया।
1: और अगर ना कर सकी तो?
0: हार मान जाऊंगा।
1: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
0: क्या?
1: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
0: टोकरी?
1: मंजूर?
0: मंजूर। काम तो बताइए।
1: जरा सोच तो लूँ।
0: हाँ।
1: वो देखते हो? वो?
0: हाँ।
1: क्या?
0: मुर्गी?
1: हाँ, पकड़ लाओ।
0: मुर्गी?
1: हाँ।
0: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
8: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे, प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: अरे अभी तो पार्टी

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो,

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में 5:28 हुए। अब होंगे हिंदी में समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन परीक्षण 2026 के तहत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी और लगातार बारिश के से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। भारी बारिश के अलर्ट के कारण कई जिलों में 12वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। जापान ने एशियाई खेलों में कल 7वें दिन भारत के स्वर्ण और 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानी का एलन गोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पदक जीतने वालों पर खिलाड़ियों को बधाई दी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो है और अब स्टूडियो की घड़ी में 5:03 हुए हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे शीतल और अब समय है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना का।